0: and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career, that is, I pursued a medical alternate therapy in acupuncture and acutherapy, acupressure. I took a master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients voluntary. So this is my short
1: profile. Good, great. तो दोस्तों आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं. चलिए तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जीवन में पूजा यानी कि भगवान से जुड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी. किसी एक भगवान के बारे में बात ना करते हुए ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को पीसफुल करना, इसको स्पिरिचुअलिटी अगर कहें तो हमें थोड़ा अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कीजिए.
0: एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड बोल सकते हैं. स्पिरिचुअलिटी बचपन में कुछ अलग मीनिंग होता है. रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बचपन में हमको हमारे माता पिता हमको इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान के श्लोक बोलने के लिए. सो दैट इज वेयर वी गेट इंट्रोड्यूस टू गॉड बेसिकली. तो mother and father are the first two gurus who teach you few slokas and introduce you to God. So start karte hain hum log apne subah naaste na do ke bhagwan ke paas jate hain, bolte hain iske samne khada ho jao haath is karke, you start chanting, they will teach you few slokas that is still embedded in your ब्रेन. बचपन में जो सीखते हैं वो काफी अस्त तक रह जाते हैं ब्रेन. तो मम्मी की इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. आई रिमेम्बर गोइंग टू टेम्पल्स विद पेरेंट्स एंड देन पापा की थोड़ा गुजर गए मैं 6 साल में, तो मम्मी बिकेम माई फादर एंड मदर बेसिकली. सो आई वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग विद माई मम्मी. तो मम्मी मुझे प्रोफेशन के लिए लेके जाती है, तो दैट वाज अ लिटिल हाई फॉर मी. उनके लिए ठीक होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रोफेशन होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो स्वामी जी वहां बोलते थे सो हम बोलो वेन एवर यू डू एनीथिंग यू टेल सो. सो हम का संस्कृत मीनिंग इज आई एम दैट. सी आई एम गॉड बेसिकली. तो उसको संस्कृत में सो हम बोल देते हैं. तो वो बोलते हैं, तो आप चलते टाइम सो हम बोलो, कान भरने टाइम सो हम बोलो, घर में यू आर कुकिंग मदर को बोलते हैं. तो आई इवन यूज टू टीस माई मदर, अरे आप बोलते क्यों नहीं हो सो हम, रोड क्रॉस करने के टाइम भी सो हम बोलो. तो शी यूज टू चाइड मी, अरे रोड क्रॉस नहीं बोलेगा तो कोई गाड़ी आके मार देगा मुझे. तो आई यूज्ड टू टीज़ हर, बट आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दैट स्टेटमेंट. एंड देन माय इम्प्लेस वाज व्हेन आई वाज द यंगेस्ट फेलो ऑफ 5 sons एंड 1 sister. सो I was the youngest and I was just 6-7 years, and she used to read a lot of Adhyatmic text about all the saints. I used to just sleep

0: in her lap. You see, just. And this went on into my subconscious mind. That is what is wonderful. I was not listening. But during sleep, it has gone subconscious mind. And all these stories I remember even now. That is the beauty of it. All those saints' life histories. So this has helped me a lot, you know, becoming religious, which helped me in my later life. Then that is, you know, spirituality ka first lessons. It was very useful in my life. Then college days mein, I got associated with a mission, with a religious mission, where they were teaching Bhagavad Gita. That was another great blessing. So Bhagavad Gita or spirituality ke kaafi connections hain. Prayer actually is a, you know, it is antyatmik shuddhata bolte hain na. It is for purification of the mind. Initially, bachpan mein to prayer aise hi hota hai ki mujhe achhe marks milna hai. I want to be, you know, I want to get good marks. It starts like that, you know. And then prayer starts with in chanting of, you know, Om. Om jo syllable hai.
1: Right, sir.
0: Teen akshar ka A, O, N, M. And that really gives you the solace and, you know, peace in the mind. And something surprising when we go to temple is, we see the God standing in front of him. And we close our eyes. Why? We have come all the way to see the temple.
1: Correct.
0: Apne aath ko aankh band kar dete hain. That is because we reflect God in our own conscience. We pray for the well-being of the family. It starts with ourselves, then family, then community. It goes on expanding. तो बचपन में सिर्फ हमको बोला जाता है अरे आंख बंद कर लो इवन लिटिल बिट स्लाइटली आंख सड़क खोल के देखते हैं क्या होता है देखेंगे सो बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग और नोइंग अबाउट गॉड स्पिरिचुअलिटी ऑल स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता And then we get to know what is the depth of the whole thing. See, our body, our jism, mind, intellect, buddhi, man, buddhi. And then we are, when we chant Om sincerely and, you know, closing our eyes, you actually reflect God in your own antaratma.
1: राइट सर यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है सर आप बोल रहे थे तो मेरे को ख्याल आया आपने बोला मंदिर में जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं और वी विश फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी पर मुझे लगता है मंदिर में हम गए हैं ऐसा ही मेरे दिल में विचार आया थॉट आया सर मंदिर गए हैं भगवान के दर्शन करने गए हैं तो हम आंखें खोल के उनका दर्शन क्यों नहीं करते हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं जबकि हम गए वहां पर उनका दर्शन करने के लिए ही तो हैं तो हमें भर भर के उनको देखना चाहिए उनकी मूर्ति को प्यार से सराहना चाहिए कि क्या है कैसे हैं कितने खूबसूरत हैं कितने पावरफुल हैं वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट इंस्टेड वी जस्ट क्लोज अवर आईज सो मुझे समझ में नहीं आया
0: दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग यू नो गॉड इज गाइडिंग यू टू लुक एट योरसेल्फ तुम अपने अंतरात्मा को देखें
1: अरे तो सर वो घर पे भी तो आके कर सकते हैं उधर ही क्यों
0: क्योंकि बाहर जो यस यू आर लुकिंग एट गॉड यू आर लुकिंग एट गॉड एंड आपने देख लिया काफी देन व्हाट इज नेक्स्ट यू नो देन यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द सराउंडिंग्स यू नो
1: ओके
0: जो आजू बाजू में को इधर उधर हिल रहे हैं चल रहे हैं So by closing your eyes, you are able to concentrate on the God and your prayers. And then slowly you are looking inwards.
1: All right.
0: Because bahar ki duniya itna halchal machi hai. So अब अंदर की देख, दैट इज व्हाट दे ऑल द स्क्रिप्चर्स से, यू नो, लुक एट इनसाइड, टर्न योर डायरेक्शन इनसाइड. क्योंकि बाहर की दुनिया तो मेटीरियलिस्टिक है, इट इज नॉट गिविंग यू फुल सोलेस. यस, इट गिव्स यू मोर डिजायर्स रादर देन यू नो, एंड देन मन अशांत हो जाते हैं, अरे हमको वो चाहिए, ये चाहिए. वेयर एज व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इनसाइड, that peace, especially when you chant om, we generally have meditation session in the morning, so usme wahi hota hai ki aap chanting karo, om om reverberate karo, chant loudly closing your eyes, so this is what gives you solace, peace of mind.
1: All right,
0: ultimately we want to be happy, is it not? We want absolutely to be happy.
1: Absolutely,
0: yes. Happiness is not outside, that's what the scriptures say. Happiness is inside.
1: Okay, I get it.
0: Yeah.
1: तो दोस्तों, जाहिर से बात है, हमको मंदिर में जाकर आंख बंद करनी इसलिए होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी ईश्वर का स्वरूप हमने देखा वो हमारी आंखों में बसा रहे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें, फिर वापस आते हैं एवी सर के पास.

0: जयरमन सर, प्लीज मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी के हम आज के डेट में फायदे क्या ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं, सब है, बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, पर उसका फायदा क्या? आज के जमाने में लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मेडिटेशन, गीता, इनके बेनिफिट्स बताइए, बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है कि सर मैं एक घंटा लगाऊंगा
1: मेडिटेशन। मेडिटेशन कैन बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, बट सुबह सुबह उठ के आपको मेडिटेट करना है।
0: उसका फायदा क्या सर?
1: मेडिटेशन में फायदा इसीलिए है कि अंतकरण शुद्धि हो जाते हैं। सी प्रोबेबली व्हेन यू सिट एंड मेडिटेशन इज नॉट वेरी इजी बेसिकली, बिकॉज द मोमेंट यू क्लोज योर आईज आपके मन में हजार विचार आते हैं। इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स, ए फ्लड ऑफ थॉट्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे, एक मिनट में इट विल बी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स फ्लोइंग इन द माइंड द मोमेंट यू वॉन्ट टू सिट एंड मेडिटेट, लेट अस से। सो इसीलिए हम ओम चैंटिंग चालू करते हैं। ओम चैंटिंग वी डू अराउंड वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स, 20-21 टाइम्स, एंड देन द मोमेंट यू फिनिश दिस ओम चैंटिंग द माइंड इज लिटिल रेस्टलेस, इट द फ्लो ऑफ थॉट्स स्टार्ट्स, यू नो, हम कल क्या करना है, आज क्या करना है, अभी जाके पढ़ना है, ये करना है। बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू ऑब्जर्व द थॉट्स, डोंट ब्लॉक द थॉट्स, लेट द थॉट्स फ्लो, बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर, यू डिटैच यूअर सेल्फ फ्रॉम दैट थॉट्स, एंड इट इज लाइक यू नो हाउ यू आर स्टैंडिंग इन ए बैंक्स ऑफ द रिवर and you are observing the river flowing, you are not a part of the river, but you are observing the flow of river, standing on the banks as a observer. This is what is required. When you start observing in the flow of thoughts, the thought flow starts reducing, and come hote hote hote hote thoughts kam ho jayenge. Then you still keep observing, and that peace, inner peace of mind. So the scriptures or the spirituality or the masters, the gurus, they are only stressing this, that thoughts ko kam karo, or once the thought becomes zero, which is a very very difficult situation, the thoughtlessness, you observe that silence. The silence, you try to extend that silence, you know, where there are no thoughts. It is difficult to practice. I really, for the youth especially, because they are hyper now. They are bombarded with all these social media, mobile, laptop, especially these artificial intelligence, and people in the IT, they are glued to this laptop for hours together. It is difficult, but systematic practice can be done. The best time is early morning, whatever time is possible, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, when the atmosphere is quiet, you sit in a quiet corner and do this meditation. There are some methods which we follow also. You keep a jyoti, you know, you can light a lamp and you observe that lamp with devotion, and slowly that lamp, you take the lamp, the jyoti, into your body, you know, take it into your body, slowly take that jyoti mentally to every part of your body. That's called the body relaxation. ये ज्योति को हम पूरे बदन में एक एक अंग, एक एक पार्ट्स को ये करते हुए, दिस ज्योति इज टेकन टू दैट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड दैट पार्ट बिकम्स रिलैक्स्ड, एंड देन ऑब्जर्व द साइलेंस। दिस इज पॉसिबल, बट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग systematic effort is required by the present youth to make them more peaceful and handle the situation more effectively.
0: तो आइए दोस्तों फिर एक भजन को सुनते हैं और विचार करते हैं जो अभी जयरमन सर ने हमें बताया.

0: बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। अभी पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, लैपटॉप का, जो कि आज की डेट में सारी यूथ यूज कर रही है और उनको वक्त नहीं मिलता है। तो क्या हम सोशल मीडिया को स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिलीजन के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए, मेडिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम मतलब उसको रिजेक्ट करने के बजाय क्या हम सोशल मीडिया एक्सेप्ट कर?
1: You should, social media is the best method of now spreading the message, because any media for that matter, it is having positive effect and negative effect. So you can use definitely social media for inculcating all this value based process, meditation technique. Aajkal YouTube to bhara hua hai, if you type meditation, you will get n number of videos. You can play that. So instead of going in the negative this thing, you can use it for positive this thing. We have to live with this social media. We cannot escape from that. So slowly introduce that into that for your own positive thing. Apne se pehle bhi, if you listen to all these techniques, meditation techniques,

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज की शुरुआत मजरूह सुल्तानपुरी साहब के एक बेहद मशहूर शेर से है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज की हमारी अतिथि की रंग यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही है। एक युवा कलाकार के रूप में शुरू हुआ यह सफर समय के साथ साथ एक ऐसी कारवां में बदल गया जिसने न केवल रंगमंच को समृद्ध किया बल्कि असंख्य विद्यार्थियों, कलाकारों और रंगकर्मियों को दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में कुछ लोग केवल किरदार निभाते हैं, कुछ नाटक निर्देशित करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी पीढ़ियों को गढ़ते हैं। हमारी आज के अतिथि उन बिरले व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्होंने मंच को केवल जिया नहीं बल्कि उसे अपने जीवन की साधना बना लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NST की एल्बिना, राजस्थान विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग की पूर्व HOD, ललित कला संकाय की पूर्व डीन, एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री, निर्देशक, शोधकर्ता और शिक्षिका, प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव का नाम भारतीय रंगमंच विशेषकर राजस्थान के रंग परिदृश्य में अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। 4 दशकों से अधिक की उनकी रंग यात्रा में कोर्ट मार्शल, नटी विनोदनी, मीरा नाची, मैकबेथ, टोबा टेक्सिंग, मंटो की कहानियां जैसे अनेक महत्वपूर्ण नाटकों का निर्देशन और अभिनय शामिल है। उन्होंने बैरी जॉन, बीवी कारंत, रामगोपाल बजाज और नसरुद्दीन शाह जैसे रंगमंच के दिग्गजों के साथ काम किया है। साथ ही अनगिनत विद्यार्थियों को रंगमंच की बारीकियां सिखाकर नई पीढ़ी के कलाकार तैयार किए हैं। लेकिन आज की बातचीत उनके पदों, पुरस्कारों और उपलब्धियों की सूची भर नहीं होगी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे उस कलाकार को जिसने सपने देखे, संघर्ष किए, मंच की रोशनी और पर्दे के पीछे की चुनौतियों दोनों को जिया, जिसने अपने जीवन को रंगमंच के नाम पर समर्पित कर दिया। तो आइए बड़े सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वागत करते हैं प्रोफेसर अर्चना श्रीवास्तव जी का। अर्चना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। मेरे सभी श्रोताओं को हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।
1: तो चलिए अर्चना जी, शुरुआत से ही कर लेते। ऐसा करते हैं कि उस छोटी सी अर्चना से मिलवाइए जो आगे चलकर रंगमंच की दुनिया में एक बड़ा नाम बनी। आपका बचपन कैसा रहा, कुछ ये तो बताइए।
2: बचपन तो सभी का बहुत ही हसीन होता है साहब, तो हमारा भी बचपन ऐसा ही था। बड़ी अटखेलियां थी, अल्हड़पन था, बहुत ही स्वतंत्र और उन्मुक्त मेरा बचपन था। और सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता को जाता है, उन्होंने मुझे इस तरीके से इतना खूबसूरत बचपन दिया कि जो जी चाहे वो करो। तो स्कूल में जब जब कुछ भी एक्टिविटीज होती थी, उस जमाने में छोटे छोटे नाटक भी होते थे, पंचतंत्र की कथाओं को हम लोग अभिनीत किया करते थे और उसमें माता पिता कहते थे कि तुम पार्टिसिपेट करो। और क्योंकि स्कूल में हमेशा आगे रहने का मुझे बड़ा कहते हैं एक शौक था और नेतृत्व करने की हमेशा एक ललक होती थी कि मेरा नाम टीचर्स जब लेती थी उस जमाने में तो लगता था कि हाँ मेरा जो कहते हैं वजूद है वो सार्थक हुआ। छोटी सी लड़की लेकिन अच्छा लगता था। मुझे आज भी वो चीज याद है जब प्रिंसिपल आती थी और मुझे कहती थी अर्चना तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो मैं कहती थी मुझे गाना अच्छा लगता है, सुनाओ। तो इस तरीके से और शुरुआत मेरी साहब नाटक की, जहां तक बात है, एक मुझे याद है एक एनुअल फंक्शन में एक नाटक करना था और उस नाटक में एक चिड़िया की कहानी थी। वो चिड़िया जिसको पिंजरे में कैद कर दिया गया है और वो निकल नहीं पा रही है, छटपटा रही है, लेकिन तभी कोई एक छोटा सा बच्चा आता है और उसको मुक्त कर देता है और वो फिर गाती है, गुनगुनाती है, पूरी स्टेज का चक्कर लगाती है। तो मैं वो चिड़िया बनी थी।
1: वाह, मजा आ गया। ये तो आपने, यू हैव सेट द टोन। आपने एक उस एज में भी चिड़िया, और वो भी जो कैद वाली चिड़िया, एक संवेदनशील सी कहानी से शुरुआत कर दी आपने, तो यही कहूंगा मैं
2: जी
1: तो। और आपने बताया परिवार में भी अच्छा साहित्य और संगीत और कला का एकदम वातावरण था, तो वो कैसा था? आपके पेरेंट्स भी कलाओं से जुड़े हुए थे क्या? कैसा माहौल था?
2: जी दरअसल हमारे परिवार में कला और जीवन अलग अलग नहीं था। जिंदगी हम जीते थे कलाओं के साथ। माने काम कुछ भी हो, मेरे पिताजी लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर थे और लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर होते हुए सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में उन्होंने अरसे काम किया डायरेक्टर के तौर पर, और बहुत उम्दा लिखते थे, मुशायरे उस जमाने में हुआ करते थे, शेर व शायरी, उर्दू का बड़ा माहौल था घर में, अंग्रेजी बहुत अच्छी थी उस जमाने की इन लोगों की। लेकिन उन हमारे यहाँ बहुत जरूरी था, माता की तरफ से भी और पिता की तरफ से भी, कि तुम्हें हर दिन एक कहानी पढ़नी है या महीने में एक कोई छोटी सी नॉवेल पढ़नी है, लेकिन वो साहित्यिक, उसकी एक ऐसी कृति होनी चाहिए जो कि आपको परिष्कृत करे। उस जमाने में हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हमारा जो सफर है वो इस तरीके से माँ पापा ने शुरू किया और वो चलता रहा चलता रहा। उस जमाने में धर्मयुग आया करता था, धर्मयुग हम लोग पढ़ते थे, और मतलब आप ये देखिए, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, अमृत राय, आपके राग, ये क्या नाम है हमारे, इस वक्त मैं नाम बिल्कुल भूल
1: रणवीर
2: रही हूँ,
1: भारती, अग्गे,
2: रांगे राघव, रांगे राघव
1: रंगे
2: साहब,
1: राव जी, बिल्कुल
2: हाँ
1: साहब, जयपुर
2: हाँ
1: राजस्थान
2: इनको भी हम,
1: के
2: हाँ तो पापा का कहना था बहुत खूबसूरत लिखा करते हैं, इनकी कहानियां पढ़ो।
1: थे।
2: तो बस इस तरीके से हमारा, ये कहेंगे कि बचपन, और जैसे जैसे हम युवावस्था को आए तो उन्होंने हमको इस तरीके से पूरा मार्गदर्शन दिया कि पढ़ो और ये मत सोचो तुम्हें क्या बनना है, जिंदगी जियो, और जिंदगी इन तमाम साहित्य और कलाओं के साथ साथ ही है। इससे अगर तुम अलग हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी नहीं है।
1: मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये बातचीत आपकी तो इतनी इंटरेस्टिंग है कि म्यूजिक और अच्छा, फिर थोड़ी सी बात इसके बारे में करते हैं कि आपको कब लगा कि थिएटर केवल शौक नहीं है बल्कि एक जीवन का रास्ता बने? वो कौन सा ट्रिगर था या ऐसा कौन सा पल था कि आप रंगमंच से या मंच से जुड़ गई एक तरह से? वो कब शुरू हुआ आपकी लाइफ में?
2: ये अगर औपचारिक दृष्टि से सोचा जाए तो कनोडिया कॉलेज में जब मैं पढ़ती थी फर्स्ट ईयर में,
1: ओके, अच्छा।
2: तो वो मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्कूल में छोटे छोटे नाटक किया करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक उसी साल मिस हेमलता प्रभु, जो हमारी नारी शिक्षा की स्तंभ थी, बल्कि हैं, क्योंकि वो एक ऐसी, मुझे लगता है, शख्सियत हैं हमारी जिंदगी की जो कभी जाएंगी नहीं, वो हमारे आसपास ही हैं, और उनकी प्रेरणा से, वो तब रिटायर हो रही थी, उनका एग्जिट था कॉलेज से और मेरी एंट्री थी। लेकिन क्योंकि वो बापूनगर में ही रहा करती थी, मिस तरवे, कृष्णा तरवे और मिस हेमलता प्रभु, तो उनके साथ मेरा कई बार बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ साहित्य को लेके। कभी कभी वो कॉलेज आया करती थी कुछ कुछ संगोष्ठियों में, तो हम बैठते थे उनके साथ और उन्होंने उस जमाने में बताया। तो मैं एक चीज कहूंगी यहाँ, मुझे थोड़ी भाषागत दिक्कत थी, मुझे विदेशी नाटक बहुत अच्छे लगते थे, शेक्सपियर हुए, आपके इप्सन हुए, डॉल्स हाउस उनका जो नाटक है, एनिमी ऑफ द पीपल है, तो हिंदी, मेरी हिंदी और उर्दू बहुत उम्दा है, और अंग्रेजी ठीक ठीक है, मतलब समझ के लायक है, वो बहुत लिटरेरी नहीं है। तो वो जो नाटक है जिनके जिनकी बात मैं कर रही हूँ नाटककारों की, उनके नाटक तो समझना बहुत मुश्किल है। तब मिस प्रभु ने मेरा मनोबल बढ़ाया और उन्होंने कहा, अर्चना बहुत अच्छे नाटक नाटक हैं और इनका अनुवाद और इनका पूरा का पूरा आपको एडेप्टेशन भी मिलेगा, यानी कि इनका रूपांतरण भी मिलेगा, और उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने फिर वो मुझे बुलाती थी, हम लोग बैठ के, अच्छा ये मोनोलॉग बोलो, तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम्हारा तलफ़ुस अच्छा है, डिक्शन अच्छा है, यू कैन स्पीक, आउट, लिटिल आउट, प्रोजेक्ट करिए आप अपने आप को, ऐसे ऐसे करते करते। और फिर 3 साल में बहुत एक्टिव रही वहां पर, नाटक जब जब होते थे उसमें मैं बहुत अच्छा बैक स्टेज और ऑन स्टेज होती थी, और इस तरीके से मेरी औपचारिक एक शिक्षा शुरू हुई, और यहाँ से मुझे नाटक बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। फिर मैं दिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रही थी यूनिवर्सिटी से, उस जमाने में मुझे याद है शाम के समय में ये एक तरह का मुझे एडिक्शन हो गया था तब तक कि चैन, एक नाटक खत्म हुआ अब क्या, अब बिल्कुल खाली खाली लग रहा है तो अब क्या करें, चलो फिर चलते हैं। उस जमाने में साहब रविंद्र मंच, क्या स्वर्णिम इतिहास हमारा रहा है, उस रविंद्र मंच पे हम जब तक शाम को ना जाएं तब तक हमारे को चैन नहीं आता था। तो हम लोग वहां जाया करते थे, रिहर्सल करते थे, सरताज माथुर साहब, डी एन शैली साहब, मुमताज शकीफ साहब, एस वासुदेव सिंह साहब, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के, नंदलाल शर्मा जी, खूब सारे लोग थे उस जमाने में जिन्होंने मुझे परिष्कृत किया और मेरे थिएटर के पैशन को, जुनून को आगे बढ़वाया। और उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर बहुत बहुत तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, चलो करो करो करो। तो ये वो जब हम बड़े हो रहे होते हैं, और वैसे भी अगर हम एक चाइल्ड साइकोलॉजी भी देखें या जवानों की साइकोलॉजी भी देखें, तो साहब ये होता है अगर थोड़ा सा कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो मनोबल दुगना हो जाता है, चाहे उतना है नहीं लेकिन एक छोटी सी आपको कोई प्रेरणा देता है और हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वो वक्त था, तो बस चलते चले गए। प्लान नहीं किया था, कभी प्लान नहीं किया लाइफ को कि मैं ये करूंगी या मैं थिएटर कोई अपना पैशन, जो मेरा पैशन है यही प्रोफेशन बनेगा, या मैं म्यूजिक में जाऊंगी। बस करती थी और उसका लुत्फ उठाती थी, मुझे बस सुकून बहुत चाहिए था और वो इनके जरिए मैंने पाया जिंदगी में।
1: मजा आ गया अर्चना जी, आपने तो एक तरह से जयपुर का या राजस्थान का इतिहास ही कर दिया। हेमलता प्रभु, मैडम तरवे, सरताज माथुर, एस वासुदेव, इनके नाम लेके तो आपने मजा कर दिया, बिल्कुल शुरुआत कर दी। तो ऐसा करते हैं, इतनी बड़ी हस्तियों के जब नाम लिए तो इनके लिए रुक के इनके लिए एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं, और फिर हम इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं।
2: जी जरूर।

0: हाँ, तो वेलकम बैक अर्चना जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपकी जिंदगी के सफर में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचने की आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? किसी ने सजेस्ट किया आपको, या किस तरह से आपने सोचा कि मैं एनएसडी में पहुंचूं, क्या एडमिशन लो, कैसे हुआ आपके, ये सब कुछ बताइए। किस तरह जुड़ी आप एनएसडी से?
1: मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ना मैंने कुछ, मैंने तय भी नहीं किया, ना मैंने सोचा, और ना मुझे बहुत ज्यादा इल्म था कि ऐसा कोई संस्थान है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाम का।
0: अच्छा,
1: वाकई मैं बता रही हूँ, जमाने में जो मेरी मेरी अपनी नॉलेज थी वो बहुत ही लिमिटेड इस रूप में थी। इतना सा पता था कि दिल्ली में या पूना में कोई ऐसा संस्थान है कि जहां पर आपको रंगमंच की और फिल्मों की तालीम दी जाती है,
0: जी
1: दैट्स इट।
0: जी
1: मुझे
0: अच्छा।
1: कतई नहीं पता था ये कितना डिफिकल्ट है यहाँ आना, या इसमें दाखिल होना बहुत मुश्किल है। और उस जमाने में इसको इसको एक जमाने में इसका नाम था एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स
0: अच्छा,
1: जी, और
0: ओके।
1: बाद में इसका नाम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रखा गया। तो इसमें उस जमाने में 20 एडमिशन होते थे ऑल ओवर एशिया से, जिसमें
0: अच्छा,
1: भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, निश्चित तौर पे भारत के विद्यार्थी ज्यादा होते थे, लेकिन क्योंकि एशिया का बहुत ही प्रतिष्ठित एक संस्थान है जो कि नाट्य की तालीम दिया करता है, तो बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर दाखिला। दरअसल हुआ ये कि मैंने मास्टर्स जब किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया यूनिसेफ के, जो यूनिसेफ ने फंड किया था इसको, और उसका नाम था विमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, महिला विकास कार्यक्रम, जिसको कि श्री अनिल बोर्दिया, श्रीमती अरुणा रॉय, मिसेस शारदा जैन, ममता जेटली, इन लोगों ने उस समय इसको स्थापित किया था राजस्थान में। और राजस्थान की महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर ये कल्पना की थी कि जो भी जितने भी हमारे विकासात्मक कार्यक्रम होते हैं उसमें अमूमन होता क्या है, जो ऊपर का स्तर है वो तो हर वक्त परिष्कृत होता है, उससे लाभ उठाता है, लेकिन जो ग्रास रूट है, जो हमारा ग्रामीण इलाका है, वो उससे अछूता रह जाता है। तो इस तरीके से जब मैंने एमए कर लिया तो एक साहब एक अखबार देखा और उसमें विशेषज्ञ के पद पर उनको लोग चाहिए थे, एक ही पोस्ट थी, हमने अप्लाई कर दिया और हमारा इत्तेफाकन उसमें हो गया। तो दिल्ली जब मैं गई सोशल वेलफेयर बोर्ड की मीटिंग में, तो एक बड़ी प्रतिष्ठित, बहुत ही काबिल अभिनेत्री, बहुत प्यारी अभिनेत्री मिली मुझे, जिनका नाम है, मराठी है वो, और सुहासिनी मुले।
0: अरे अरे, भुवन सोम वाली में याद आ गए, भुवन
1: हाँ, वो भी
0: सोम।
1: उसी में आई जी जी जी वो आई थी, और उनके साथ बहुत अच्छी मेरी चर्चा रही। जितने भी अभी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूनिसेफ को लेके और हमारे कार्य को लेके, उनके कार्य को लेके, और रंगमंच तो खैर उनके कमाल का एक है ही, इसके अलावा फिल्में बहुत खूबसूरत उन्होंने की हैं, लगान, हुत्तु
0: हाँ,
1: तू, भुवन सोम,
0: भुवन
1: तो
0: सोम।
1: बहुत ही जी। तो उन्होंने, उनसे ऐसी चर्चा के दौरान पता चला, उनसे तुम और क्या करती हो, तुम्हारे और क्या शौक है, तो हमने कहा थिएटर, म्यूजिक। अरे थिएटर है, अच्छा क्या करती हो, मैंने कहा अभिनय करते हैं, और तो कुछ आता नहीं है, तो अच्छा, तुम अभिनय करती हो तो क्यों, तुम एनएसडी जाओ ना, मैंने कहा वो क्या है, बोले ऐसे ऐसे है, इस तरह का एक संस्थान है, आप और इस तरीके से आप जाके घूम के आइए। तो मैं गई, उस समय मेरे पास, मेरे साथ एक साथिन भी गई हुई थी दिल्ली उस मीटिंग में, उसका
0: ओके
1: नाम
0: ओके
1: था मोहिनी। मोहिनी वो साथिन है, जब क्लिंटन आए थे हमारे राजस्थान में, तो आपको अगर याद आता हो वो गांव कौन सा था जहां से कंप्यूटर ऑन हुआ था,
0: ये कहीं आगरा रोड पे शायद कोई गांव था, मुझे अब
1: जी
0: थोड़ा
1: जी
0: याद नहीं।
1: जी जी
0: आगरा
1: नायला,
0: रोड पे,
1: नायला नायला नायला
0: नायला
1: नायला
0: नायला नायला नायला, बिल्कुल।
1: वो नायला की साथिन थी मेरे साथ उस
0: ओके
1: वक्त,
0: ओके
1: और
0: ओके
1: मैं और मोहिनी हम लोग चल पड़े साहब एनएसजी मंडी हाउस, और उस समय वहां पर छुट्टियां चल रही थी ग्रीष्मकालीन, और देखा वहां अंदर जाके तो हमारे बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर राम गोपाल बजाज साहब बैठे थे।
0: ओके ओके।
1: मैं गई बड़े उससे और उनसे बात बात की, उन्हें बताया मैं कौन हूँ और मैं क्यों आई हूँ। मैंने कहा, बोले अच्छा आप यहाँ प्रवेश लेना चाहती हैं? मैंने कहा नहीं सर, प्रवेश नहीं लेना चाहती हूँ। सुहासिनी जी ने मुझे बताया, तुम उन्होंने कहा कि तुम घूम के आओ तो मैं देखने आई हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। फिर उन्होंने पूरा मुझे एनएसडी के बारे में समझाया और तमाम जो पोस्टर्स लगे थे उसके बारे में तफसील से बताया। 3-4 घंटे हम लोग वहां रहे, बहुत अच्छा वक्त था। हम वापस आए उस मीटिंग से, जयपुर आ गए। उस जमाने में इंडियन एक्सप्रेस आता था घर पर, तो माँ ने एक दिन बताया कि अरे तुम यहीं गई थी ना, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का देखो एडमिशन नोटिस आया है। मैंने कहा क्या, तो मैं क्या करूं? बोले व्हाई डोंट यू अप्लाई करिए आप। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा नहीं होना है। आपको पता है क्या लिखा है? 20 सीट्स है पूरे एशिया में, और उसमें तो बोलती है तुमने क्या सोच। मैंने कहा और उसमें मुझे कोई नहीं लेगा, मैं तो कुएं की मेंढक हूँ, अपने शौक को पूरा करती हूँ, 2-4 नाटक कर लिए तो मेरा एनएसजी में सिलेक्शन हो जाएगा, तुमने क्या सोचा है माँ? तो बोले नहीं नहीं तुमने सोच लिया ना, नहीं होगा। मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम जाओगी अप्लाई करोगी और फेल होके आ जाओ बेशक, लेकिन तुम जाओगी।
0: ओके
1: साहब उनके बाप, उनकी आवाज में उनके मतलब क्या कन्विक्शन था, मैं मजबूर हो गई, मैंने अप्लाई कर दिया जबकि मेरा कतई इरादा नहीं था। और मैं गई और उस हमारे ही बैच से यहाँ का जो प्रवेश का पूरा एक सिस्टम था वो चेंज हुआ था। यानी कि पहले हमारा रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारा ऑडिशन हुआ, फिर दो दो किताबों पे हमसे चर्चा की गई डिटेल में, उस किताब की पूरी बातचीत की गई कि उसमें कौन कैरेक्टर है, क्या लिखा गया है, रेफरेंस बुक्स आती थी बहुत सारी, नाटक आते थे, लिस्ट आती थी वहां से, उस पर खूब अच्छा सा हमारा डिस्कशन हुआ है फैकल्टी के साथ जो इंटरव्यू ले रहे थे, इसमें हम पास हो गए। उसके बाद हमारी 4 दिन की वर्कशॉप जो जो लोग इसमें इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो उसमें भी हम पास हो गए दूसरे फेज में भी, और पता चला कि हमारा सिलेक्शन हो गया।
0: अरे वाह, अच्छा।
1: और हमें मतलब ऐसा लगा ये हुआ क्या है, ये मैं तो खेलने गई थी, वाकई मैं खेलने गई थी। मैंने कहा नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। टर्निंग पॉइंट था,
0: मजा आ गया अर्चना जी। ये तो आपने, अब मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में मुझे ये बताइए कि What is so special about NSG? जो युवा कलाकार चाहते हैं कि हम NSG में एडमिशन लें, ये अल्टीमेट है, ये है, तो उसके बारे में कुछ ब्रीफ में बताइए कि NSG में ऐसी खास बात है क्या जो हमारे स्टेज को और थिएटर के लोग को उसमें जाने का सपना देखते हैं?
1: थोड़ा सा दौर बदला है हमारा दौर। मैं ये नहीं कह रही आज का दौर खराब है या पहले का दौर अच्छा था, मैं सिर्फ इतना सा आपको अर्ज करूंगी कि हमारे जितने भी अभी आपने नाम लिए, आपने काफी सारे लोग थे जिन्होंने हमें परिष्कृत किया, मैंने इन लोगों से सीखा है, इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, और उस जमाने में कोई टेक्निक नहीं थी इस तरह की जो आज के तारीख में आपके पास तमाम तरह की टेक्निक्स है थिएटर में। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति होते थे हमारे, जिसको हम प्रोफेसर कहते हैं, गुरु कहते हैं, और उन्होंने हमको, जैसे हम कच्ची मिट्टी थे और हमको उन्होंने एक आकार दिया है। तो ये तो खासियत हमारे दौर की है, और हमने बिल्कुल मैनुअल सारा काम किया है सब, कारपेंट्री का भी काम किया उस जमाने में, मॉडल मेकिंग भी किया, लाइट डिजाइन भी किया, क्योंकि मैंने डिजाइन और डायरेक्शन में विशेषज्ञता हासिल की वहां से, तो ये सब भी किया। लेकिन हम इस मामले में किस्मत वाले रहे कि हमें नसीरुद्दीन शाह साहब आए, चाहे भास्कर चंद्रावरकर आए, या जर्मनी से एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर आए थे बहुत अच्छे, कॉनराड ज़ीडरिच, तो उनकी क्लासेस भी हमको मिला करती थी, हम उसमें भी होते थे, क्योंकि हमें ये बताया था कि अगर आप ये समझेंगे तभी तो आप एक्टर को डील करेंगे, तो आपको बेसिक एक्टिंग की चीजें भी पता होनी चाहिए, तो वो भी हमने प्राप्त की ये जितनी भी तालीम थी। तो मैं ये कह रही हूँ आज की तारीख में भी अगर हम एनएसजी की बात करते हैं और बच्चे जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहिए, वो एक अलग तरह की यात्रा है जिसमें आपको दिन रात सिर्फ और सिर्फ थिएटर पर ही फोकस करना है। आपको उस वो माहौल, वो संसाधन, वो पूरा एनवायरनमेंट जो आपको वहां का मिलता है और वहीं रहना है, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है, तो एक मौका मिलता है। ये कहा जा सकता है कि विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है, वो अगर फोकस करेगा अपने ऊपर और काम करेगा तो वो कहीं पर भी रहेगा वो उम्दा ही करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका एनएसजी में नहीं होता है, तो बैरी जॉन साहब के साथ उन्होंने एक्टिंग कोर्स किया अभी वहां पर मुंबई में, अनुपम खेर साहब जिनका एक्टर्स प्रिपेयर है, सुभाष गई साहब का जो विस्लिंग वुड्स है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अब बन गए हैं जहां पर बच्चे सीख रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कितना शिद्दत रखता है। स्टूडेंट तो सब एक से हैं, लेकिन आपकी शिद्दत ही आपकी कामयाबी का रास्ता पक्का करती है।
0: अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, और ये आपने सही बताया उस जमाने में तो आपकी जो ट्रेनिंग थी या आपका जो भी वहाँ का प्रोसेस था वो डिफरेंट था, और आजकल तो टेक्निक भी आ गई है और सब चीजें आ गई। तो चलिए इसी दौर और इस दौर के नाम पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।
1: जी जरूर।

0: हाँ, वेलकम बैक अर्चना जी। अब
1: जी
0: आपकी अपने जैसे आपने अभी नाम जिक्र किया, बैरी जॉन साहब का, नसीरुद्दीन शाह साहब का, तो आपने इन सब लेजेंड्स के साथ काम किया हुआ है, बी.वी. कारंत, राम गोपाल बजाज, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम किया, इनसे आपको क्या महसूस हुआ और क्या इनके साथ अनुभव कैसे रहा आपका और क्या क्या सीखा आपने इनसे, कुछ इसके बारे में बताइए। कोई
1: जी
0: इंसिडेंट हो अगर कोई इनसे जुड़ा हुआ, नसीरुद्दीन शाह या बैरी जॉन से, तो वो भी शेयर कीजिए।
1: इसमें बहुत अहम नाम एक प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर साहब का, प्रोफेसर कीर्ति जैन, प्रोफेसर अनुराधा कपूर, प्रोफेसर बी.एम. शाह, ब्रिजमोहन शाह, एक्टर बहुत उम्दा थे और फिल्में भी उन्होंने की हैं, कमाल की। ये सब बहुत ही, जिसको कहते हैं आप, जमीनी लोग थे, बहुत जमीनी लोग, और इतने जमीनी कि 1-to-1 इनका रिलेशन था हर स्टूडेंट से, बहुत ही सादा लोग थे, कहीं ग्लैमर इनको छूता नहीं है। और आज भी मैं बहुत सारे जो गुरु अभी मेरे हैं उनके साथ मैं बात करती हूँ, और वो मेरे मेंटोर जिंदगी भर रहेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा मुझे आज भी गाइड करते हैं। मैं चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, उस दौर में भी प्रोफेसर अंकुर, प्रोफेसर बजाज, ये लोग आते रहे और मुझे बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने, मुझे बहुत सारी राह दिखाई है। तो बैरी जॉन साहब की तो जहां तक बात है, वो तो इतने सरल, उस जमाने में फर्स्ट ईयर में पहला नाटक NSG के हमने बैरी जॉन साहब के साथ किया था, दैट इज टोबा टेक सिंह।
0: अच्छा,
1: टोबा टेक
0: टोबा
1: सिंह जो कि कहानी है, हाँ, मंटो की
0: टेक।
1: कहानी है ना,
0: हाँ
1: तो
0: बोलिए।
1: भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है और पागलों का भी बंटवारा हो रहा है। सरकार ने तय किया है कि जितने पाकिस्तानी पागल हैं वो पाकिस्तान, और जितने हिंदुस्तानी पागल हैं वो हिंदुस्तान जाएंगे। तो इसको सुन के सारे लोगों में अलग अलग तरह का रिएक्शन होता है असैलम में, उसको लेके बड़ी खूबसूरत कहानी लिखी है टोबा टेक सिंह। तो मंटो साहब की कहानी है, बैरी जॉन साहब का प्रोसेस इतना सरल, इतना सादा, वो कुछ नहीं कहते थे, उनकी कमाल की जो बात है वो कुछ कहते नहीं थे, वो सिर्फ आंखों से बयां करते थे। और हमको पूरी उन्होंने छूट दी कि तुमको जो जैसे करना है आप करो, हमको इम्प्रोवाइजेशंस, आप इम्प्रोवाइज करिए ये सीन, आप इम्प्रोवाइज करिए, खुद करिए, आप ये पूरा तैयार करिए। एक अलग अलग हमने सीन तैयार किए, उनका प्रोसेस बहुत खूबसूरत था। इसी तरीके से नसीरुद्दीन शाह कुछ समय के लिए आया करते थे, साल में 2 दफा, और उनका एक कमिटमेंट था कि NSG ने मुझे एक जमीन दी है, मुझे एक मौका दिया है जिंदगी जीने का, तो मेरा भी कुछ फर्ज है और मैं यहाँ पर आऊंगा और बच्चों को सिखाऊंगा। तो वो एक एक महीना वहां पर, 6 महीने में एक बार आया करते थे। तो उनके साथ भी बहुत उम्दा हमारा अनुभव रहा, वो भी इम्प्रोवाइजेशंस देते थे, सिचुएशंस देते थे, और फिर हम लोग उसको प्ले करते थे। हाँ, और काफी दोस्ताना व्यवहार था सबके साथ, ऐसा हमको लगा ही नहीं कभी भी कि कोई हमारे ऊपर, कोई टीचर टाइप जो होते हैं, एक अलग तरह की मानसिकता सिखाने वाले, उन्होंने हमारे अंदर जो स्टूडेंट के तौर पर जितनी भी पोटेंशियल थी, जो भी हमारे अंदर उम्मीदें थी, उसको उन्होंने निकाला, निखारा, और उसके साथ हमको तैयार किया। सबकी अपनी अपनी एक होता है कि किसी की ये क्षमता है, किसी की कुछ और क्षमता है, और हर एक की कमजोरियां भी हैं, सीमाएं भी हैं। तो उस अनुरूप, क्योंकि ड्रामा विधा ऐसी है कि इंडिविजुअल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इंडिविजुअल को हमेशा इन्होंने उसको कहीं नजर में रखा, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो सामूहिक काम है, जो टीम वर्क है, उसको भी तरजीह दी और उसके साथ भी हमको तैयार किया। तो हर एक की अपनी खासियत है। अंकुर साहब तो कमाली एनसाइक्लोपीडिया है रंगमंच के, वो तो कभी कोई किताब कॉपी कुछ नहीं लाते थे, और उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ाई है, वर्ल्ड

0: हिस्ट्री पढ़ाई है रंगमंच की, क्या
1: अच्छा
0: क्या डायनेस्टी, क्या चाइनीज डायनेस्टी के नाम उनको याद, जापानीज डायनेस्टी के नाम याद, अब इसके बाद ये राजा आए, उन्होंने रंगमंच को इस तरीके से प्रश्रय दिया, फिर उसके बाद इतनी इतनी सदी में वो आया, अरे साहब कमाल। और आज भी अंकुर साहब जैसा तो एनसाइक्लोपीडिया विरला ही होगा शायद कोई।
1: ओ, इसका मतलब है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी वहां मिलता रहा, इसका
0: जी
1: जिस तरह से आप बता रही हैं। तो
0: जी
1: अगर
0: जी
1: एक कुछ शब्दों में अगर आप बयान करना चाहते हैं, तो इतने गुरुओं से, एनएसटी के गुरुओं से, आपको कोई एक ऐसी एक या दो खास बात बताइए जो आपको लगा कि आपने सीखी और बाद में आपकी जो रंगमंच की यात्रा रही उसमें वो काम आई। कोई एक दो टिप ऐसे कुछ मिले जो आपको हमेशा जिंदगी में लगा कि अरे देखो ये चीज मैंने वहां सोची, ऐसी कुछ बात है?
0: बातें तो वही हैं जो शायद माता पिता ने भी सिखाई थी, और वही बातें वहां दोहराई गई, और मुझे लगता है उस जमाने में इन्हीं बातों पर बहुत जोर था कि आप जो हो वही रहो, एक तो ये, कुछ और बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि यदि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप से हट जाओगे तो आप नहीं रहोगे, और जब आप नहीं रहोगे तो कुछ बनने के चक्कर में आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ये है कि आप रहो, एक तो ये सीखा, और साथ साथ देखिए कितना बड़ा विरोधाभास कि कभी कभी दूसरों दूसरे का जीवन भी जी के देखो, तभी आप अभिनय कर पाओगे, है ना। तो ये भी मजेदार बात है कि अगर, जो कि हमारी माँ भी हमको कहा करती थी कि बेटा सहानुभूति नहीं समानुभूति रखो दूसरे के साथ, कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरा क्या होता। अगर हम ये कहते हैं अरे कितना गरीब आदमी है बेचारा, बारिश में भीग रहा है, इसके पास कपड़े नहीं है, तो आप ये नहीं, सहानुभूति नहीं बेचारा, ये ना ना ना, उसको फील करो, और उसको फील करो, और इतनी फील, इतना फील करो कि तुम्हें लगे कि वो मैं हूं, वो जो भिखारी है सामने जिसको जरूरत है शरण की। इस तरीके से हमारा मतलब कुल मिला के बचपन, एनएसडी, कॉलेज, और फिर बाद में मेरा ये प्रोफेशन, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें आपस में इस कदर एकम एक है साहब कि इसको मैं अलग नहीं कर पाती हूँ, वही चीजें हैं, वही है।
1: मदर की जो सीख थी एम्पैथी वाली, एम्पैथी
0: हाँ
1: होनी चाहिए इंसान के अंदर सिंपैथी की जगह,
0: हाँ
1: तो बहुत ही बढ़िया बात है और वही जिंदगी में आपके साथ चलती रही ऐसा लगता है।
0: जी
1: चलिए
0: जी
1: चलिए, तो माँ की सीख के नाम पे हम रुक के गाना सुनते हैं और फिर आपकी
0: जी
1: जो नाट्य यात्रा है उसके बारे में आगे बातचीत करते हैं।

0: हाँ वेलकम बैक अर्चना जी. अब आपने कोर्ट मार्शल, नटी बिनोदनी, मीरा नाची, मैकबेथ, टोबा टेक्सिंग बताया ये आपने, और इन सब चर्चित नाटकों में काम किया है. तो इनमें से कुछ बताइए, कोई ऐसा इंसिडेंट या इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो आपके बहुत ही दिल के करीब है और आपके मन में इच्छा होती है कि अरे मौका मिले तो इसको एक बार दोबारा किया जाए, ऐसा कोई किसी नाटक के बारे में क्या क्या विचार है आपका?
1: इसमें कुछ नाटक के नाम छूट गए जो कि मेरा बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है.
0: जी
1: एक रांगीर राघव साहब की कहानी है गदल
0: गदल. अच्छा
1: जी, वो भी मैंने डायरेक्ट की है और वो बहुत खूबसूरत कहानी है. एक औरत की जिद की और उसके जुझारूपन की बहुत खूबसूरत कहानी है. तो मैं उसको दोबारा से अब करना चाहूंगी क्योंकि मैंने इतनी जिंदगी जी ली है और जब मैंने किया था तब ये मैं मात्र 30 साल की, ना 26 साल की थी, और अब मैं बिल्कुल उससे आगे आ चुकी हूँ. तो मैं गदल करना चाहूंगी. निश्चित तौर पे नटी विनोदिनी भी बहुत खूबसूरत नाटक है क्योंकि नटी विनोदिनी तो एक सच्ची कहानी है और बंगाल की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री की कहानी है जो बाद में रामकृष्ण परमहंस की शरण में चली जाती है. ये तमाम जो रंगमंच का कारोबार है वो देखती है और उसका दिल दुखता है किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कैसे उसका नाम हटाया गया. तो वो बहुत उससे दुखी होके और एक तरीके से पूरा संन्यास सा ले लेती है जिंदगी से और चली जाती है. तो वो भी खूबसूरत नाटक, देखिए सारे बहुत खूबसूरत लिखे गए हैं. और अभी की जो परिकल्पना अब मैं कर पाती हूँ वो जो उस समय मैंने कमियां रखी होंगी, छोड़ दी होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं दोहराती हूँ तो लगता है अरे ये अगर इस तरीके से करती तो शायद और ज्यादा अच्छा होता. तो और थोड़ा दूरी पे हूँ, उस नाटक को कितने साल पहले मैंने किया, अब अगर मैं करूंगी तो कैसे करूंगी. आज के संदर्भों में हो सकता है मैं बहुत सारे उसमें उसको एडिट करके कुछ चीजें उसमें ऐड करूं, लेकिन निश्चित तौर पे कृति के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते क्योंकि वो खूबसूरत लिखा हुआ है. तो बहुत उम्दा नाटक है. मैकबेथ को भी हम आज के संदर्भ में हम उसको परिभाषित और परिलक्षित कर सकते हैं. मैकबेथ भी मेरा फेवरेट नाटक है. तो ऐसा कोई एक नाटक नहीं, कई नाटक हैं जो मैं दोहराना चाहती हूँ. अभी दिक्कत ये आ गई है रंगमंच में कि और ये दौर बड़ी जल्दी का है साहब, और ये जो रंगमंच नाम की चीजें, इसमें सुकून चाहिए, धैर्य चाहिए, तो वो धैर्य की कमी होने की वजह से थोड़ा सा साहस नहीं जुटा पाते कि बड़ी आसानी से हम एक नाटक शुरू कर दें. क्योंकि आजकल के बच्चे भाई अभी सोशल मीडिया का जमाना है, उनके पास टाइम नहीं है इतना, तो देखते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे विद्यार्थी बहुत उम्दा है और काम करेंगे हम लोग और करेंगे नाटकों को हम दोबारा से,
0: चलिए बहुत
1: उम्मीद
0: बढ़िया.
1: है
0: तो अच्छा, रोल्स भी आपने कई तरह के किए हैं, मतलब एक्टिंग के साथ साथ,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इनमें कौन सा, जब आपने एक्टिंग की थी उस टाइम आपको सबसे अच्छा चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा था, या कौन सा लगता है आपको अभी अपने लिए, कुछ उसके बारे में बताएंगी?
1: एक तो मैंने सरताज माथुर साहब के डायरेक्शन में होरी किया था जिसमें
0: होरी.
1: मैं धनिया की भूमिका मैंने अदा की थी उसमें, और बहुत ही खूबसूरत वो नाटक था जो मेरी एक बहुत ही प्यारी याद है. और वो कैरेक्टर मैं दोबारा करना चाहूंगी अब. और इतना गहरा वो कैरेक्टर है धनिया का, होरी और धनिया जो पति पत्नी है और बहुत गरीब हैं, उनकी कहानी है, उपन्यास है होरी, इनका गोदान, गोदान
0: प्रेमचंद
1: गोदान
0: प्रेमचंद प्रेमचंद जी
1: प्रेमचंद
0: का,
1: प्रेमचंद जी का गोदान है. हाँ,
0: गोदान. हाँ,
1: तो
0: गोदान
1: उसको
0: का.
1: होरी के तौर पर सरताज माथुर साहब ने उसका रूपांतरण किया था नाट्य मंचन के लिए. तो नाट्य रूपांतरण हम लोगों ने प्रस्तुत किया था. तो वो मेरी बहुत ही, मुझे लगता है, दिल के करीब है. फिर इसके अलावा लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर है वो मैं चाहती हूँ करना, जो मैकबेथ का एक बिल्कुल मुझे लगता है वो मेन किरदार है, मैकबेथ से भी ज्यादा है, क्योंकि मैकबेथ को मैकबेथ के रूप में सामने लाने वाली लेडी मैकबेथ है,
0: लेडी.
1: वो ही उसको प्रवोक करती है, तमाम महत्वाकांक्षा को उसको कहते हैं ना
0: जगह
1: बल देती है,
0: जगाती
1: जगाती
0: है,
1: है.
0: जगाती है. राइट राइट.
1: और वो इस कदर जगाती है कि कहां से कहां वो लोग पहुंच जाते हैं और कितना ट्रेजिक एंड इस नाटक में होता है उनका. तो फिर पारसी रंगमंच मेरा फेवरेट एक पड़ाव है, जिसमें मैं देसी और राहिल की भूमिका में अपने आप को देख पाती हूँ कभी कभी। यहूदी की लड़की जो नाटक है, आगाश
0: अरे
1: कश्मीरी का,
0: वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस
1: बहुत खूबसूरत नाटक
0: है।
1: है जी। तो ऐसे कई सारे हैं, ऐसा कोई एक नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग रंग हैं, अलग अलग उसकी दुनिया अलग अलग है। तो सारी दुनिया को जीना और उसको, मुझे लगता है कि उस यात्रा को आगे बढ़ाना, यही एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है जीवन
0: बिल्कुल, ये ऑटोबायोग्राफीज वाली बात आपने सही की है। इनफैक्ट फिल्मों में भी अभी ऐसा काफी दौर आया हुआ है कि जब ऑटोबायोग्राफीज पे फिल्में बन रही हैं। अभी मैंने
1: जी।
0: एक टाइटन देखी थी, टाइटन मेक इन इंडिया, बहुत बहुत खूबसूरत बनाई है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने काम किया उसमें,
1: जी
0: जे आई
1: जी
0: डी टाटा का किरदार निभाया है, बहुत अच्छी है।
1: जी
0: तो इस
1: जी
0: तरह से अब दोबारा दौर आ रहा है। तो कोई,
1: जी
0: इतने आपने एक्टिंग की है, इतने आप दर्शक से जुड़ी रही होंगी, कोई ऐसा दर्शकों की प्रतिक्रिया, किसी दर्शक का कोई आपके प्रति लगाव, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट है आपको याद आता है अपने स्टेज कैरियर से जो आप
1: जी
0: भूल नहीं पाती है, कोई ऐसा है?
1: जब मैंने गोदान किया, ये होरी किया, और जिसमें मैंने धनिया की भूमिका आपको कहीं बताया अभी, तो मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी अभी कुछ साल पहले, तो एक स्टूडेंट एडमिशन के लिए आई, ठीक है, उसका एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बाद में उसने पीएचडी भी की और अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। जब वो पढ़ रही थी, प्रशिक्षण ले रही थी ड्रामा डिपार्टमेंट से, और उसका जब प्ले था, पहली दफा उसके पेरेंट्स डिपार्टमेंट में आए, और उसके जो फादर थे उन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया, और उन्होंने कहा आपने तो रविंद्र मंच पे नाटक किया था एक जमाने में। मैंने कहा जी मैं रविंद्र मंच पे किया करती थी निश्चित तौर पे, आपने कौन सा नाटक, और उन्हें पूरा याद था, उन्होंने कहा कि आपने धनिया की भूमिका की थी, और वो जो भूमिका की छाप है वो आज तक मेरे दिमाग से हटी नहीं है, और मैडम आपने बहुत खूबसूरत अभिनय किया था। मुझे लगा कि वाकई में कहीं तो शिद्दत रही होगी शायद, और वाकई में वो इतना खूबसूरत नाटक था, और वो इतना खूबसूरत खूबसूरत किरदार था जो कि सरताज जी ने मुझसे करवा दिया। तो वो एक तो मेरी ये कमिटी याद है। इसके अलावा कुछ साल पहले कुछ हमारी एक मीटिंग थी जिसमें पेरेंट्स को बुलाया था, और दो उसमें महिलाएं किसी बच्चे की मदर थी, और वो मुझे देख के अचानक से बहुत इमोशनल हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, गले लगी मेरे से बाकायदा, और बहुत प्यार से मिली, और अचानक उनकी आंखें गीली हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, बोले पता नहीं क्यों हमको लग रहा है कि आपसे हम पहले भी मिले हैं। तब वो दूसरी को याद आ गया, वो दोनों एक्चुअली साथ की थी, तो बोली तुम्हें याद है रविंद्र मंच हम जाया करते थे, और मैडम उस समय बहुत ही यंग थी, पतली दुबली एकदम एक लड़की, और बहुत सारे इनके हमने नाटक देखे हैं, यहूदी की लड़की भी देखा है, और वो नाटक हमें आज तक याद है कि गरीबों का भी कोई आसरा होता तो क्या होता, भूते काफिर हमारा भी खुदा होता तो क्या होता, कोई लज्जत नहीं है फिर भी दुनिया प्यार करती है, खुदावंदा इस मोहब्बत में भला होता तो क्या होता, जब इतनी बेवफाई पे दिल उसको प्यार करता है, इलाही वो सितमगर बा वफा होता तो क्या होता। तो ये उसके अल्फाज, और वो बहुत इतनी ज्यादा वो इमोशनल हो रही थी, पुरानी यादें ताजा कर रही थी, और मुझसे कह रही थी कि आप प्लीज आप एक्टिंग किया करो, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, आप सिर्फ पढ़ाती हो, आप एक्टिंग क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा देखिए कभी करेंगे, भविष्य में चिंता ना करें। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनल होकर मुझसे मिलते हैं, और बहुत ही दिल से मिलते हैं, ऐसा लगता है जैसे यही मेरा परिवार है। तो वो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो एक वो फीलिंग है, वो हर तरफ मुझे फील
0: बिल्कुल
1: होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात। देखिए, दिल को दिल से रहा रहती है। मैं आपसे अगली बात यही था कि आप अपने किरदार में से कोई एक हमें अच्छा सा डायलॉग या कोई ऐसा चीज सुनाए तो मजा आ जाएगा।

0: तो चलिए इन्हीं यादों के नाम पे रुक के एक गाना सुनते हैं और फिर थोड़ी सी
1: जी
0: अपन करीब करीब बकौल अमीन से यानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, तो एक दो
1: जी
0: बातें और फिर आगे चलते
1: जी
0: हैं।

0: हाँ, वेलकम बैक अर्चना जी. आप, हालांकि ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता होगा कि अगर अभी भी आपको स्टेज पे दोबारा आप जब जाती होंगी कभी भी आप एक्टिंग करने के लिए या वैसे ही, तो कैसा अंदर से क्या कोई एक्साइटमेंट महसूस होता है या क्या एंजाइटी होती है, क्या किस तरह के इमोशंस आते हैं इतनी लंबी यात्रा के बाद भी आपको कैसा लगता है स्टेज पर दोबारा जाने से?
1: एंजाइटी तो होती है कि मैं हर बार नई हूं। जो जो मैंने किया अभी तक वो कल की बात थी, अभी के पल में मैं क्या हूं और मैं किस तरीके से उस किरदार को प्रस्तुत करूंगी सबके सामने, तो इस बात की चिंता भी करती हूँ। और एक एक्टर के लिए बहुत ही जरूरी ये टॉनिक है कि वो थोड़ा सा नर्वस भी रहे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा चल पाता है, तो सम पे रहना पड़ता है। और उस सम पे आने से पहले हर एक जो भी अच्छा कैरेक्टर जीना है अगर आपको बतौर कलाकार, तो वो बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टेंशन होता है, थोड़े से कांप कंपन होता है शरीर में, थोड़ी आवाज लरसती है, लेकिन और जैसे ही उस उसमें सुर में आते हैं साहब, फिर वहां बस सेट हो जाता है सारा कुछ। तो ये जैसे जैसे आप ये देख लीजिए, जो गाने वाले हैं, संगीत के लोग हैं, वो भी इससे गुजरते हैं। जब पहली दफा स्टेज पर बैठते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती होगी। मैं क्योंकि मैं शास्त्रीय गायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहुत कम होता है, जो बहुत पक्के रियाजी हैं उनको शायद ना होता होगा, लेकिन जो हम जैसे कच्चे लोग हैं और जो अभी सीख ही रहे हैं, तो मैं तो अभी भी रंगमंच की विद्यार्थी हूँ, मैंने तालीम ली है और उसको परिष्कृत करना है, अभी और आगे जाना है, सीख रहे हैं तो विद्यार्थी ही रहेंगे। तो अभी भी होता है, टेंशन होती है, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस भी आता है धीरे धीरे करते करते।
0: जी, बिल्कुल सही बात.
1: और पुरानी यादें खींचती हैं, पुराना तमाम एक तरह से चित्र चलता है, रील चलती है, कैसे हमने अपना शुरुआत की थी, कैसे हम आए, कैसे हम वहां चले, और बड़ी तेजी से वक्त गुजरा है ये भी नजर आता है, सब
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: सही,
1: गुजर गया।
0: सब कुछ देख. चलिए, कितनी अच्छी हम एक बातों को याद कर रहे हैं. अच्छा, आप ये बताइए अर्चना जी, मान लो आप थिएटर में नहीं होती, जब थिएटर में नहीं होती है तो आप अपना समय, वक्त कैसे बिताना पसंद करती है? एक तो ये भी बताइए कि अगर थिएटर आर्टिस्ट नहीं होती अर्चना तो क्या बनती, क्या

0: बनना चाहती थी या क्या बन सकती थी, और दूसरा है कि जब आप थिएटर नहीं कर रही होती है तो आप अपना वक्त कैसे गुजारती है, समय बिताना पसंद कैसे करती है, आपका पास टाइम क्या है सबसे अच्छा?
1: सबसे अच्छा मेरा म्यूजिक है, मैं म्यूजिक सुनती हूँ बहुत, और मुझे बहुत सारे जो गजल गजल गायक हैं उनको सुनना अच्छा लगता है। जग्गी साहब हैं, गुलाम अली हैं, फरीदा खानम है, बेगम साहिबा, बेगम अख्तर हैं, उनको सुना करती हूँ। एक अलग ही अलग मिजाज है। उसके अलावा और भी मुझे पुराने फिल्मी गाने बहुत पसंद है, वो सुना करती हूँ। थोड़ा आध्यात्म की तरफ भी हूँ तो आध्यात्मिक जो बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सब सुना करती हूँ। और साथ साथ मेरा सबसे बड़ा पैशन है पढ़ना। मुझे लिटरेचर और तमाम चीजें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा खाली टाइम तो इसी में ही जाता है। वैसे तो मुझे खाली टाइम मिलता नहीं है क्योंकि मेरी जिंदगी इस रूप में मसरूफ है। मैं जिंदगी को बहुत अच्छे से जीती हूँ, शिद्दत से जीती हूँ, और मुझे मिलना मिलाना, लोगों से बात करना, कभी कभी हॉस्पिटल भी जाती हूँ, कुछ लोगों की मदद भी करती हूँ, वहां जाके बहुत सुकून मिलता है मुझे। तो ये मेरा वक्त है। और कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप है उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, सोशल ग्रुप है उनके साथ जुड़ी हूँ, तो जहाँ जो भी काम होता है वहां चली जाती हूँ, घर पर आ जाते हैं लोग, तो कुल मिला के जिंदगी जीती हूँ। और अगर मैं नाटक में नहीं होती तो भी मैं अर्चना ही होती, और जो भी अच्छा लगता वो करती, क्योंकि मैंने जिंदगी को प्लान ही नहीं किया, कभी नहीं प्लान किया साहब, ना मैंने नाटक में जाने का प्लान किया था। ये तो जिंदगी है मेरी, तो जिंदगी जी रहे हैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, अगर अर्चना जी मैं ये गुस्ताखी करूं कि आपसे कहूं कि एक कोई अपने पसंदीदा गाने की कोई लाइन सुनाए, तो आप चाहेंगी सुनाना अगर आप कंफर्टेबल हो? ऑफ कोर्स।
1: सुर सुर बहुत भटके हुए हैं
0: अरे
1: मेरे,
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप दिल से गाएंगी तो सुर अपने रास्ते पे वापस आ जाएंगे।
1: हम जिन गानों को सुनकर प्रेरित हुए बचपन से, और जिन जो गाने आज भी मेरी जिंदगी का आधार है, मैं एक गान एक उस उन्हीं में से एक गाने की कुछ लाइन मैं आपको सुनाती हूँ।
0: जी जी

0: निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हो नदिया चले चले रे धारा, हो धारा चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो बस आप चलते रहे चलते
1: बस
0: रहे
1: बस
0: चलते
1: बस
0: रहे, जब तक सांस है जब तक चलते रहे और चलते रहे,
1: क्या
0: तो
1: क्या
0: चलना
1: बढ़िया,
0: होगा।
1: क्या बढ़िया नोट पे आपने, म्यूजिकल नोट पे अपनी बात हर तरह से कह दी, अपने जिंदगी का सफर बयान कर दिया। अभी बस मैं एक आखिरी बात पूछूं, अगर इसी से रिलेटेड, कि
0: जी
1: आपको अपने पूरे रंगमंचीय जीवन को यदि एक वाक्य में समेटना हो तो वो वाक्य क्या होगा? क्या यही जो अभी हम कह रहे थे,
0: जी तुझको चलना
1: तुझको
0: होगा,
1: चलना होगा? देखिए क्या क्या क्या मजा आ गया ना बात के। चलिए
0: क्योंकि
1: बहुत बढ़िया।
0: रंगमंच रंगमंच जीवन का ही तो अक्स है, और जब हम जीवन में नहीं रुकेंगे तो रंगमंच में भी नहीं रुकेंगे, और चलता चलेगा कारवां, चलता चलेगा पूरा सिलसिला, कभी ना रुकेंगे हम जो भी जहां भी कर रहे हैं। ना सिर्फ रंगमंच कलाएं, जो भी हम जिस भी रूप में हम कहीं अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, कभी भी हौसला ना खोए, और निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, और यही हमें परिष्कृत करेंगे। संघर्ष ही हमारा, मुझे लगता है, साथी है,
1: जी
0: तो इससे कभी घबराए नहीं, और चलते रहे चलना होगा, चलते रहे चलना होगा।
1: तो अर्चना जी, आज की इस बातचीत में हमने आपके जीवन के अनेक रंग देखे, एक बेटी, एक विद्यार्थी, एक कलाकार, एक निर्देशक, एक शिक्षिका, और सबसे बढ़कर रंगमंच की एक समर्पित साधिका के रूप में। एनएसजी के विद्यार्थी से लेकर विश्वविद्यालय की डीन बनने तक का सफर, देश के महान रंगकर्मियों के साथ काम करने का अनुभव, और अनगिनत विद्यार्थियों को दिशा देने का आपका योगदान वास्तव में प्रेरणादायक है। मुझे फैज साहब का एक मिसरा याद आ रहा है, और भी बहुत दुख है दुनिया में, मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा। रंगमंच शायद उन्हीं राहों में से एक है जो हमें अपने समय, अपने समाज और अपने भीतर के इंसान से जोड़ता है। अपनी पूरी निष्ठा के साथ ये काम किया, रेडियो एसएन की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद और शुक्रिया। आपने अपने जीवन को इतने सुंदर अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। हम कामना करते हैं आपकी सृजन यात्रा यूं ही नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे, और रंगमंच के प्रति आपका यह समर्पण आने वाले वर्षों में भी अनेक कलाकारों के लिए प्रकाश स्तंभ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, और सभी सुनने वाले मेरे श्रोताओं को खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक शख्सियत के साथ में। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: हेलो दोस्तों, क्या हाल है। जिंदगी जीने के तीन नियम। पहला नियम, ये व्यक्ति कहते हैं, चमकती आंखों से अपने आसपास की पूरी दुनिया को देखो। महान रहस्य ज्यादातर अजीबोगरीब जगहों पर होते हैं। जो चमत्कारों पर भरोसा नहीं रखते, उनके साथ चमत्कार होते भी नहीं। तो भैया, आंखों से जितना हम देख पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा पर्दे के पीछे हो रहा होता है। जी हां, फिर चीजें दिखती तभी हैं जब खोजने वाली नजरें हों। तो ध्यान दीजिए अपनी चारों तरफ, ऑब्जर्व कीजिए, महसूस कीजिए। नियम नंबर दो, लक्ष्य होना अच्छा है, पर उससे हमारे अच्छे गुणों का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, अब इन्होंने तो कह दिया, मतलब क्या हुआ। जीवन में कुछ बड़े सपने होने चाहिए। देखिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए की गई कोशिशें भी हमें तरक्की की मार्ग पर ले जाती हैं। कोशिश तो करें, हमारी मेहनत हमें मांझती है, तैयार करती है। हमारा जुनून हमें बहुत कुछ बदल डालता है। कोशिश तो करें, पर किसी भी कीमत पर इच्छाओं को पूरा करने की जिद हमें कहीं नहीं ले जाती। जिद मत करिए, पैशनेट रखिए और काम करते तो रहिए। नियम नंबर तीन, स्वीकार करें और फिर काम करें। इस पल में जो कुछ भी सामने है, उसे मान लें जैसे उसे आपने ही चुना हो। अपने आज का विरोध ना करें, जबरदस्ती अपोज ना करें उसका। उसे फ्रेंड बनाएं, शत्रु नहीं। इससे आपका जीवन बदल जाएगा। कल कैसा होगा हम कुछ नहीं कह सकते, पर कल को बेहतर बनाने के लिए हम आज मेहनत तो देखिए जरूर कर सकते हैं, पर इसके लिए आज को समझना भी तो जरूरी है। तो समझिए, आज में खुश रहिए, आज को समझिए। फिर मिलते हैं
1: दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

दस्तकें। दरवाजे पर दी गई दस्तकें हैरत की आवाजें हैं। ये पूछना कि बाहर कौन है, दिल का जोर जोर से धड़कना है। दरवाजे खोलना प्रार्थनाएं हैं। दरवाजे के उस तरफ उसका नहीं होना कविता है। आंखें बंद करना और दरवाजों की दस्तक पर हैरान होना प्रेम है, प्रतीक्षा है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।
1: दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पापा ने पूछा, बेटी बड़ी होकर तुम क्या करोगी? बेटी ने बहुत हंसते हुए कहा, शादी कर लूंगी। पापा ने कहा, ये गलत बात है बेटे, अभी से किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोचते। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

एक बार महर्षि व्यास ने अपने बेटे शुकदेव को पढ़ने के लिए राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक का महल देखकर शुकदेव जी को लगा कि राजा उन्हें क्या उपदेश दे पाएंगे, बेकार में ही पिताजी ने इनके पास मुझे भेज दिया है। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए, लेकिन शुकदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार ना कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस शुकदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

आइए दोस्तों, आज आपको बताता हूं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हां, इनका नाम था कैलाश सांखला। अपने यहां कहा भी गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, मतलब वीर ही इस धरती का भोग करेगा। यही बात व्यवहार में जब बहुत मजबूत हो गई तो अपना देश गुलाम हो गया। हमारे ज्यादातर कथित वीर अपने दुश्मनों को धूल चटाने के बजाय बाघ मारने में मस्त हो गए। 1875 से 1925 के बीच कथित वीर राजा राजकुमारों और कथित अंग्रेज बहादुरों ने 80,000 बाघों का कत्ल कर दिया। 1947 में अनुमानतः 40,000 बाघ थे। मैसूर के एक महाराजा और उनके मेहमानों ने 1945 से 1967 के बीच 100 से ज्यादा बाघ मार डाले। वो महाराज अपने अंतिम दिनों में बड़े निराश रहते थे कि 95 बाघ मारने के बाद वो 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। और तो और, भारत की आजादी के बाद भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ साल 1961 में सवाई माधोपुर आई और एक बाघ मारने की अपनी खूनी शौक पूरा कर गई। बाघों और वन्य जीवों ने इस जम्बू द्वीप पर कथित इंसानों के हाथों हैवानियत का वो दारुण दौर देखा है जब जंगल के कथित रक्षक अधिकारी शिकार की मंजूरी दिया करते थे। वन कटवाना, वन्य जीवों को मरवाना बिकवाना, ये कानूनी धंधा था। तब तमाम यारबाज वन रक्षक या कहिए तो भक्षक शिकार करवाने के लिए बहुत मशहूर हुआ करते थे। राजस्थान में एक ऐसे ही अधिकारी थे जो शिकार की मंजूरी बेधड़क दिया करते थे, लेकिन एक दिन संयोग से वो खुद शिकार पर निकल पड़े। आसानी से एक बाघ दिख गया, उससे भी ज्यादा आसानी से रक्षक महोदय ने उस पर बंदूक साध दी और गोली चला दी। बड़े ही शान से वो उस बाघ के पास पहुंचे और गौर किया कि कितने खूबसूरत जीव को उन्होंने मार गिराया। उसके बदन पर बहुत सुंदर चमकीली धारियां थीं, एकदम कोमल। शायद उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, शायद वो पूछना चाहता था, साहब आप वन रक्षक हो या भक्षक? वन आपको रक्षा करने के लिए दिया गया है या तबाह करने के लिए? वन का मतलब केवल पेड़ नहीं होते, वन्य जीव भी तो होते हैं। वन्य जीवों के बिना पेड़ों का या फिर जंगलों का मतलब ही क्या है? सवालों ने अधिकारी महोदय का पीछा करना शुरू कर दिया। बताओ कि शिकारी हो या संरक्षक? अगर संरक्षक हो तो शिकार क्यों किया, क्यों मारा? अगर जिंदा कर सकते हो तो जिंदा करके दिखाओ। खाल पर जो सुंदर धारियां हैं उनमें से एक भी बनाकर दिखाओ तो जाने। पछतावे ने बहुत बेचैन कर दिया, होने लगी बहुत परेशानी। ये क्या कर डाला मैंने? क्या यही भारतीय वन्य सेवा है? वो सोचने में डूब गए कि मैंने तो एक ही मारा, लेकिन सैकड़ों बाघों को शिकार का लिखित मंजूरी देकर मैंने ही तो मरवाया। मैं अनगिनत बाघों और वन्य जीवों का अपराधी हूं। उन्होंने गौर करना शुरू किया तो देखा भारी सरकारी पैसा पा रहे अनेक रजवाड़े शिकार करके मूछे ऐंठ रहे हैं। उदयपुर के महाराज हों या टोंक के नवाब, जयपुर के कर्नल हों, तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 1,000 बाघों के शिकार में भाग लिया। जाने कितने ही तेंदुए, जंगली सुअर और अन्य बड़ी बिल्लियां मार दी गईं, कोई हिसाब नहीं। असर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में लोग चर्चा करने लगे कि एक युवा वन अधिकारी हैं कैलाश सांखला, जो शिकार की मंजूरी नहीं देते। साल 1956 से ही सांखला ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि कृपया अबोध वन्य प्राणियों को मत मारिए, वरना वो समाप्त हो जाएंगे और जंगलों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब हालात बेहद खराब थे। दुनिया भर में भारत में पर्यटन का मतलब होता था जंगलों में जाइए और जानवरों को मारने का मजा लूटिए।
कैलाश सांखला देश में पहले ऐसे वन्य जीव प्रेमी थे जिन्होंने समझ लिया कि पहले देश का कानून बदलना पड़ेगा। सांखला के प्रयासों से धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी। वन्य जीवों और उनके अंगों का व्यापार रुक गया, निर्यात रुका और अंततः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को समझ में आ गया कि बाघों को बचाना होगा। और तब देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कैलाश सांखला उसके पहले निदेशक बनाए गए। तब भारत के जंगलों में 300 से कम बाघ बचे थे। वो कहते थे कि जंगलों में कुछ मत करो और किसी को कुछ करने भी मत दो, प्रकृति अपने आप असली रंग रूप में लौट आएगी और बस कम से कम मानवीय हस्तक्षेप तो ना होने दो। भारत में साल 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शानदार शुरुआत हुई। उस साल बाघ देश के 9 जंगलों में सुरक्षित थे और अब करीब 53 जंगलों में सुरक्षित हैं। 29 जुलाई को जब विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है तब पूरी दुनिया गौर करती है, 75% बाघ केवल अकेले भारत में हैं। यहां वनों में उनकी संख्या 3000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में कैलाश सांखला को भला हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

प्रेम करुणा और क्रोध घृणा की शक्तियां संसार में हमेशा काम करती रहती हैं। ये एक झूले के खेल की तरह होता है। अब सवाल यह है कि आप झूले के किस सिरे को वजनदार करना चाहते हैं। जैसे ही आप ऐसी चीजों में विश्वास करना शुरू करते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, स्वाभाविक है आप द्वंद में जीने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। आज आप एक शांत व्यक्ति हैं,

कि मैं नहीं जानता, आप किसी के साथ लड़ने के योग्य नहीं रह जाते, आप विरोध के योग्य भी नहीं रह जाते, आप अत्यंत विनम्र और बेहद अच्छे इंसान हो जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर शांति लाने के योग्य नहीं हैं, आप भला विश्व में शांति स्थापित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? मतलब यह हुआ कि अगर आप अंदर से खुद शांत नहीं हैं, तो बाहर आप शांति कैसे फैला सकते हैं? अगर इस छोटे से मन को आप शांत नहीं कर सकते, तो क्या विश्व में शांति पैदा कर पाएंगे? आप संसार में जो भी देख रहे हैं, वो आपके छोटे से मन की एक छवि है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपके मन में नहीं हो रही? वही तो हो रही है। योग विज्ञान अपने भीतर देखने का एक तरीका है। किसी खास दृष्टिकोण से नहीं देखना, सिर्फ भीतर देखना। यदि आप किसी चीज से अपनी पहचान बना लें, तो आप भीतर नहीं देख सकते। जैसे ही आप किसी चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है दोस्तों कि मैं एक तरह की गाड़ी चलाता हूं, मैं एक तरह के मकान में रहता हूं, फ्लैट में रहता हूं, एक तरह का मोबाइल लिए फिरता हूं। क्या मेरी पहचान इन चीजों से है या मेरी पहचान से इन चीजों की पहचान है? सोचने की कोशिश कीजिए। आपका सोचना और महसूस करना बस इसी बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त आपने अपनी पहचान किससे बनाई है। गाड़ी से, मोबाइल से, घड़ी से, घर से, किससे? अपनी पहचान को मिटाने और सच्ची शांति का अनुभव करने में ध्यान आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो कम से कम उस वक्त तो आपके लिए कुछ भी और मायने नहीं रह जाता, सिर्फ आपका वजूद बच जाता है। वहां भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शांति का मतलब है शून्यता या खालीपन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं। शांति ऐसी कोई चीज नहीं है जो घटित होती है। शांति ऐसी चीज है जो हमेशा है। शांति ही अस्तित्व की बुनियाद है। सतह पर जो होता है व्यवधान है, उपद्रव है, वो ठीक समुद्र जैसा होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है ना, लेकिन नीचे गहराइयों में ये पूरा शांत होता है। जब आप इस गुण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेंगे, तो वास्तव में शांति पा जाएंगे। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पता नहीं भैया, तुम लोगों का ब्रेकअप कैसे हो जाता है? यहाँ तो मेरी सेटिंग ही नहीं हो पा रही है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ आपके ही झाबुआ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील पर 90.8 FM सुनते रहें।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: कुछ कहती हैं सब्जियां,
6: आज बच्चे खेल खेल में सब्जी बने हैं। उन्होंने मिलकर तय किया कि बबलू महाराजा कद्दू बनेगा, उसकी राजकुमारी मिर्ची बनेगी चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
7: सब्जी खेलेंगे।
8: चिन्नम्मा तुम मिर्ची बनोगी,
9: पिंकी तुम टमाटर बनोगी।
10: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
11: मैं करेला बनूंगा।
12: बबलू तुम दही बनोगे,
13: मैं मिर्ची बनूंगी,
14: तुम

0: राजकुमारी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
1: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ, लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
1: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
2: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
1: अच्छा।
2: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
1: ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
2: अच्छा, बड़ा समझती हो।
3: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ।
4: तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
5: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
4: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
5: आलू
6: आलू
1: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
6: आलू के फायदे तो बताओ।
4: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
5: मुझे भी चाहिए शक्ति।
7: मुझे भी शक्ति। मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।
2: हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
3: हाँ, सब मिलजुल कर रहेंगे।
0: ये हुई ना बात।
1: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
2: हाँ मिर्ची, हम सब
3: भाई बहन हैं।
4: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
1: ओ, मैं तो गिर गई।
2: अरे मिर्ची, तू चोट लगी।
4: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
0: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
1: जी पिताजी।
0: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है, होता है कि नहीं?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, प्यार फैलता है, एकता बढ़ती है ना एकता?
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ, तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी, आप सही कहते हैं। मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूंगी।
0: ये हुई ना बात। शाबाश बेटी।
5: तो सुना आपने बच्चों, सभी सब्जियों के कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं, इसीलिए अब से ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बात ये है बच्चों कि हमें है सभी सब्जियां खाना।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
7: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
5: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
8: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
9: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
5: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
8: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
10: अपनी माँ को यह चिट्ठी दे देना।
8: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
11: माँ, ये चिट्ठी।
8: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
9: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
11: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
9: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका

विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ ठीक है। बहुत अच्छे।

0: के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
1: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
2: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
1: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
2: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
1: लगभग 10,000 बार।
2: 10,000 बार?
1: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
2: अच्छा,
1: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
2: अरे वाह,
1: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
2: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
2: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
3: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
2: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: और अब सुनते हैं एक अरबी लोक कथा जिसमें अपराधी के विरुद्ध गवाही दे रहा है एक दरख्त।
6: पुराने जमाने की बात है, एक शख्स

0: तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
1: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
0: उसने जवाब दिया,
1: अभी नहीं।
0: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई, उससे कहा,
2: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
0: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
2: हुजूर, दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
1: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
0: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया,
1: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
0: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
3: काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
0: काजी ने जवाब दिया,
1: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज ना देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज़।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

0: जाते हैं, चाहे बढ़ते जा रहे हैं, आपको संघर्ष करना पड़ेगा
1: जरूर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे हटो हटो, बंद करो ये गाना।
2: अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे बात छोड़ दो।
1: अरे तुझे चौप, कान खोल कर सुन लो, कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच गाना बंद। अब यह जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार
0: नहीं।
1: अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चलाएगा इधर। ओके,
0: अरे ये तो हमारी जमीन है,
2: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
0: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
2: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
0: अरे हमारे बच्चे तो भूखो मर जाएंगे।
1: चलो भागो यहाँ से, भागो।
3: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
0: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
3: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
2: हाँ हाँ हाँ जादो नाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
0: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर।
2: हाँ हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
4: लेकिन लेकिन जादो भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नियत ठीक नहीं है, कल कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
3: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी, हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
4: जादो भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
3: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग ल्यू, हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: यही है जादो ना।
4: अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
1: हटो पीछे। नहीं मोंटी, ये ले।
0: क्यों मार रहे हो?
3: ए कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को, हिम्मत है तो मुझे मार।
2: यही है, यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो देखो कैसे आंखें दिखा रहे हैं, देखो देखो इसे।
1: सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से। इसके साथियों को भी ले चलो। जादो ना चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन लियू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया, जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे। हम अंग्रेजों को मजा चखाएंगे, उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं।
2: तुम तो ठीक कहती हो रानी, ठीक कहती हो।
1: शांत
2: रहो यार,
1: एकदम शांत। लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों, तैयार हो जाओ।
2: तैयार है।
1: इससे पहले कि वो इधर आए, हम उन पर हमला कर देंगे।
0: इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों, गाइडन लियू को सब प्यार से रानी गाइडन लियू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
3: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़ कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स न देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुनो सुनो सुनो,
1: अब तो हद हो गई है। ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे।
4: हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे?
5: टैक्स भी किस बात का, हमारा देश, हमारी धरती, फिर कैसा टैक्स?
4: और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना।
5: रानी रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे।
1: नहीं नहीं
6: रानी, भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे।
5: नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो
7: नहीं, नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
0: ब बच्चों, इस तरह रानी गाइडन लियो और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन लियो ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन लियो के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं।
3: सिपाहियों,
8: यस सर,
3: पकड़ लो इसको,
8: यस सर,
3: भाग ले ना पाए,
8: ठीक है,
3: पकड़ो, इधर चल,
8: चल, पकड़ो,
9: छोड़ो मुझे, कायरों की तहे क्यों पकड़ते हो? हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो।
10: अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल में करना लड़ाई।
9: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे।
10: सिपाहियों, जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांट दो। बहुत परेशान किया है हमको।
9: तो मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ो इन्हें।
10: अच्छा,
9: छोड़ दो।
10: अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ जाओ, डाल दो इसको काल को घड़ी में।
0: इस तरह रानी गाइडन लियो ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया, तो गाइडन लियो के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियो को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया, जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन लियो को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन लियो ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन लियो भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
11: अरे रामू काका।
12: नमस्ते टीचर जी।
11: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
12: बस ठीक हूँ।
11: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
12: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
11: अरे,
12: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
11: अरे
12: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
11: कैसी बातें करते हो रामू काका, इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
12: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय
11: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का पांचवी पास होना जरूरी है और तुम्हारी बेटी तो पांचवी पास कर चुकी है।
12: जी।
11: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
12: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा, खाना पीना, कपड़े, किताबें।
11: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
12: क्या? हाँ। मुफ्त में दिया जाएगा।
11: और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
12: अच्छा। हाँ।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: अरे पिंकी, आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
1: अरे सहेली किसकी है
2: भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
3: पर हमको तो नहीं आता था।
1: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई।
2: अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती। क्यों?
0: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
2: अच्छा चलो चलो घर चले।
4: चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो।
5: धीरे धीरे। अरे हरीश सभी आ गए बस में?
4: देखता हूँ उस्ताद शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
2: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
4: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
2: आओ चलो चलो चलो आओ, आओ इधर बैठो।
4: हाँ इधर आओ आराम से, चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब अब चलाओ गाड़ी।
5: हाँ जी अभी लो।
4: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
2: अच्छा सुनो, मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना। ठीक है
0: भाई, पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
1: अरे बुद्धू गाने के साथ साथ बजानी है।
0: अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है।
1: चलो पिंकी शुरू हो जाओ।
2: बजे समय

0: स्कूल बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आग, ये भगवान आग लग गई है बैटरी पर। हां बैटरी पर ये देखो आग। हां अमित अमित चलो चलो जल्दी, राकेश हमें सब और पूनम कहां है? हां वो आग तो बढ़ती जा रही है। अरे
2: अरे उस्ताद गाड़ी रोको, उस्ताद गाड़ी रोको, गाड़ी में आग लग गई है।
3: हैं आग
1: किसे कहते हैं?
3: मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी।
2: हाँ तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ, पानी का इंतजाम करो, मैं यहाँ बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे जो आग बढ़ती जा रही है।
1: मैं बच्चों को बचाती हूँ। हाँ, हे भगवान।

0: अरे जल्दी बाहर आओ पिंकी, बाहर आओ, तो तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई है।
1: नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पहले पूनम को पकड़ो। अमित अमित देखो, पहले पूनम को।
0: अरे मुझे पकड़ाओ। अरे पिंकी बेटा तुम मुझे पकड़ाओ, जल्दी से आओ।
1: डॉक्टर
0: भैया बाहर आओ, पहले देखो तुम्हारे आग लगी है, जल्दी आओ।
1: बच्ची के कपड़ों में आग लगी हुई है।
2: अरे दमकल को बुलाओ ना,
3: और फोन करो ना जल्दी से, बच्चे हैं छोटे छोटे।
2: अरे दमकल को बुलाओ ना भाई,
3: जल्दी बुलाओ ना जल्दी।
4: आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते निकालते भी 6 बच्चों ने आग में झुलस कर वहीं दम तोड़ दिया। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, किंतु अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने 5 बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिंकी के इस वीरतापूर्वक बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला। वर्ष 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पिंकी के अभिभावकों को ये पुरस्कार प्रदान किया। वाकई ऐसे बच्चे हमारे देश, हमारे समाज की शान हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टांटिया भील 90.8 FM में, जावा की आवाज। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है, साथ ही रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यह प्रयास रहा है कि हमारा झाबुआ का किसान कृषि विज्ञान में आ रही नई से नई योजनाओं को, नई से नई तकनीकों को समझे और उसे अपने खेतों में उसका प्रयोग करें और इससे उन्नत पैदावार ले सके, साथ ही उन्नत किस्मों के बीजों के बारे में हमारा किसान जाने और हमारी कृषि में नए से नए बदलाव ला सके। रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। हमारा यह हमेशा से सहयोग रहा है कि हमारी रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की टीम हमारे किसानों के साथ ही साथ उनके साथ 1-to-1 के माध्यम से भी हमारे किसानों समस्याओं को जाना है, साथ ही फोन कॉल के माध्यम से भी हमारे किसान हम तक अपनी समस्याओं को पहुंचाते हैं। तो हमारा रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम एक्सपर्ट को आप तक पहुंचा सके, एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचा सके और हमारी जो उन खेती है उसमें विभिन्नता ला सके, उनमें उन्नति ला सके और उसे और बेहतर से और अधिक बेहतर बना सके। तो यही हमारा प्रयास है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा झाबुआ का किसान न केवल खेती बल्कि पशुपालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन में कहीं ना कहीं जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। किसान साथियों, मुर्गी पालन एक अच्छा और कम लागत में होने वाला एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। तो किसान साथियों, कहीं ना कहीं हमें कुछ बातों का अगर हम ध्यान दे ले तो हमें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में किसान साथियों, हम जानेंगे कैसे हमें मुर्गी का देखरेख करनी चाहिए, मुर्गी पालन, मुर्गी पोल्ट्री फार्म हमें कैसे खोलना चाहिए और हमें इसमें क्या क्या योजनाओं के लाभ मिल सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।
3: मुर्गी पालन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में काफी अच्छे स्तर पर किया जाता है, किस तरह से हमारे किसानों के लिए अच्छी आय का स्रोत बन सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
4: भारत में मुर्गी पालन का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। पिछले 5 दशक में यदि हम देखें तो मुर्गी पालन एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है और आज भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पूरे उत्पाद की बात यदि हम करते हैं तो भारत का 3rd नंबर पर स्थान है अंडा उत्पादन में और 5वें नंबर पर स्थान है मुर्गी मांस उत्पादन में। इस समय भारत में कुल मिलाकर 851 मिलियन पोल्ट्री मौजूद हैं और जब मैं पोल्ट्री शब्द का प्रयोग करता हूं, जिसे हिंदी में कुक्कुट भी कहते हैं, तो इसमें मुर्गी और जापानी कोयल या जापानी बटेर, गिनी फाउल, बत्तख, और जो भी व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं बर्ड्स या पक्षी, वो सब कुक्कुट में एक समूह के रूप में शामिल होते हैं
5: जी।
4: तो इस समय हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह लाभान्वित हो रहे हैं और ये आय को बढ़ाने का एक बहुत ही सुदृढ़ तरीका है, बहुत ही सक्षम एक टूल के रूप में इसको देखा जाता है पोल्ट्री का।
3: तो एक बहुत अच्छा जरिया बनकर सामने आ सकता है हमारे किसानों के लिए अगर वो अच्छी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं। देखिए आप खेती किसानी के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को भी अपनाते हैं काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है आपके लिए। शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं।
2: मुर्गी पालन व्यवसाय को कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाए तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी और साफ हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर दो दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जला कर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
3: देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मुर्गी पालन पर, किस तरह से आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, अभी आपने जाना है विशेषज्ञ से भी हम कार्यक्रम के दौरान जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, बरसात का मौसम चल रहा है, कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश है और लेकिन कहीं कहीं काफी हम अब कमी भी देख रहे हैं इसमें, लेकिन हमें सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए जब बात आती है हमारे पशुओं की, तो कौन सी वो मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए इस मौसम में खासतौर पर हमारे पशुओं के लिहाज से, क्या कहना चाहेंगे?
6: किसान भाइयों को जो बरसात के मौसम में पशुओं का जो ध्यान रखना है, उनका प्रबंधन करना है, वो मुख्यतः चार हिस्सों में अगर हम इसको देखें तो ये है। सबसे पहले है जो आहार का प्रबंधन कैसे करें, आवास का प्रबंधन कैसे करें, स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करें, और जो इसमें मुख्यतः जो दुधारू पशु है उनसे हमें दूध जो मिलता है ना, तो दूध दोहने का प्रबंधन कैसे करें। तो ये चार चीजों का प्रबंधन अगर हम अच्छे से करेंगे तभी हम पशु से जो है वो बहुत फायदा ले पाएंगे। तो आहार प्रबंधन की जब बात करते हैं जो पशु में सबसे मुख्य है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि पानी बहुत होता है, घास जो है वो चारा जो है वो बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस चारे को वो बहुत कच्चा होता है, तो उसको जब पशु खाता है, उससे पहले जब बरसात का मौसम नहीं था तो पशु के जो पेट में वो अलग तरह की क्रियाएं थी, वो उसको अलग तरह से पचा रहा था, लेकिन जैसे ही वो कच्चे घास खाता है जिसमें पानी ज्यादा होता है, तो पशु का जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से पशु को दस्त लग जाते हैं, और एक बार जब पशु बीमार हो जाता है तो उससे फिर पशु का जो दुग्ध उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है।
3: जी, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे जो पशुपालक हैं वो संतुलित मात्रा में आहार का यहाँ पर सेवन हमारे पशुओं को कराएं, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे इस बरसात के मौसम में। किस तरह का संतुलन यहाँ पर हमारे आहार में हमारे पशुओं के लिए करना है, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, हम आपको वो दिखा देते हैं।
2: इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरसात हो रही है, ऐसे में बरसात के मौसम में पशुओं को खास देखरेख की जरूरत होती है, क्योंकि पशुओं को किसान का धन माना जाता है और गांवों में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासकर दुधारू पशु होते हैं, इसलिए पशुओं पर ध्यान दें। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोंटू व मुंह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है।
5: जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें और बाड़ी की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़ी की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सप्ताह में एक या दो बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें।

0: पशु को बरसात में सुपाच्य संतुलित आहार दे, जिसमें 60% गीला व हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। पशुओं की बाड़ी की छत से पानी नहीं टपकने दे और बाड़ी के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दे। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें।
1: तो जाना अभी आपने कि किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, इसके बारे में विशेषज्ञ से लगातार जानकारी लेंगे। लेकिन यहां पर पहले डॉक्टर सक्सेना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपने बताया कि अगर हमारे जो पशुपालक हैं वो मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ते हैं तो काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है उनके लिए, लेकिन जरूरी है कि पहले वो निश्चित कर लें कि उन्हें अंडे के लिए उत्पादन लेना है या फिर मांस के लिए। तो ये निर्णय लेना कितना जरूरी हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण है जब मुर्गी पालन के व्यवसाय से हमारे पशुपालक जुड़ रहे हैं?
2: देखिए, इसमें दो तीन मुख्य बातें हैं। एक तो जो पशुपालक भाई हैं उनके पास जमीन कितनी है, उनके पास जो उनका इनकम का स्रोत है या उनके पास जो कैपिटल कहलाता है, धन कितना है, धनराशि कितनी है, और उनके आसपास किस तरह का बाजार उपलब्ध है, इसकी थोड़ा सा उनको जानकारी अपने पास रखनी चाहिए
1: जी।
2: जिसके आधार पर यदि वो छोटे स्तर का बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआती तौर में इसका मांस का उत्पादन करना आसान रहेगा, क्योंकि अंडा उत्पादन यदि करते हैं तो छोटे स्तर पर अंडा उत्पादन करने में बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। अंडा उत्पादन के लिए यदि व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है तो थोड़े बड़े स्तर का अंडा उत्पादन करने में ही फायदा होता है, जबकि मांस उत्पादन में एक साल में कई साइकिल ली जा सकती हैं, क्योंकि प्रति 5 सप्ताह में नया मतलब एक पुराना हैच निकलकर 1 सप्ताह का उसे विराम देने के बाद कुल 6 सप्ताह में एक साइकिल को कम्प्लीट करके नया ग्रुप चूजों का डाला जा सकता है। तो इससे बार बार आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आप पर बहुत ज्यादा धन का लोड नहीं आएगा।
3: जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। आइए किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर कोई पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो क्या इसे आर्थिक सहायता मिल सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो यदि आप मुर्गी पालन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग के लिए आपके नजदीक में ही, बाराबंकी के नजदीक में ही बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ साल में कई बार ट्रेनिंग के प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। आप उनके निदेशक महोदय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, तो आपको उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, उसकी वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। साथ ही साथ वहां पर जो वैज्ञानिक हैं वो आपको आर्थिक सहायता के लिए भी उसके जो प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसे डीपीआर या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिससे आपको बैंक से लोन लेने में मदद मिलेगी, उस तरह के प्रोजेक्ट भी आपको बनाने में मदद कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट आपको आपके अनुसार, जो आप पे जमीन उपलब्ध है, आप कितने बड़े स्तर का कार्य, अपना ये कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको देंगे, जिससे आपको बैंक में लोन आसानी से मिलेगा। और इसके साथ साथ वो आपको बैंक से लोन दिलाने में भी, आपको जो एक आजकल बहुत एक शब्द चल रहा है हैंड होल्डिंग, आपका हाथ पकड़कर चलने वाली बात, वो शुरू में आपको काफी मदद करते हैं। और एग्री बिजनेस भी एक आईसीआर के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए जितनी भी हमारी तकनीकियां हैं जो किसानों को लाभान्वित कर सकती हैं, वो उस एग्री बिजनेस के जरिए भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्वयं उनको करके देख सकते हैं संस्थान के अंदर। और उस ट्रेनिंग का यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा और विशेषज्ञ आपको वो प्रोजेक्ट बना के देंगे तो आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट नीति भी है, जिसमें आप अंडा के लिए और मांस के लिए यदि कोई फार्म खोलना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। कुक्कुट के विषय में यदि आपको इसमें और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा प्रोफार्मा उपलब्ध है, पूरी जानकारी उपलब्ध है। कई तरीके की इसमें सब्सिडी है, जमीन पर सब्सिडी है, बिजली पर सब्सिडी है, पानी पर सब्सिडी है, तो काफी आराम से आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए जितेंद्र जी, आपके जो सवाल था यहाँ पर कि किसी तरह की आर्थिक मदद के बारे में आप जानना चाहते थे, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है कि किस आप दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्रशिक्षण यहाँ पर जरूर ले लें। बहुत जरूरी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, श्री नारंग जी, उनका सवाल छान लेते हैं। हेलो
4: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
4: मैडम, हमारा जैसे गाय है, हमारे पास जर्सी गाय
1: जी,
4: वो दूध कम देती है, उसका दूध बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
1: दूध जो है कम दे रही है, उसका दुग्ध उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना है, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार आप इस संदर्भ में?
5: जी, जहाँ तक जर्सी गाय की बात है तो ये ज्यादा दूध, अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय है, तो इसके लिए हमें इसके आहार के प्रबंधन की सबसे जो सबसे मुख्यतः इसमें है वो है आहार प्रबंधन। तो आहार प्रबंधन के लिए जब इसमें बात की जाती है तो इसमें जो है बरसात के मौसम से अगर इसको, वैसे भी अगर हम दूध में ज्यादा हमें बढ़ाना है तो उसमें जो कंसंट्रेट है, जो दाना है, उसका मुख्यतः हमें ख्याल रखना होता है। तो अगर पशु का हरा चारा और सूखा चारा और कंसंट्रेट का अगर ये मात्रा जो है सही मात्रा में नहीं होगी तो पशु का दूध जो है वो नहीं बढ़ेगा। अगर मुख्यतः गाय 10 लीटर से ज्यादा का दूध दे रही है तो 3 किलोग्राम के आसपास दाना जो है वो एनिमल को एक मुख्यतः देना ही देना है। उसके अलावा वो जितना ज्यादा दूध दे रही है 6-7 किलो दूध के अलावा, तो हर एक केजी दूध के ऊपर हमने 2 से 2 किलो दाना उसको देना है। तो इस तरह से मुख्यतः अगर देखा जाए जो जर्सी गाय है उसमें अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसमें 4 केजी के आसपास हमें उसमें दाना उसको देना है, और उसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम दिन भर में उसको हरा चारा भी देना है, और 5 से 6 किलोग्राम के आसपास जो है वो सूखी तूड़ी उसको साथ में देनी है। तो इस तरह से अगर हम आहार का मिश्रण इस तरह से रखेंगे तो हमारी गाय जो है वो प्रतिदिन जो है वो दूध जो है वो अच्छे से देगी। इसके साथ साथ हम अगर इसमें देखें तो एनिमल के आहार में नमक है, खनिज लवण है, वो 30 से 40 ग्राम और नमक जो है वो 20 से 30 ग्राम उसका भी हमने उसमें मिश्रण करना है। तो इस तरह से अगर ये मिश्रण हम करेंगे तो एनिमल के दूध पे जरूर उसमें वृद्धि होगी।
3: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जरूरी है कि हम हमारे पशुओं के आहार में कुछ बदलाव लाएं, थोड़ा खनिज इसमें डालें, थोड़ा सा नमक का प्रयोग करें, ताकि हमारा जो पशु है ना केवल उसके दूध में वृद्धि होगी और वो पानी, अगर हम नमक थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आटा भी हम डाल के उनको देते हैं तो वो उनकी जो क्षमता है, पानी पीने की क्षमता है, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो अमूमन से कुछ ज़्यादा ही पानी पिएंगे। और किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम 90.8 FM के साथ।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका खेतीबाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। तो किसान साथियों, जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: पशुओं में बरसात के मौसम में एक बहुत ही मुख्यतः समस्या रहती है किसान भाइयों को, तो इस समस्या के निवारण के लिए मैं कहूँगा कि जब बरसात के मौसम में पशु जहाँ पे रहता है उसके आसपास जब पानी इकट्ठा हो जाता है, एक तो उसको इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि मुख्यतः क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, उनके जो लार्वल स्टेजेज होती हैं वो वहाँ पे पनप जाती हैं और फिर मुख्यतः जो मच्छर और मुख्यतः जो पशु को तंग करते हैं। तो इसमें मुख्यतः एक तो यह है कि पानी इकट्ठा ना होने दे, अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है तो उसकी निकासी करें या उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या फिनाइल वगैरह डालते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो भी उनकी लार्वल स्टेजेज हैं वो पनपे ना। और जो एक मुख्यतः जो दवाई मिलती है ब्यूटॉक्स नाम से, है ना, जिसमें डेल्टा मेथियोन होता है, वो 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के वो भी आप पशु को लगा सकते हो। तो इसमें और जो चीचड़ों की बात की है उसका अगर छिड़काव करेंगे इस दवाई का तो चीचड़ जो है वो कम होंगे। और मुख्यतः जहाँ पे आप पशु का आवास है वहाँ की जो दीवारें हैं उसमें छिद्र होते हैं जिसमें जो है चीचड़ वगैरह वो चले जाते हैं, तो वहां पर भी इस दवाई का छिड़काव करना है जिससे कि वहां पर भी जो चीचड़ वगैरह होते हैं तो वो मर जाए और पशु के शरीर पर न जा सके। तो इस तरह से आपको इसका समाधान करना है।
3: जी बिल्कुल। तो विजय कुमार जी, किस तरह से आपको प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। पढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है आइए जान लेते हैं। हेलो।
4: हाँ जी,
3: नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है राकेश कुमार जी, पूछे।
4: जी
3: राकेश कुमार जी, आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, सीधा अपना सवाल हमसे पूछिए।
4: जी मैडम, मऊ जिला प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। पहले से पोल्ट्री फार्म जैसे चला रहा हूँ 1 साल से
3: जी।
4: तो मैं जो है सर अभी लीज पे लेके फार्म चला रहा था, अब अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए कोई अनुदान वगैरह सरकार की तरफ से कोई योजना वोजना है?
3: जी डॉक्टर सक्सेना क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
5: सवाल दोबारा दोहराएंगे, मैं
3: लीज पर लेकर के पहले पोल्ट्री फार्म चला रहे थे, अब खुद का फार्म ये लगाना चाहते हैं।
5: पहले किसका चला रहे थे?
3: लीज पे लिया हुआ था, लेकिन अब ये खुद का फार्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए किसी तरह की अनुदान राशि सहायता इनको मिल सकती है?
5: अगर आप पहले से पोल्ट्री फार्म लीज पर चला रहे थे तो आपको पूरा अनुभव होगा कि किस तरह से उसका रखरखाव किया जा सकता है और किस तरह से उसको बढ़ाकर बेचा जा सकता है मांस के लिए या अंडे के लिए। तो इसमें आप अनुदान राशि का, जैसे मैंने पहले सवाल में ही बताया, बैंक हैं, कई सारे बैंक हैं जो इस समय लोन की व्यवस्था है, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश से आप हैं, उत्तर प्रदेश में पहले से ही कुक्कुट नीति नाम की एक योजना मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें लोन भी दिया जाता है और बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाती है। आप व्यापक रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर, या किसी अपने जो संपर्क में यदि आपके कोई वहाँ पशु चिकित्सक हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के यदि कोई चिकित्सक आपके एरिया में आते हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको इस विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। उनका पूरा इसमें प्रिंटेड प्रोफार्मा है जिसे भरकर आप और किसी विशेषज्ञ द्वारा एक प्रोजेक्ट बनवाकर, मैंने आपको पहले बताया केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है जहाँ से आप ये प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, और भी आपको बहुत सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, उसका लाभ आप उठाकर ये राशि लोन या ऋण ले सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जैसे डॉक्टर सक्सेना यहाँ पर हमारे कॉलर्स इच्छुक हैं कि वो कुछ इसकी शुरुआत भी करना चाहते हैं, कई जुड़े भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी हो जाता है जैसे आपने पहले कहा प्रशिक्षण का कितना महत्व है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को?
5: प्रशिक्षण का हर कार्य के लिए जो भी नया कार्य आप शुरू कर रहे हैं उसमें प्रशिक्षण के साथ यदि आप कार्य करते हैं तो उसका एक अलग ही आपको उसका असर दिखाई पड़ेगा। बिना चीज़ों को जाने बिना चीज़ों को समझे यदि आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हानि होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यदि आप समझ कर चीज़ों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो ये निश्चित है कि आप उसमें आने वाले खतरों को भी जानेंगे, उनसे कैसे बचना है उसको भी जानेंगे। जैसे प्रबंधन की व्यवस्थाएं किस तरह करनी है, आपको खान पान किस तरह रखना है, किस मौसम में किस तरह का प्रबंधन करना है, कहाँ से दाना चारा सस्ता उपलब्ध हो सकता है, कैसे अपने खुद आप दाना चारा बना सकते हैं, पक्षी का भी पशु का भी, वो सब व्यवस्थाएं यदि आपको पहले से पता हो तो आप एक तो लागत कम करेंगे और दूसरा आप अच्छी तरह से उसको जब प्रबंधन करेंगे तो आपको फायदा अधिक होगा। बहुत सारी चीजें हैं जब आप प्रशिक्षण करेंगे तो मैं दो एक चीजें यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत सारे किसान भाई समझते हैं यदि कम जगह में ज्यादा मुर्गी या ज्यादा पशु भर देंगे तो हमारा उत्पाद बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कम जगह में आप ज्यादा पक्षी भर देंगे तो वहां पर बजाय फायदे का आपको नुकसान होगा। एक तो वो लोग ढंग से पक्षी दाना नहीं खा पाएगा, पशु भी नहीं खा पाएगा यदि ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो, और दूसरा वहां पर उनके उत्पाद पर भी असर पड़ेगा, उत्पादन बजाय बढ़ने के उनका उत्पादन कम हो जाएगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आप इनको जानकर समुचित व्यवस्था करते हैं कि कितने क्षेत्रफल में कितने पक्षी रखने हैं या कितने पशु रखने हैं तो पशु भी आराम से पलेगा और आपको उत्पादन भी अच्छा देगा।
1: किसान साथियों, समय के साथ हो रहे परिवर्तन को देखते हुए हमारे पशुओं में भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां आजकल देखने को मिलती है, तो किसान साथियों यहां पर जरूरत है हमें एक प्रशिक्षण की। हमें एक प्रशिक्षण कहीं ना कहीं से हमें लेना बहुत जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र इसमें हमारे लिए बहुत ही सहयोगी साबित हो सकता है। साथ ही आप कुछ एनजीओस के माध्यम से भी इन प्रशिक्षण को ले सकते हैं। तो किसान साथियों, प्रशिक्षण लेने से हमें यह फायदा होगा कि हम समय पर हमारे पशुओं को समय पर उसका कौन सी दवाई देना है, साथ ही हमें किस तरीके से हमारे पशुओं का रखना चाहिए आदि जानकारियां हमें पता होगी तो हम उसके हिसाब से हमारे पशुओं की देखरेख कर पाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, यहाँ पर हमारे किसान का सवाल था कि जब गाय भैंस जो जनती है उसके बाद जो जेर गिरता है वो पशु खुद से खा जाता है, इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या पशु बीमार हो सकता है, तो आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: मुख्यतः तो हम सबसे जो जरूरी है वो यही रखना है कि मोस्टली जो है यानी कि 6 से 8 घंटे में जो पशु जो है वो जेर गिरा देता है तो उस समय हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर पशु ऐसा कर लेता है, अगर पशु जेर को खा लेता है तो सबसे ज्यादा इसमें यही मुख्यतः ध्यान रखना होता है कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर के पास उसको ले जाएं, फिर एंटीबायोटिक से या जो भी दवाइयां उस समय लगती हैं पशु को इस टॉक्सिसिटी निवारण के लिए तो उससे फिर बहुत राहत मिलती है और पशु जो है मुख्यतः आ जाता है वापस खाना खाने लगता है।
1: जी हाँ किसान साथियों, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है पशुओं के साथ तो आप जल्द से जल्द पास के पशु स्वास्थ्य केंद्र में उसको लेकर जाएं और वहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको दवाई देंगे और जिससे पशु को हम बचा सकते हैं, इसमें कोई पशु को जो दिक्कत होने से हम उसमें राहत मिल जाएगी, उसमें जो दवाइयाँ मिलेगी आप समय समय से उन्हें दे सके अपने पशु को खिला सकते हैं और इससे निजात पाया जा सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: डॉक्टर नरेंद्र जी ने बताया इसमें सेप्टिक होने का डर रहता है, अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह पनप सकते हैं और उससे पशु ज्यादा बीमार पड़ सकता है, तो तुरंत ही इसमें एंटीबायोटिक वगैरह लगाने से
3: एंटीबायोटिक का कोर्स यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द हमारे दोनों विशेषज्ञों की यही सलाह है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, समय बिल्कुल मत गवाइए। जैसे आप कह रहे हैं रात के समय ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी आप समय यहाँ ना गवाइए। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर सक्सेना आपके पास ही आना चाहूंगी। आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हमारे पशुपालकों को मुर्गी पालन के व्यवसाय से, तो शुरुआत प्रशिक्षण के बाद का कदम क्या होगा शुरुआत करने के लिए?
5: प्रशिक्षण के दौरान जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर या प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण लेते हैं तो वो प्रशिक्षण भी अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा और इसको विस्तृत रूप में बताना चाहूंगा। जैसे मुर्गी पालन के संबंध में ही मैं हम लोग दो तरह के क्या बल्कि अब तो तीन तरह के मुर्गी पालन हो गए, एक तो अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ, एक मांस उत्पादन से जुड़ा हुआ और तीसरा बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको कहते हैं, जिसे ग्रामीण पोल्ट्री या पिछवाड़े घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली पोल्ट्री व्यवस्था भी कहते हैं। तो तीन तरह के प्रशिक्षण अलग अलग दिए जाते हैं, इनके कोर्स भी अलग अलग स्पेशली चलते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, वो जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उस ट्रेनिंग में जाएं जिसमें वो व्यवसाय करना चाहते हैं। यदि अंडे का व्यवसाय करना चाहते हैं तो अंडा उत्पादन से जुड़ी ट्रेनिंग में जाएं, यदि कुकुट मांस का उत्पादन करना चाहते हैं तो ब्रायलर की ट्रेनिंग में जाएं, यदि उनके पास पूंजी कम है और वो छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो बैकयार्ड पोल्ट्री के प्रोडक्शन के ट्रेनिंग में जाएं। तो इसमें आपको शुरुआत से लेकर नस्ल किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अंडा उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं और मांस उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी, कहां से आपको अच्छा बीज उपलब्ध हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी पशु या पक्षी व्यवसाय में उसकी नस्ल है, यदि नस्ल अच्छी है तो उसका उत्पादन बढ़िया होगा। नंबर दो पे आता है दाना पानी खान पान।
3: जी, दाना पानी के बारे में जानेंगे लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं फिर आपका यहाँ पर रुक करेंगे कि दाना पानी और खान पान का व्यवस्था किस तरह से करनी है। गुजरात से हमारे साथ इस वक्त कमलेश जी फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
6: सर हमारा सवाल है कि अभी बरसात के मौसम में
3: बरसात के मौसम में क्या जानना चाहते हैं?
6: बरसात के मौसम में ये पशु है ना हमारे, वो कम पानी पीते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ऐसा क्या करना चाहिए?
3: आपके जो पशु हैं वो पानी पीना कम कर देते हैं बरसात के मौसम में, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था आपको करनी है? डॉक्टर कुमार क्या कहना चाहेंगे हमारे कॉलर को?
2: बरसात के समय में जो पशुओं का आवास प्रबंधन है उससे मुख्यतः ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय जो है आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए अगर आपने आवास को अच्छे तरह से आवास में सूखा रखा है, आराम दे रखा है, पंखे लगाए हैं, खिड़कियां वगैरह का अच्छे से प्रबंध है और आर्द्रता उसकी जो है वेंटिलेशन अच्छा है तो कम हो जाती है, तो इससे पशु जो है स्ट्रेस में नहीं होगा। तो पशु को सामान्यतः जितना पानी पीना होता है तो वो उतना पानी पिएगा। अगर पशु इसमें बरसात के मौसम में आर्द्रता के कारण अगर पशु स्ट्रेस में आता है तो पशु जो है वो पानी पीना कम कर सकता है, तो इसके लिए मुख्यतः यही है कि आप अपने आवास का प्रबंधन करें, अपने आवास को अच्छे से उसका वेंटिलेशन हो, उसमें पंखे लगे हो, उसकी खिड़कियां अच्छे से खुली हो, तो इस तरह से आप जो है पशु फिर जो है वो आराम से जो जितना पशु को चारा जितना पशु को पानी चाहिए होता है वो पशु उसमें पीता है।
3: जी, तो इस तरह से आप आवास का प्रबंधन सही कीजिए। देखिए पानी पीने कम पीने की जो समस्या यहाँ पर आ रही है वो अपने आप दूर हो जाएगी यहाँ पर कमलेश जी। तो देखिए ऐसी ही जानकारियाँ
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे बरसात के दिनों में पशुओं की देखरेख और साथ ही आप सुन रहे थे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: भी वेटनरी कॉलेज भी बहुत सारे हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया आपको उनके जो एक्सटेंशन डिवीजन है जो उनके विश्वविद्यालय के और जो प्रोफेसर लोग हैं वो इस कार्य में इनकी काफी मदद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो भी नीतियां हैं उसमें किसानों की हैंड होल्डिंग करना या उनको शुरुआती तौर में इतनी मदद करना कि वो अपना व्यवसाय खुद खड़ा करने में सक्षम हो सके, ये सारे विश्वविद्यालय और हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उनमें जो हम लोग कार्यरत हैं वो सब किसान भाइयों के लिए समर्पित हैं। और काफी हद तक इवन बैंक में जाकर भी जो बैंक के मैनेजर हैं या बैंक के अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप करके किसानों की जो भी दिक्कत है उसको सुलझाने में उनकी बहुत मदद करते हैं। तो मैं इनको ये सुझाव दूंगा कि अपने आसपास के किसी पशु विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय या पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे मैंने बताया जबलपुर में भी है उनके प्रोफेसरान से बात करें, उनके जो एक्सटेंशन के डिवीजन के जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे बात करें तो उससे जरूर उनको मदद मिलेगी। बाकी बैंक से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसकी यदि ये जानकारी बताएं तो उन्हें और अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती है कि बैंक इनसे किस चीज के कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो ये नहीं दे पा रहे हैं या जिससे इनका लोन मिलने में परेशानी हो।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार हरीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
1: जी
0: अपना सवाल पूछिए।
1: जी हमारा सवाल है, कड़कनाथ मुर्गे जैसे हमने 100 लाए थे तो उसमें से 85 हो पाए बड़े।
0: जी 85 ही बड़े हो पाए हैं?
1: हाँ
0: जी
1: 100 लाए थे मुझे।
0: जी
2: 100 में से 85?
1: हाँ
2: तो आपने छोटे चूजे लिए होंगे जहाँ से भी आप
1: चूजे 100 लाए थे तो 50 बचे, मतलब
2: 100 में छोटे एक दिवसीय चूजे लाए थे या थोड़े बड़े लाए थे?
1: छोटे लाए थे, एक दिन दो दिन के, वेटरनरी कॉलेज से लाए थे।
2: देखिए मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, जो आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में छोटे चूजों का प्रबंधन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा जटिल भी है। यदि वहाँ आपसे कोई चूक होती है तो उसका असर आखिर तक रहता है, उसमें मृत्यु दर भी बढ़ सकती है, उनकी जो बढ़वार है वो भी कुप्रभावित हो सकती है, अच्छी तरह से उनमें बढ़वार नहीं आएगी। यदि दाना और उनका रख रखाव, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यदि कम जगह में ज्यादा चूजे रख दिए, मुझे ये नहीं ज्ञात है कि आपने किस तरह की व्यवस्था दी, कितने एरिया में कितने चूजे रखे, क्योंकि आमतौर पर जो देसी मुर्गियां हैं जो आप कड़कनाथ बता रहे हो उसमें मृत्यु दर काफी कम होती है। जब हमारी व्यावसायिक रूप से जो हाई यील्डिंग या जिनमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है उस तरह के जो स्ट्रेन है जो बाजार में मिल रहे हैं वो तो मृत्यु दर उसमें बनिस्पत ज्यादा होती है देसी मुर्गियों के मुकाबले। तो देसी मुर्गी में मृत्यु दर कम होती है मगर आपकी काफी ज्यादा 50% मोर्टिलिटी हो जाना काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं प्रबंधन में कोई दिक्कत रही या जहां से आपने चूजे खरीदे वहां से वो कोई बीमारी लेके आए जो आपकी नॉलेज में नहीं थी और इस बीमारी की वजह से वो चूजे मरे। तो जहां से भी आप चूजे खरीदते हैं बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस संस्था से या उस संस्थान से आप पूरी जानकारी लें कि इन्हें कौन कौन से टीके लग चुके हैं या ये किस व्यवस्था में रह रहे थे और इन्हें आगे क्या व्यवस्था, किस एज पर क्या खाना दाना दिया जाना है, ये सब जानकारी यदि उपलब्ध करके आप आएंगे तो आपको इसमें पालन करने में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि टीका लगा हुआ है, आपने टीका नहीं लगवाया और वो उसकी उम्र पे आके वो बीमारी उसको पकड़ेगी और उससे मृत्यु दर बढ़ेगी। अब बीमारियां भी बहुत सारी होती है ना, न्यूकासल डिजीज है जिसमें रानीखेत डिजीज जिसको कहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा मृत्यु दर हो जाती है। तो यदि आपने कोई टीके लगाने में चूक करी उसकी वजह से मृत्यु दर हो सकती है, साफ सफाई में कोई आपकी गलती हुई वहां बीमारी फैल सकती है, या आपने कम जगह में ज्यादा चूजे उनके रख दिए तो आवासीय प्रबंधन में आपके चूक हुई वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप प्रशिक्षण यदि लेके काम करते हैं
0: लेंगे तो ये सब तमाम जो समस्याएं हैं ये आगे आएंगी, प्रशिक्षण ज्ञात होगा कि इस समय में ये इस तरह की समस्या आ सकती है तो पहले ही आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे विशेषज्ञ लगातार यहां से कह रहे हैं प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, आप शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले जानकारी आप जरूर हासिल कर लीजिए।
2: एक चीज और है, प्रशिक्षण लेने में जहां से भी आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको संस्थान से एक नाता जुड़ जाता है। मैं भी बहुत सारे प्रशिक्षण में खुद शामिल रहा हूं तो जो भी हमारे किसान भाई आते थे, आप यकीन मानिए आज तक मैं जबकि उस संस्थान को छोड़ चुका हूं दिन भर उनके फोन मेरे पास आते रहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत वो अपने जो भी विषय के विशेषज्ञ हैं उनको फोन।
3: जी हाँ किसान साथियों, प्रशिक्षण लेने से न केवल हमें जानकारी मिलती है लेकिन हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, हमारा एक अध्यापक और शिक्षक के बीच में जैसा जुड़ाव हो जाता है वैसा एक जुड़ाव आपके साथ आप बना सकते हैं, केवीकी के साथ जो आपके ट्रेनर है उनके साथ एक अच्छा जुड़ाव बना कर सकते हैं और साथ ही जब भी आपको कोई भी समस्या आती है आप जब भी आपका मन हो जब भी आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें राय ले सकते हैं, ना केवल पशुओं को लेकर बाकी अन्य जो जिस भी खेती के जिस भी पड़ाव में आपको तकलीफ आ रही है आप उसमें उनको फोन लगा के पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दोहरा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: किसान साथियों, बरसात के समय में अक्सर क्या हमारा जो पशु है वो अधिकतर

0: बीमार हो जाता है, पानी थोड़ा सा कम लेने लगता है आर्द्रता की वजह से, जो उसका चारा है उसमें नमी ऐसी आ जाती है और हरा चारा खाते ही वो दस्त करना शुरू कर देता है। तो इन सब समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं और कैसे हमें बरसात के समय में हमें कैसे इन सब पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: अगर किसान भाई ने संतुलित आहार, उसके आवास का प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छे से नहीं रखा है, तो अगर ये घास वगैरह पशु को डालते हैं और वो कच्ची घास है तो उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से पशु का पेट जो है वो भरा भरा रहता है और उसका पेट में जो किण्वन क्रिया होती है तो वो जो है वो एक सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिससे उसका दूध उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई को चाहिए कि पशु का जो आहार है वो संतुलित मात्रा में दें, उसमें जो है सूखा चारा 40% रखें और जो हरा चारा है वो 60% उस और साथ में जो है वो दाना रखना है उसको। तो इस तरह से अगर पशु के जो आहार की अगर प्रबंधन रहेगा तो पशु का दूध जो है वो कम नहीं होगा। तो इसमें मुख्यतः आप अगर पशु ज्यादा दूध देने वाला है तो उसको जो है मेंटेनेंस के साथ साथ, अगर गाय है तो 1 लीटर अगर 6 से 7 केजी दूध के अलावा और दूध देता है पशु, तो 1 लीटर दूध के अलावा उसमें जो है वो 1 किलोग्राम दाना जो उसको और ज्यादा देंगे। और भैंस के केस में अगर वो 3 लीटर दूध देता है तो उसमें जो है 1 किलो दाना जो है वो उसको एक्स्ट्रा देंगे मेंटेनेंस के अलावा।
2: एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा, चाहे वो पक्षी का बात हो चाहे पशु की बात हो, शुरुआत नस्ल से ही है। नस्ल यदि बढ़िया है, अच्छी नस्ल, अब हम देसी पशु की बात करते हैं, जैसे किसान भाई ने पहले भी एक प्रश्न उठाया था, तो देसी पशु में कुछ जो हमारी देसी नस्लें हैं गायों की, जैसे गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है, ये देसी नस्लें स्थापित नस्लें हैं, इनके बारे में पता है, इनका दूध अच्छा है
3: जी।
2: मगर हम सबको देसी में गिन देते हैं, बहुत सारी नस्लें वो मिक्सचर हो गई हैं, उनमें कोई नस्ल नहीं है, वो सब मिला जुला हो गया है, तो उनका दूध उत्पादन उतना अच्छा नहीं है। उनके दूध उत्पादन की हम ये आकांक्षा ना करें कि ये भी उतना ही दूध देंगी जितनी की एक स्थापित नस्ल की, जैसे कांकरेज या साहिवाल या गिर की गाय दूध दे रही है, उतना दूध वो नहीं दे पाएंगी। यदि हम एग्जॉटिक, जिसे हम बाहर की विदेशी नस्लों को यदि रख रहे हैं, उनमें दूध उत्पादन अच्छा है, मगर उनके साथ साथ उनका रखरखाव भी अच्छा है। पहला बिंदु नस्ल, दूसरा बिंदु दाना पानी और उसका आवासीय प्रबंधन, तीसरा उसका रोगों की, उसका रोग निदान और रोगों की रोकथाम, और चौथा आपको आजकल की जो हम चर्चा में बहुत ज्यादा शामिल है, बायो सिक्योरिटी
3: जी,
2: कि हम बीमारी को आने ही ना दें, इस तरह की व्यवस्था साफ सफाई की रखें
3: जी,
2: कि बीमारी पशुओं तक पहुंचे ही ना
3: जी।
2: ये सब चीजें यदि आप करते हैं, अब जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि बरसात के समय में पशु में दूध उत्पादन कम हो जा रहा है, नरेंद्र जी ने भी बताया कि इसमें पशु कई बार स्ट्रेस में आते हैं
3: जी।
2: एक तो आर्द्रता बढ़ जाती है वातावरण में, और दूसरे टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, गर्म भी होता है कई बार, गर्मी के साथ साथ आर्द्रता जब बढ़ती है तो हमारे शरीर पर कोई भी वो जीव हो उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव आता है, हमारी ताप नियंत्रण की क्षमता से भी कई बार वो आगे बढ़ता है, तब इवन मृत्यु दर बढ़ने की तक की बात आ जाती है। तो इसमें वो सब परिस्थितियां जिनमें तापमान में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो बहुत ज्यादा, उसकी आर्द्रता एटमॉस्फेयर की घट बढ़ रही हो, उस समय आपको बहुत सचेत रहना है और गंदगी बिल्कुल नहीं होने देनी है। मक्खियां आएंगी, मक्खी पशु को परेशान करती है, वो दाना खाना नहीं खाता ठीक से, तो उसका दूध को प्रभावित होता है। यदि आपको कोई भी लक्षण दिखता है, सबसे पहले किसी भी पशु को यदि रोग होता है या उसमें कोई परेशानी होती है, वो दाना खाना छोड़ता है यदि, और अपने हर्ट से अलग हो जाता है, यदि ऐसी कोई भी अवस्था आपको किसी पशु में दिखती है तो तुरंत आप उसको पशु चिकित्सा संपर्क करके उसको दिखाएं।
3: बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है, देखिए जरूर ध्यान में रखिए हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जगदीश जी आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जगदीश जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप?
4: मेरा सवाल मैम ये है कि यहाँ मैं मुर्गी पालन करना चाहता हूँ, उसके साइड में थोड़ा पानी भरा होता है, वहाँ पर मैं मुर्गी पालन कर सकता हूँ
2: क्या? मैं
3: मुर्गी पालन करना चाहते हैं लेकिन जहाँ पानी भराव की समस्या हो, क्या वहाँ पर कर सकते हैं?
2: नहीं नहीं नहीं, यहाँ धीरे धीरे चीजों को मैं खोलता भी जा रहा हूँ। जब आप प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले भूमि के चयन की बात आती है कि जहां पक्षी के लिए बाड़ा बनाना चाहते हैं या फार्म खोलना चाहते हैं उस भूमि का चयन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप ऐसे स्थान पर जलभराव की जगह पर आप मुर्गी पालन करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा बीमारी उसमें रहेंगी, ना पशुपालन ठीक से कर पाएंगे आप, ना पक्षी का पालन ठीक से कर पाएंगे और उत्पादन आपका बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो ऐसी जगह पे कृपया आप
3: तो ऐसी जगह में यहाँ पर मुर्गी पालन करने की सलाह नहीं दी जा रही है। देख
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: कहना चाहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह की सावधानियां बरतनी है हमारे यहाँ पर पशुपालकों को?
1: जी, बरसात के मौसम में जो स्वास्थ्य प्रबंधन है पशु का वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे मौसम में मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु जो है बहुत मात्रा में जो है पैदा होते हैं। तो अगर पशु का जो टीकाकरण आपने नहीं कराया है बरसात के मौसम से पहले तो आपका पशु जो है वो गंभीर बीमारी के संक्रमण से प्रभावित हो सकता है। तो मुख्यतः सभी राज्य सरकारें FMD का जो मुंह खुर रोग है इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, तो बरसात के मौसम से पहले ये टीकाकरण कराएं और अपने पशु का इस बात से भी ख्याल रखें कि अगर बरसात के मौसम में आपका पशु जो है वो ज्यादा हरा चारा खाता है तो उसका पेट में जो है दस्त लग जाते हैं, तो ज्यादा पानी की वजह से, तो ऐसी स्थिति में जो है वो पशु का उत्पादन जो है वो कम हो सकता
3: जी। तो इस तरह से स्वास्थ्य का प्रबंधन भी हमारे जो पशुपालक हैं वो कर सकते हैं। देखिए बरसात के मौसम में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आहार, आवास, स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन का यहाँ पर प्रबंधन सही तरीके से करें, तभी हमारा पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और हमारे को आर्थिक लाभ उससे मिलता रहेगा। बिल्कुल
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: तो किसान साथियों आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आपने जाना कि बरसात के समय में अधिकतर हमारे पशुओं बीमार होने की संभावनाएं अधिकतर होती है, तो बरसात के समय में हमें कैसे इनका ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना इनको देना चाहिए, कौन सी बीमारियां होती है और उन बीमारियों में हमें इनका रख रखाव, इनकी देखरेख कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना किसान साथियों। साथ ही किसान साथियों अभी जो बारिश का मौसम है इसमें मौसम में बदलाव आएंगे और आपको भी आपकी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता है किसान साथियों। आप हमारी खेती के साथ साथ हमारे पशुओं के साथ साथ अपना भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। और अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ छावा की आवाज,
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
7: पक्का।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की, जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: तो बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: मैं तो अच्छी हूँ, यहाँ पर तो दिन है, आई एम इन यूएसए इन ह्यूस्टन, सो इट्स मॉर्निंग
1: जी,
2: और बहुत गर्मी भी है पर मौसम अच्छा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी इनवाइट किया है।
1: हम भी बहुत एक्साइटेड है मैम, और हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप वहां से समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए आज इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए आपके प्यारे से पेट बेंजी के बारे में। आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस एपिसोड।
2: सो डू आई, बहुत बेंजी की बहुत याद आ रही है।
1: आई एम श्योर।
2: हाँ
1: जी, तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बेंजी एक कॉकस पैनल था और 1990 से 10 इयर्स तक वो आपके फैमिली का एक हिस्सा था, बहुत ही एक क्रूशियल हिस्सा था, एक फैमिली मेंबर जैसा था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेट रखने का जो डिसीजन था, बेंजी को आपके जीवन में अपनी फैमिली में इंक्लूड करने का जो डिसीजन था, वो आपने कैसे लिया और किस तरह से वो जर्नी रही?
2: वो ऐसा हुआ कि जब हम बचपन में इंडिया में ग्रो अप कर रहे थे ना, तो डॉग्स हमारी फैमिलीज के बहुत ही अहम मेंबर्स भी हुआ करते थे
1: जी।
2: तो डिफरेंट ब्रीड्स थे ऑफ एंड ऑन, डिफरेंट साइजेस भी थे, क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स की अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। बट तो मोस्टली हम तो छोटे थे तब, और इंडिया में क्या था कि जो पेट्स हम रखते थे बेसिकली वो खेलने के लिए होते थे, उसका मकसद ही ये होता था कि हम भी या फिर गार्ड डॉग्स होते थे, सेफ्टी के लिए भी लोग रखा करते थे। तो हमारे पास कुछ बड़े भी थे लाइक जर्मन शेपर्ड या कुछ, और फिर छोटा मेरे पास एक वो भी था, रशियन सेमोइड भी थे। रशियन सेमोइड जो था वो मोर लाइक कंपेनियन, डेकोरेटिव, इनडोर इस तरह का था
1: जी।
2: और जर्मन शेपर्ड जो था वो थोड़ा बाहर का आउटडोर डॉग था, वो बहुत रखवाली करता था हमारी
1: जी जी,
2: तो कंपेनियनशिप भी हो जाती थी
1: सरे।
2: और फैमिली को एनिमल से बहुत लगाव था
1: जी,
2: तो जिनके होते खुशी और प्यार बहुत महसूस होता था आसपास।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इमेजिन कर सकती हूँ मैम। आप जब बेंजी को अपने जीवन में लाए तो बहुत सारी चेंजेस आपको लाने पड़े होंगे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, घर के माहौल में। तो क्या प्रेपरेशंस आपको करनी पड़ी? जैसे आपने बताया कि आपके पास हमेशा पेट्स रहे हैं, पर जब आप यूएस में थे तो वहां के हिसाब से क्या कुछ स्पेशल प्रेपरेशंस थी? किस तरह से आप चेंजेस लाए, और बेंजी ये क्यूट सा नाम किसने डिसाइड किया?
2: तो बेंजी जो था एक्चुअली जो यूएसए में एक सेलिब्रिटी टेलीविजन डॉग हुआ करता था।
1: वाओ,
2: एकदम जैसे हमारे बेंजी की जो वही उसका शक्ल भी वैसी और उसका जो कलर था वो भी एग्जैक्टली सेम था, तो तभी शायद उसका नाम भी बेंजी पड़ा जिन्होंने भी उसको पहले लिया था
1: जी।
2: तो 70s में क्या था कि बेंजी यूज टू बी एक प्रॉपर सीरीज हुआ करती थी टेलीविजन की,
1: राइट right.
2: तो तब बेंजी का नाम भी वैसे ही पड़ा, और चेंजेस जो थे काफी आए हमारी लाइफ में। और जैसे आपको पहले बताया कि इंडिया में काफी हेल्प होती थी, डोमेस्टिक हेल्प होती थी ना, तो उनको जो खाना सही टाइम पे मिले या उनको बाहर घुमाने को जाना है तो ये सब होता था। पर जब हम यूएसए में आए तब हमारे पास ये हेल्प तो नहीं थी,
1: करेक्ट,
2: और कुछ तो वो चेंजेस हमको जरूर करने पड़े थे अपनी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेट को रखना, खासकर एक जैसे कुत्ते को रखना. एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी जब हमारे बच्चे नहीं थे. तो कुत्ता और बिल्ली दोनों जैसे इकट्ठे भाई बहन की तरह ही होते थे, तो मस्ती बहुत करते थे, बहुत
1: क्यूट.
2: अगर टाइम बचेगा बाद में तो मैं आपको उनकी भी कहानियां सुना सकती हूँ, पर अभी हम लेट्स जस्ट स्टिक टू आपका जो फॉर्मेट है ना.
1: जी जी. इसी के साथ अगर मैं आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूं और यहीं पे आपको इलैबोरेट करने का एक छोटा सा मौका दूं कि आपका बेंजी के साथ बिताया हुआ सबसे क्यूट मोमेंट जो आपको आज भी याद आता है तो हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं, तो वो कौन सा होगा?
2: पता है मोमेंट्स तो बहुत थे तनुषा, क्योंकि और जैसे मैंने उसकी प्रोफाइल में शेयर किया था आपसे
1: जी,
2: कि वो जो लम्हा था ना जब वो हम उसको लेने गए और हमने अपनी वैन का साइड डोर खोला तो मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था, तो वो दरवाजा तो खुला रखने के लिए और ये दौड़ के आके हमारी बस वैन के अंदर घुस गया और बैक सीट के ऊपर बैठ गया
1: जब आप उसे लेने गए थे उस टाइम.
2: हक के साथ, एकदम हक से और एकदम डट के, और बिल्कुल जैसे हम उसको देख रहे हैं कि ये कौन है डॉगी, इतना सुंदर कुत्ता है और ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज व्हाई वुड एनीबॉडी वांट टू पार्ट विद सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, यू नो, इस तरह से हमको लगा. तो ये बेंजी आके हमारे बैठ के आके पास में
1: जी.
2: और कभी कभी लगता है, और वो उठ ही नहीं रहा था वहां से, बट समझ में आया बाद में कि यही वो था जिसको हम लेने आए थे और उसका उतरना है. तो मुझे ऐसे लगता है कि इंस्टिंक्टिवली कि जानवर हमें हमसे ज्यादा जांच लेते हैं, जैसे कौन उनसे प्यार करेगा या कौन प्यार करता है, whether we are animal lovers or not. तो you know, इस तरह से हमें लगा. तो अब वो हिले ही ना वहां से, तो अब वो हमारा ही हो गया. तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हमें मेरी मेमोरी में रहता है कि वो जो लम्हा था ना उसने हमको चूज किया, हमने उसको नहीं चूज किया, यू नो, ही पिक्ड, ही चूज अस. यस,
1: एब्सोल्युटली,
2: ऐसा लगा.
1: जिस तरह से यू नो हम अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं, उसी तरह से कहीं कई बार पेट्स हम पेट्स को नहीं, पेट्स हमें चूज करते हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि वो इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं कि कौन उन्हें किस तरह का प्यार दे सकता है, केयर दे सकता है. तो बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं स्पेशली डॉग्स, तो उसमें आई थिंक दे एस एट इट. एंड आई कैन इमेजिन आपने कितने खूबसूरत लम्हे बेंजी के साथ बिताए होंगे उन 10 सालों में. इसी गहरी बात के साथ, इन्हीं प्यार भरी बातों में हम एक पहला गीत सुनेंगे हमारा आज का. मैम अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बताएं.
2: नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी फरमाइश बताइए और बाद में अगर आपको टाइम हो बाद में तो मैं कुछ और भी लम्हे शेयर करूंगी आपके साथ.
1: बिल्कुल मैम, समय ही समय है आज तो हमारे पास, बहुत सारी बातें करेंगे आगे. अभी चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत, फिल्म दूसरा आदमी.

0: से कराया था, तो उससे बहुत ज्यादा जानकारी बढ़ी हमारी। और फिर उसके बाद एनीवे जब मंडे आया तो हम उसको अपने वेटनेरियन के पास ले गए यहाँ पे, तो देन ही वाज प्लेस्ड ऑन फिनोबार्बिटॉल जो एंटी सीजर मेडिकेशन होती है ना
1: जी जी,
0: तो वो बेंजी को दिन में दो बार ही मिला करती थी और तो उसकी सेफ्टी के लिए, और मतलब वो उसको हम एक ब्रेड के उसके अंदर डाल के ऊपर से फेंकते थे तो वो एकदम मुंह से कैच करता था और खा जाता था
1: जी।
0: तो नहीं इट्स नॉट ए वेरी टेस्टी हाँ। और फिर उसके लिए हमने एक पोर्टेबल डॉग कैरियर भी लेके रखा हुआ था घर पे, क्योंकि जब भी हम घर छोड़ के जाते थे अगर उसको सीजर होता है तो ही वॉज इन साइड अ कंटेन्ड स्पेस और उसको इंजरी होने से बचाता था वो। हाँ
1: करेक्ट, कि वो खुद को भी हार्म नहीं करे एंड सराउंडिंग्स को भी हार्म ना कर पाए ऐसी सिचुएशन में। बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा मैम ऐसी सिचुएशन में उसको, आई एम श्योर एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्यार भी देना पड़ा होगा। और जैसे आपने बहुत सरलता और सुंदरता से बताया कि सबसे पहली चीज तो प्यार है और फिर उसके बाद बाकी सभी चीजें आती हैं। जैसे आपके डॉग को स्पेशल कंडीशन थी तो आई एम श्योर स्पेशल केयर स्पेशल लव सभी चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना पड़ा होगा उन 10 सालों में जब आपके पास बेंजी था। तो बहुत ही जी जी, क्या इससे आपके घर में आपके जो बच्चे थे, आई एम श्योर आपके बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी, उनने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की होंगी, तो क्या आपको लगता है कि पेट्स घर में लाना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरह से वो उन्हें शेप करता है?
0: मेरे ख्याल में तो इसका आंसर मैं यस बोलूंगी एंड आई कैन ओनली स्पीक अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हमारे बच्चों ने भी बेंजी की प्रेजेंस से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, काइंडनेस सीखी, एम्पथी सीखी और कैसे एनिमल्स की तरफ प्यार दिखाना और उनकी रिस्पेक्ट करना जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, क्योंकि अब वो तो हमारा फैमिली मेंबर ही हो गया था ना। तो बच्चों को भी बहुत मतलब सेंसिटिविटी रही इस कंडीशन से जो बेंजी थी, क्योंकि फिनोबार्बिटॉल के साथ क्या होता है कि एंटी सीजर मेडिसिन होती है तो उसके साथ थोड़ी सेडेशन भी आ जाती है ना। बेंजी बहुत एक्टिव नहीं तो होता क्या था कि नॉर्मली डॉग्स के साथ बच्चे खेलते हैं कूदते हैं खूब करते हैं और बेंजी भी करता था जब अपने मूड में होता था तो पर बिकॉज उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की थी तो उसका थोड़ा सा यू नो सेडेशन इफेक्ट भी होता था।
1: राइट राइट राइट, बहुत एक्टिव नहीं रहता था। जी जी जी बिल्कुल, जैसे घर में एक छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो हम सब उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं एक्स्ट्रा प्यार करते हैं, तो ये तो बेजुबान जानवर है तो आई कैन इमेजिन एंड दिस इज वेरी सैड टू नो दैट ही हैड दिस कंडीशन। हाउएवर आई एम वेरी प्राउड कि आपने उसे 10 साल अपने साथ रखा और इतनी केयर और इतना प्यार दिया, बहुत ही खूबसूरत बात है मैम ये। इसी के साथ क्या ऐसे भी मोमेंट्स होते थे जब आप लो फील कर रहे हैं, घर का माहौल थोड़ा सा यू नो लो है, तो बेंजी के कुछ रिएक्शंस ऐसे हों जो आपको चीयर अप करने की कोशिश करता हो, क्या ऐसे कभी एक्सपीरियंसेस हुए?
0: ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए। मैंने कहा ना एनिमल्स ये इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं जब आप उदास हो या आप लो फील कर रहे हो।
1: हाँ जी।
0: और ये तो कभी कभी ह्यूमंस भी नहीं फील करते
1: नहीं देखते हुए भी अनजान बनते हैं हम साथ रहते हुए भी।
0: हाँ, और ये एनिमल्स में एक खासी जैसे होता है इट्स अनदर सेंस। तो जब मेरा बेंजी मुझे इस तरह कभी देखता था या फिर बच्चों को भी इस तरह होता था तो बहुत प्यार से जाके पास में बैठ के अपना एक पॉ उनकी गोद में रखता था, मेरी गोद में रखता था के और जैसे ट्राइंग टू टेल मी कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा इस तरह। जस्ट रीअश्योरिंग दैट मैं हूँ ना सब ठीक हो जाएगा, जो रीअश्योर कराता था मुझे इस तरह। हाँ, वो फीलिंग आती थी मुझे। और मैं संगीत में काफी इन्वॉल्व रहती हूँ तो मैं जब भी रियाज करती थी तो ऑफकोर्स मेरे मुंह पे तो खुशी आती ही थी बट बेन जी को भी लगता था कि ये म्यूजिक कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी, और वो मेरी बेस्ट ऑडियंस भी होता था, वो अपने प्यार से आके

0: सुनता था। ठीक है, कभी कभी धीरे धीरे उसके मुंह से हमको हमिंग भी सुनाई देती थी।
1: वाओ,
0: आई एम टेलिंग यू, इट वाज सच अ मेमोरेबल।

0: वेलकम बैक बिंदु मैम। गीत से पहले हम बहुत सारी गीतों भरी बातें कर रहे थे, कैसे बेंजी भी एक म्यूजिकल डॉग था और आपके म्यूजिक लेसन्स में, आपकी म्यूजिक लर्निंग में आपका साथ देता था, आपकी ऑडियंस बनता था और खुद भी गाने की कोशिश करता था। तो ये तो हुई मैम मजे की बातें। अब बिकॉज हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पेट्स की तरफ जो अवेयरनेस है, जो नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेंसिटिव हुए हैं इन द लास्ट 1 डेकेड आई थिंक। तो आपकी तरफ से, बिकॉज यू आर सच एन एक्सपीरियंस्ड पेट ओनर एंड पेट पेरेंट, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: तनुषा, ऐसा है कि पेट्स को लेने से पहले बहुत सारी मैं इंडिया की बात भी कर रही हूँ कि लोग रखते हैं जस्ट फॉर लाइक अ स्टेटस सिंबल या फिर अ प्ले थिंग या फिर सुंदर लगता है तो उसको रख लो घर में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना जो पेट्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, आप उनको पहले समझिए एंड डोंट गेट पेट्स इफ यू आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देम। अभी इंडिया में बात हमारी अलग थी क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प काफी हो जाती थी, घर में हमारी मदर भी थी जो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थी कि इसकी ग्रूमिंग सही होनी चाहिए, उसको रोज ब्रश करना चाहिए, उसकी
0: वाओ
1: खुराक ठीक हो, हाँ सब कुछ, और उसको घुमाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, विच ऑल्सो एक्चुअली हमें भी बहुत हेल्प करता है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो अपना भी माइंड क्लियर होता है, डिस्ट्रेस करता है
0: एब्सोल्युटली
1: हमको, बहुत सारी मसलों के हमको हल मिल जाते हैं जो दिमाग में चल रहे हैं। तो हमारी मम्मी बहुत ही पर्टिकुलर थी कि इनको सही तरीके से इनकी देखभाल की जाए, पेट लेने से पहले समझ लो कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और फिर डिसिप्लिनिंग द पेट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई पेट्स को आप अगर ठीक से नहीं डिसिप्लिन करेंगे या उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे थोड़ी बहुत, तो कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी आपको

0: देखने पड़ेंगे फिर,
1: और
0: फिर वो किसी को जाके बाइट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, तो वो भी अभी जरूर इंडिया में बात अल्लाह की, पर यूएसए में क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर तो पीपल कैन फाइल अ लॉ सूट, आपके किसी को काट लिया जाके, आपने अगर लीश पे नहीं रखा है डॉग को, आप अगर घुमाने जा रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉपर लीश लॉ.
1: राइट, इट्स अ टॉट, लॉ ऑफ टॉट.
0: यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत अरसा हो गया है इंडिया को छोड़े मुझे, तो मुझे पता नहीं शायद वहाँ पे भी कुछ तब्दीली होगी, पर यहाँ पे तो ये जबरदस्त है. और इसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी अगर टाइम परमिट
1: करेगा. जी जी बिल्कुल,
0: वो बहुत बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए. मेरे डॉग के साथ नहीं हुआ, पर मैंने किसी और डॉग को रिसासिटेट करके जान बचाई थी. तो इस तरह से मैं आपको वो भी बता दूंगी बाद में अगर.
1: नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैम, यू कैन शेयर इट राइट अवे, बिल्कुल टाइम है जी.
0: तो वो ऐसा था कि हमारी नेबरहुड में एक डॉग ओनर थे, हमको जानते भी थे, हमारे देसी थे, सिंधी लोग थे. उनका एक छोटा सा डॉग था, शिवावा था. अब शिवावा को आपने देखा है कि वो इतना छोटा होता है कि आपके पॉकेट में भी आ सकता है.
1: यस,
0: इट्स अ वेरी स्मॉल डॉग. तो मैं अपनी नेबरहुड में मम्मी कहीं पे मुझे विजिट कर रही थी और किसी के घर पे थी, उनको लेने जा रही थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी. तो रेजिडेंशियल एरिया में तो जगह जगह पे वो भी होते हैं ना, आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी, सो यू कैन नॉट इवन ड्राइव वेरी फास्ट, यू नो, 10 या 15 मील की स्पीड के ऊपर आप चला रहे हैं. सडनली मैंने देखा, दोपहर का टाइम था, इट वॉज आफ्टरनून, और लोगों के घर भी बड़े बड़े हैं, लॉन्स हैं यहाँ पे, तो किसी का स्प्रिंकलर भी चल रहा था. और ये जो अपने डॉग को घुमा रहे थे, ये सड़क के एक तरफ चल रहे थे और जो इनका डॉग था वो सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था, साइड वॉक पे. अभी सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार में कुछ अटका जैसे.
1: ओह शिट.
0: तो हाँ, और मैंने अपनी रियर व्यू से, अपनी कार की रियर व्यू मिरर से देखा, तो देखा कि ये जनाब जो इनके ओनर थे, वो आके उन्होंने कोई चीज अपने हाथ में उठाई, छोटी सी तो थे वो द डॉग. तो मेरे से रहा नहीं गया, मुझे ऐसे लगा बहुत, हालांकि मेरी अपनी फैमिली में इमरजेंसी थी, मम्मी को लेने जा रही थी, बट आई टर्न माय कार अराउंड और तो लगा कि अरे मुझे तो ऐसे लगता है मैंने किसी का पेट को हिट किया है. तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं जाके उसको शिवावा को अपने हाथ में उठाया, एंड आप मानेंगे नहीं, उसकी जीभ बाहर निकली.

0: तो ये सब हुआ। अच्छा, उसके बाद वापसी पे हम मम्मी को जहाँ भी ले जाना था मैं लेके गई वापसी पे। मम्मी ने कहा नहीं, वेट के पास चलो, वेट के पास चलो। तो हम गए तो पूछे तो द डॉक्टर टोल्ड मी कि मिसेस मल्होत्रा व्हाट एवर यू डिड दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ बिकॉज ये मर गया था।
1: राइट राइट।
0: सिर के ऊपर एक हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट हो गया था।
1: राइट।
0: तो वो बोला कि हमने इसको ओवरनाइट रखेंगे, वी विल ऑब्जर्व हिम। तो इस तरह से उसको उन्होंने ओवरनाइट रखा और वो कुत्ता उसके बाद काफी साल जिया। पर उसके जो ओनर थे वो मुझे आज तक भी फॉरगिव नहीं कर पाए कि तुमने हमारे कुत्ते को हिट किया,
1: बताएं, जबकि आप ही ने सेव किया।
0: उसके दिन रात को पता क्या हुआ, जब हमने रात को उनको फोन किया, उनको मैं जानती थी, हमारे इंडियन लोग ही थे
1: जी।
0: तो मैंने उनको पूछा, वो तो मेरे ऊपर एकदम गुस्से हो गए कि कॉस्टिंग मनी, पता नहीं $120 थे या कुछ ऐसा था, तो बोले कि इट्स कॉस्टिंग अस सो मच एंड यू नीड टू पे फॉर इट।
1: Of course, they were thinking it is an opportunity for them instead of taking care of the pet, yes.
0: You know, like, tell me how many people would... हम तो अपना निकल ही जाते
1: हैं। नहीं, रुकते भी नहीं है मैम। Yes, yes, people don't stop also.
0: Yeah? नहीं, so what I did actually, उसी हमारे को, हमारे friends के बेटी और उनका जो husband थे, वो attorneys हैं। मैंने उनको फोन किया, देखिए आप मुझे बताइए ये ऐसा किस्सा हुआ और इज देयर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर है तो मैं उनको पे कर दूंगी जाके, तो गाड़ी से तो मेरी टकराए। बट एनी वे उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बोला, आंटी यू डोंट ओ देम एनीथिंग एट ऑल, बट इफ एनीथिंग दे ब्रोक द लीश लॉ।
1: राइट।
0: ओके। कुत्ते लीश पे नहीं था,
1: नहीं
0: और
1: था।
0: आपने तो कुत्ते की जान बचाई है।
1: यस।
0: यू नो,
1: इवन यू ड्रोव इट टू द वेट।
0: यू विल डू व्हाट यू डिड।
1: यस। यस।
0: सो एनीवे, तो उसने बोला, बट हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर था ना,
1: जी जी,
0: क्रॉनिकल
1: जी जी
0: नाम है, तो बोले बट आंटी दिस विल मेक अ ग्रेट स्टोरी फॉर द ह्यूस्टन।
1: इंडीड।
0: So,
1: indeed,
0: I'm telling you, so this also happened in my life, and I always, you know, share and teach CPR.
1: Yeah, absolutely.
0: और कुछ करे ना करे पर compression जरूर कीजिए,
1: right?
0: You know, because heart को वापस लाना बहुत crucial रहता है, और चाहे वो जानवर हो चाहे वो humans हो, तो ये चीज मेरे बड़ा रेयर एक्सपीरियंस होता है किसी को भी इस तरह का।
1: एब्सोल्युटली, वेरी रेयर एंड या वेरी लाइक यू नो सिग्निफिकेंट इन योर जर्नी, वेर इन कई लोग सच में मतलब ऐसी चीजों को भी अपॉर्चुनिटी समझ के उसको मिंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि गलती उन्हीं की होती है और उनके पास वेट भी नहीं है, विच इज अमेजिंग फॉर मी। आई मीन, एंड यू पेटिंग अ डॉग दैट इज यू नो एज एक्सपेंसिव लाइक यू मेंशन एंड एज यू नो हाई मेंटेनेंस, एंड उसके बाद भी आप सामने वाले के ऊपर, जबकि सामने वाला इज द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ योर पेट एंड ड्रोव यू टू द वेट ऑल्सो। सो हाउएवर, it's amazing that you know the way you handle the situation, and I'm so happy that the pet survived, you know, sabse badi baat ki the pet survived, gonzo, right? Yeah, beautiful. So,
0: that's
1: beautiful,
0: significant in my life too.
1: Yeah,
0: होता तो शेयर कर देती हूँ।
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए, इन्हीं खूबसूरत बातों के बीच, इन्हीं गहरी बातों के बीच, इन्हीं जीवन के एक्सपीरियंसेस के बीच, हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे जो जीवन से ही जुड़ा हुआ है, जीवन का ही फलसफा है। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। फिल्म बड़े दिल वाले।

0: एक तो अनकंडीशनल लव, यू नो, और लॉयल्टी एंड टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट.
1: यू नो, ये
0: चीजें जो बहुत अहम रहती हैं, क्योंकि जब हम अपने पेट्स को डिसिप्लिन करते हैं, उन्होंने कुछ गलती कर दी या कुछ उनको मना किया कि कार्पेट पे नहीं जाना है, और वो कभी कभी मुझे ट्राई करता था जरूर, यू नो, कि माँ देख तो नहीं रही है तो मैं जा रहा हूँ, बैठूंगा जाके या कुछ करूंगा. और खासकर जब घर में ऐसे होते हैं, कोई आ गया घर में, तो देन दे थिंक जस्ट लाइक चिल्ड्रन की, ओ आई कैन गेट अवे विद
1: दिस, मैं
0: तो इस तरह से होता था. पर फिर उनको डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर को रोल करके, जो मम्मी ने सिखाया था मुझे, कि उन्होंने शायद पढ़ा था या फिर जब पेट केयर का, तो कि आप एक न्यूज़पेपर को जैसे रोल करके ना उसको करें, तो उससे चोट नहीं लगती है एनिमल को, पर उसकी जो आवाज होती है उससे से वो चौंक जाते हैं, उनको पता है कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर वो आगे से नहीं करेंगे. तो वो एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अ डॉग स्पेशली, ये बहुत इम्पोर्टेंट था. ऑफकोर्स लॉयल्टी तो मैंने बोला कि वो भी उन्हीं से सीखी, और लिविंग इन द प्रेजेंट, कि हम अपने पास्ट में नहीं चले गए, फ्यूचर का सोचना बंद कर दिया, तो एंजॉय द मोमेंट, उसी मोमेंट में रहे, तो वो सीखा. और दूसरा सवाल वो मैंने कहा कि बहुत सालों से अब मेरे पास कोई पेट नहीं है, क्योंकि मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ. हमारे हस्बैंड जो है वो एक्सटेंसिव पीरियड्स के लिए ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं अपने अपने घरों में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैं, और मैं भी मेरी भी जॉब है जो आई कंटिन्यू टू वर्क, तो बहुत ही मुझे लगता है कि क्रूअल होगा कि अगर कुत्ते को हम पालेंगे तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल कर पाते हैं.
1: ब्यूटीफुल, यस.
0: क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई भी पेट.
1: करेक्ट करेक्ट. बट डू यू फील अ डिफरेंस लाइक अ वैक्यूम जब आपके पास पेट था, और जब यू नो अब यू डोंट हैव अ कंपेनियन एंड अब बच्चे भी बाहर हैं, डू यू फील दैट वैक्यूम, और डू यू एवर थिंक कि नहीं शायद ले आऊं या कुछ कोई एक छोटा सा पेट रख लूं, ऐसा कभी कुछ मन में आता है मैम?
0: मन में आता जरूर है, और रख भी सकूं तो नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बहुत सेवा करनी पड़ती है जैसे बोला. और देख रही थी टीवी पे आजकल एक वूफी करके एक डॉग है, हु इज लाइक एन एआई जनरेटेड डॉग, और वो एकदम और वो क्या है कि एकदम रियल डॉग की तरह है, जो आपके आसपास घूमता है, आपकी कमांड्स भी फॉलो करता है, आप उसको वॉक के लिए भी ले जा सकती हैं. तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जाके एक वूफी ले आऊं अपने लिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल, एआई का जमाना है तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए. और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही मैम आपसे, बहुत ही सरल और साझा, सरल और सटीक तरीके से आपने अपनी बातें साझा की. अब अंत में जैसे मैंने कहा था, बिकॉज अब गाती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दें जो हम बेंजी को डेडिकेट करना चाहते हैं.
0: बेंजी को डेडिकेट करती हूँ एक सॉन्ग, मेरे बच्चे और मैं, बच्चे भी छोटे थे तब, तो हमें गाना इंग्लिश में है, गाया करते थे
1: जी.
0: और तो वो उसकी दो लाइनें सुना सकती हूँ आपको.
1: बिल्कुल.
0: सो इट गोज लाइक दिस, यू आर

0: बिंदु जी और बेंजी की कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। बेंजी की पहली मुलाकात बिंदु जी के परिवार से ऐसी थी जैसे उसने पहली ही मुलाकात में सबको अपना बना लिया और फिर 10 सालों तक प्यार और वफादारी के साथ उस रिश्ते को निभाया और बहुत खास बनाया। बिंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज हमारे साथ इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें साझा की और हम सब ये एपिसोड बेंजी को डेडिकेट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग सिर्फ एसएन रेडियो पर। याद रखिए, पेट्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनते हैं लेकिन अपनी यादों से हमारी जिंदगी भर मुस्कुराने की वजह दे जाते हैं। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: दोस्तों ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जवानी। दोस्तों लीजिए, फिर आ गया वो दिन, वही वार जिसका हम बेसब्री से करते थे इंतजार।
2: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
1: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ, हर कोना, हर गांव, शहर में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
2: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सबका अधिकार।
1: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय, इस बार धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
2: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे स्वच्छता की गुहार।
1: केवल मनोरंजन नहीं, उद्देश्य है हमारा।
2: बैठ जाए हर मस्तिष्क में ये संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
1: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
2: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें पूरा देश।
1: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
2: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
1: यही है सुजल स्वच्छ गांव अभियान की पुकार। साथियों इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों की कहानियाँ सुनेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने और व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया जाता है।
1: जल के अधिकार के साथ एक बात और, वो ये कि स्वच्छ भारत अभियान के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनवाने का कार्यक्रम किया था। और स्वच्छिका तुमको याद होगा कि कितने ही गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया। अब ये ना कह देना कि ODF गांव होता क्या है।
2: अरे ऐसा कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है ODF का पूरा नाम खुले में शौच मुक्त गांव है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन समुदायों या क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के साथ साथ महिलाओं की निजता की रक्षा में भी मदद करती है। सही बताया ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब देश ODF से ODF प्लस मॉडल गांव की ओर बढ़ रहा है। एक ODF प्लस मॉडल गांव वो होता है जहां खुले में शौच की आदत पूरी तरह खत्म हो चुकी हो, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन हो गया हो, साफ सफाई का स्तर अच्छा हो, सार्वजनिक जगहों पर कचरा और पानी जमा ना हो।
2: इसमें यह सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो और कूड़ा कचरा और स्थिर पानी कहीं भी जमा न हो।
1: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी देखिए बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूट ना जाए।
2: अच्छा यह लेकिन मुझे यह पता है कि अब तक 5.67 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है जिसमें से 4.81 लाख से ज्यादा गांवों को ODF प्लस मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है।
1: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास देखिए जारी हैं। हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, हर घर नल योजनाएं भी शामिल हो चुकी हैं। और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी देखिए बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
2: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुके हैं। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
3: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश

0: लोगों तक पहुंचाएं?
1: याद रखना है आपको, और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
2: एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल, साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो गए हैं।
1: अच्छा, अरे वाह, ये कैसे हो गया?
2: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: अच्छा, कहाँ?
2: चलो तुमको रामपुर गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वह सुनवाती हूँ। और वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
1: एक मिनट, रुको रुको, दूषिका या प्रदूषिका?
2: सही तो है सुजल, प्रदूषिका तो सिर्फ प्रदूषण फैलाएगी, ये दूषिका ही है जो प्रदूषण के साथ हर स्थान को दूषित करती रहती है। हम भी अब से इसको दूषिका ही कहें तो सही होगा।
1: कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत? आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत की जीत।
2: आ गई मैं दूषिका, गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में, मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, बिमला के बेटे का तो खुजली हो गई, ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
2: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है, तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था, सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
0: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
2: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और

0: सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
1: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
0: अच्छा, तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा क्या धराया है ना? अब समझ गया मैं। देखो, मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी, पानी, हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई, तो बन जाओ होशियार। तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
1: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे, ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
0: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
2: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
0: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
1: शौचालय प्यार।

0: गेले, घर में हो साफ सफाई रोज, तक बीमारी रखो को दूर, मारो सच शौचालय जी, ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं, स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है, और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों, सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है, लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा, तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या? चलो चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए, नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं, बीमारी और शन फैलती है। शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ, हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे। शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं, और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी हो जाती है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दे दी, जहां प्रदूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार स्वच्छ भारत की जीत।
0: आ गई मैं दूषिका गांव की नालियों से निकलकर, शौच के खुले मैदानों में फैलकर, कभी हवा में कभी पानी में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हुआ ना, फैला दी ना मैंने गंदगी, जहाँ लोग खुले में शौच करते हैं, जहाँ शौचालय बनते तो हैं, मगर उपयोग ना करने से खराब हो जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, वहीं मैं रहती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, जो कहते हैं ना कल करेंगे साफ, उनको मैं जल्दी से ही बीमार कर देती हूँ। खुला शौच यानी मेरी जीत, टूटी टंकी पानी मेरा ठिकाना, बहुत ठीक हुआ। गंदा शौचालय मेरा आशियाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना। घर में शौचालय तो है पर पानी नहीं, गंदा भी है, विमला के बेटे का तो खुजली हो गई। ऐसे शौचालय का उपयोग से बेहतर तो खेत ही ठीक ठहरा।
3: पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े, सरपंच जी कुछ कीजिए।
4: जंगल में जाना अब खतरे से खाली नहीं, सांप और कीड़े।
0: हमारे घर में शौचालय तो है लेकिन बेटा अंदर नहीं जाता, कहता है बदबू आती है। बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम्हारे बच्चों का बुखार, पेट दर्द और उल्टी, ये सब मेरी ही सौगात ठहरी। तुम सब तो मुझसे रहम की पुकार करो।
1: एक दिन गांव की सीमा पर आ जाता है एक युवक, आत्मविश्वास से भरपूर, हाथ में झोला, आंखों में मिशन लिए, और वो था सुजल कुमार, जो अपने गांव से रोज स्कूल जाता और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता। छुट्टी के दिन सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव गया था। सीखा था उसने कि बदलाव घर से शुरू होता है।
5: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा सा क्यों है, सब इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, और भैया ये इतनी गंदगी क्यों है यहाँ?
0: लगता है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो, सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं हो।
1: मैं सब समझ गया चाची, मैं समझ गया। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण ये गंदगी है ना?
0: मैं ही हूँ इस सब का कारण, मैं। बोलो क्या कर लोगे तुम, बोलो बोलो। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
1: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? अब समझ गया मैं। देखो मैं कुछ दिनों में ही तुम्हारा कैसे इलाज करता हूं, देखते रहो। सुजल गांव में नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बड़ों से मिलकर समझाता है। देखो भाई, शौचालय ना सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। गांव वालों सुनिए, खुले में शौच से मिट्टी पानी हवा सब जहरीले हो जाते हैं। अगर तुम अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो ना भाई,
5: तो बन जाओ होशियार, तो शौचालय का सही उपयोग करो और उसे साफ भी तो रखना आप ही का काम हुआ ना। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक हमें होना होगा। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होने लगे और शौचालय की सफाई शुरू करते हैं और दूषिका बहुत बेचैन होती है। गांव की गली में छिपकर वो देखती है।
0: ये क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां कैसे ढक दी? क्या ये शौचालयों पर दरवाजा कब लग गया? दुर्गंध कहाँ गई? अरे मच्छर भी नहीं है। अरे अरे अरे ये सब गांव में क्या हो रहा है? अरे
5: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
0: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ साबुन से हाथ धोना आदत है। मैं वहीं रहती हूँ और मैं हूँ स्वच्छिका।
5: अब गांव में हर घर, गली मोहल्लों में अभियान, दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित चित्र, साबुन के साथ बच्चे नल पर हाथ धो रहे हैं, महिलाएं गा रही हैं।
0: शौचालय प्यारा।

0: गेले घर में हो साफ सफाई रोज तो बीमारी रखो को दूर मारो सच शौचालय जी ओ मारो सच शौचालय जी। अरे नहीं स्वच्छता की ये चमक मेरे प्रदूषण को निगल रही है, मेरा प्रदूषण का साया तो खत्म होता जा रहा है और इस सुजल की बातें लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा, शौचालय में ढक्कन लग गए, नाली साफ कर दी गई, अब खुले में तो कोई शौच जाता ही नहीं।
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकाल रहे हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वाले दोहराते हैं, खुले में शौच को ना कहो, बीमारी को दूर भगाओ, शौचालय को साफ रखो, स्वच्छ गांव बनाओ। दूषिका थककर गांव की सीमा पर बैठकर रो रही है।
0: मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छता अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदल डाला। अब तो मुझे जाना ही होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
0: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो अगर सफाई की आदत छूटी तो वह लौट सकती है। इसीलिए बहनों सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं। अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है, गंदा तो होना ही है, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय से ही प्रदूषण बढ़ता है, अगर हम रोज सफाई करें तो तुम दम तोड़ दोगी।
0: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारे घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों अब से सफाई को ही अपनाओ। औरतें ही तो करती हैं ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए, अब नहीं बोलोगी। सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। हमारे घर में शौचालय है लेकिन बदबू बहुत आती है, बच्चे तो पास भी नहीं जाते।
1: तो समझाइए उनको बहन, शौच के बाद पानी डालना सिखाइए उनको, शौचालय का महत्व बतलाइए उनको।
0: अच्छा तुम्हारे घर में अब भी सफाई नहीं हुई क्या, चलो चलो मैं आती हूँ तुम्हारे घर, यही तो है मेरी असली ताकत, चलो आती हूँ। सुनो सब लोग, शौच के बाद हाथ ना धोना बीमारी को न्योता देना है, हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। अरे तब क्या कहोगे सुजल, हर किसी के पास फिनाइल और डिटर्जेंट थोड़ा ही ना होता है।
1: फिनाइल ना हो तो देखिए नींबू, नमक, राख से भी मदद ले सकते हैं हम। सफाई का तरीका ढूंढा जा सकता है, बस इरादा होना चाहिए कि शौचालय साफ रहेगा।
0: अरे खुले में शौच से तो हवा चलती है, खेत में ताजगी रहती है, ये बंद कमरा कुटन और बीमारी। खुले में शौच से ताजगी नहीं बीमारी और शन फैलती है, शौचालय में हवा की निकासी हो तो ताजगी भी रहती है और इज्जत भी।
2: हाँ हम सब समझ गए दूषिका, हम समझ गए, अब तुमसे नहीं डरेंगे, शौचालय को साफ रखेंगे, रोज उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे, अब तुम्हें भगा देंगे।
0: ये तुम सब क्या कर रहे हो, लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं।
1: गांव रामपुर अब नहीं रहा पहले जैसा, हर गांव में शौचालय है और उसका रख रखाव भी, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित हैं और दूषिका वो तो हार चुकी। ये है असली सुजल स्वच्छ गांव की तस्वीर। स्वच्छ भारत का सपना है, हर गली में स्वच्छता है। शौच

0: शौचालय की जिम्मेदारी, हर दिल की अब तैयारी। सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत।
1: मजा आ गया ना हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामपुर गांव में इस तरह का नाटक खेला जा रहा है, और हमको लगता है कि नाटक सुनकर देश के बाकी हिस्सों में भी जरूर अपने अपने गांव में जागरूकता लाने के लिए नाटक खेले जाने की इच्छा तो जरूर ही रही होगी। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग कम्युनिटी इंगेजमेंट के जरिए बता भी रहे होंगे। इस संदर्भ में चलो गांव में एक स्वच्छता चैंपियन से बातचीत सुन लेते हैं।
0: स्वच्छता चैंपियन, ये कौन होते हैं?
1: सुजल स्वच्छता चैंपियन वो व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, जो लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताने में, शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं और उन्हें स्वच्छता के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। समुदाय में सक्रिय स्वच्छता चैंपियन समुदाय में सक्रिय रूप से काम करते हैं और स्वच्छता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं। ऐसे ही एक चैंपियन अब हमारे साथ हैं।
2: नमस्ते सर,
3: आप स्वच्छता के बारे में क्या समझते हो?
2: स्वच्छता न भरा मत घेर शौचालय जो है सब ने शौचालय में जाओ जो है हाथ साबुन ही धोवाना शौचालय जाओ बाद में घर में साफ सफाई रखवानी कसरू कुटू घर में साफ कर खाडा में डालवा नेबू पानी खराब नहीं हो जाए खाडा में डालवा निकास करवा खाडा में पानी तेलखा पानी भी साफ नहीं है तो हेडपंप न साफ पानी डाल छाणी ढाकी ढाकी मेलवा एक लोटी मेली ने लोटी ही निकाले गिलास में निकाले भी साफ मतलब घेर ने साफ सफाई रखवा ही छोरा गंदगी नहीं रहे छोरा ना छोरा साफ सफाई करवा गंदगी छोरा बीमार था घेर में बीमारी था।
3: ये बड़ी जानकारी तमन कई थी मिली?
2: ये जानकारी हम ले हूँ चेतना सम्मा जोड़ाई होते फिर हर महीने हमारे बैठक में मीटिंग में हम बैठक ले ली फिर हर महीने हम सर हम बोला बैठक ले दी बैठक ले ली हमने तीन बैठक में जानकारी मिली कि घर में साफ सफाई रखवानो शौचालय जाए तो साबुन हाथ ने धोवाना ये हम ये चेतना समूह में जोड़ाए हम तीन में जानकारी में कि मतलब घेर में केवु रखवानू घर में केवी साफ सफाई रखवानी ये जानकारी हम फिर मिले तो हम फिर हमारे घेर ने हमन के केम साफ सफाई करवानू ये जानकारी हम सब फिर बैठक ही हम सब जानकारी में।
3: तो दीदी तुम्हारे घर शौचालय बना हुआ है कि नहीं है?
2: हमारा घर शौचालय बना वेलू से
3: ते तुम घेर थी बनाये कि सरकारी मिली?
2: तो सरकार ना भी सरकारी से पर सरकार ना भी आधा पैसा ना आधा हमारे घेर ना पैसा करी हमें एक असल बनाए ले दो शौचालय घड़ी घड़ी बनाए नहीं तो हमें असल बनाए ले दो।
3: दीदी आप तो मतलब घर से निकलने वाला कचरा उसको का एक जगह इकट्ठा करते कि या फेंक देते हो?
2: घेर मान कचरो इकट्ठा करे नहीं खाडा में खाडो बनाए नहीं तो ना खाडा में कचरो पूरा नाखे।
3: दीदी आप बताओ कि जो अपना घर से निकलने वाला पानी जैसे बर्तन साफ करते नहाते धोते वो पानी को आप कैसे निकास करते
2: हैं? ये पानी हम बर्तन करी उंगली चित्रा धोबी ये पानी सब हम एक नाले बना भी नहीं एक खाडो पहाड़ में खोद में इतना खाडा में पूरा पानी जाए ते दिन मैं जमीन में रंजी जाए पानी इतना खाडा में तो वैसे एवं फैलाड़ी नहीं तो फैलाड़े ही मच्छर लेवा पड़े गंदगी ही फिर बीमारियां था करी एक खाडो खोद में इतना खाडा में सब पानी जाए ते रंजी जाए मैं।
3: दीदी एक बार आपका पूरा परिचय दे दो।
2: मारू नाम सोनिया वास्केल से गांव माछलिया से तहसील रामा जिला झाबुआ से सेतना महिला में हम 2020 ही जोड़ा ही लिए।
0: स्वच्छता चैंपियन सचमुच समुदाय में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने में बहुत मदद करते हैं। वो स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हैं। स्वच्छता चैंपियन बनकर आप अपने समुदाय में स्वच्छता की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि सुजल की स्वच्छता एक सोच है और ये सोच हर मन में विकसित हो सकती है। हम बच्चों को जब सिखाते हैं कि यहाँ पर कागज मत फेंको या यहाँ पर केले का छिलका मत फेंको, डस्टबिन में डालकर आओ, इस समय से ही बच्चों के मन में यह सोच विकसित होनी शुरू हो जाती है।
0: सही कह रही हो स्वच्छिका। जब मैं छोटा था ना, गांव के स्कूल में जाता था, तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत छोटी छोटी बातें इसी तरह सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज भी मैं कहीं गंदगी देखता हूँ ना, तो उसको साफ करने की कोशिश करने लगता हूँ।
1: तो क्या तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
0: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही तो हुई और इसीलिए मैं एक स्वच्छता चैंपियन की तरह काम करता हूँ। स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई बनाए रखने में लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: हाँ सुजल, ठीक बोले। और आजकल तो गांव में कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव बहुत अच्छे से काम कर रहा है।
0: अच्छा स्वच्छिका, ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या चीज है?
1: ये लो, सारी रामायण खत्म हो गई और अब तुम पूछ रहे हो कि राम का किरदार कौन है।
0: अरे बस पहली ही बुझाओगी या कुछ बताओगी भी कि ये कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव क्या है?
1: अरे भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि स्थानीय समुदाय द्वारा एक ऐसा प्रयास है जिसमें गांव के लोग खुद योजना बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, श्रम करते हैं और खुद ही निगरानी भी करते हैं।
0: ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि हमारा समुदाय ही खुद आगे बढ़कर गंदगी को मिटाने लगता है?
1: हाँ भाई हाँ। अभी तक क्या मैं विदेशी भाषा में बोल रही थी? और इसमें हमारी सरकार समुदाय की मदद भी करती है। इसमें सरकार की भूमिका यहाँ सहायक की होती है, आदेश देने वालों की नहीं।
0: अच्छा, अब समझा। यानी कि तुम ये कह रही हो कि ये मॉडल सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी, इसी पर आधारित है।
1: ऐसे तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बनते हो, लेकिन अब आई ना तुम्हें ठीक से अकल। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे, इसमें सबकी भागीदारी, सबकी जिम्मेदारी होती है।
0: लेकिन सोचिका, ये समुदाय आधारित पहले काम कैसे करती है? मतलब कुछ तो तरीका होगा ना?
1: ओहो, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रह गए। देखो, ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियों का गठन किया जाता है और ये समितियां ग्राम पंचायत के अधीन कार्य करती हैं और उसमें महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में या युवा शिक्षकों के रूप में या अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
0: अच्छा अच्छा, समझा समझा, अब समझ गया। यानी कि तुम उसी समिति की बात कर रही हो जो गांव में शौचालय निर्माण की निगरानी करते हैं, ठीक है ना?
1: बिल्कुल ठीक पकड़े हो सुजल, अब जली है तुम्हारे दिमाग की बत्ती। ग्राम स्तर की स्वच्छता समिति शौचालय निर्माण की निगरानी, व्यवहार परिवर्तन, अभियान स्वच्छता निधि का उपयोग और ऑडियो सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है ये।
0: बस बस देवी जी, मैं समझ गया। तुमको बताऊं, वो किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में, वो भी ग्राम स्तर पर स्वच्छता समिति की सदस्य हैं।
1: हाँ हाँ, मैं समझ गई, तभी तो तुम्हें इतनी जानकारी है।
4: जिंदगी में हर चीज का विकल्प है लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। अब बातें नहीं होंगी, अब मुहिम चलेगी। बारिश का पानी बन सकता है आपकी जिंदगी, हर बूंद में मुस्कुराएगा आपका कल। सोच जो आपका समय बदल दे। आखिरी बूंद।
0: अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में, यानी कि एपिसोड नंबर 1 में, हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन भेजने के लिए कहा था और साथ ही कहा था कि अच्छे स्लोगनों को इनाम भी दिया जाएगा।
1: अरे, तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका जी, और उनमें हमने तीन अच्छे स्लोगन छांट भी लिए हैं। उन श्रोता साथियों को अब हम इनाम भी देंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं उन श्रोता साथियों के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन्स। पुरुषोत्तम भाई लिखकर भेजते हैं, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। भाई वाह, क्या स्लोगन दिया है। दूसरा स्लोगन है जिसे भेजा है सत्तार भाई ने, जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो पानी हूं मैं। भाई वाह साहब, बहुत ही प्यारा लिखा। और लीजिए दोस्तों, तीसरा स्लोगन है जिसे लिखा है सुदर्शन भाई ने, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, ये बात है सबको समझाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर स्लोगन लिखा दोस्त।
1: वाह, ये तो बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं हमारे श्रोता साथियों ने। अब हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे केंद्र में आकर अपने इनाम लेकर जाएं। आप सभी को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल लीजिए। आरओ का इस्तेमाल करना आज बहुत से क्षेत्रों में मजबूरी बन चुका है। अधिकांश घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन

0: व्यर्थ बहते हुए पानी का इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे?
1: चलिए दोस्तों, चलने का वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बता दें। और आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे, है ना? आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जबानी, कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि हम अपने शौचालय का रख रखाव और उसकी साफ सफाई कैसे करें, स्वच्छता जरूरी क्यों है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक की हुई प्रगति की झलक।
0: और साथियों, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
1: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कनेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
0: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए, अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर उसके प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए, स्वच्छ भारत यानी सुंदर भारत।
1: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। फिलहाल स्वच्छता और सुजल को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल बुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा बिसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मींस एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल, दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा ट्रांसफर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है,
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, kya ga rahi?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है। हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है। हुस्न की शोखियां जरा देखो, गाहे शोला है गाहे शबनम है। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, शम्मे महफिल में रोशनी कम है। बन गया है ये जिंदगी अब तो, बन गया है ये जिंदगी अब तो, तुझसे बढ़कर हमें तेरा गम है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय 90.8 FM की जरखेज लहरों पर। आप सुन रहे हैं रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर रुमानियत और जज्बात से लबरेज आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, जब ढलती हुई रात अपने आंचल में तन्हाइयों को समेटती है तो रूह को किसी ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो सीधे दिल में उतर जाए। अमूमन हमने अपने अजीम फनकारों के फिल्मी नगमों को सुना है, मगर आज की महफिल कुछ जुदा है, कुछ खास है। आज हम उन अजीम आवाजों के उन पोशीदा शाहकारों को सुरों का जामा पहनाने जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर गजलियत के रंग में रंगे हैं। आज की इस नशिस्त यानी महफिल में गुजरे दौर के वो शहंशाह मौसीकी के बज़्म सजाएंगे जिन्होंने अपनी गैर फिल्मी गज़लों, हिजर और वसल, दर्द और मोहब्बत के ऐसे नक्श छोड़े हैं जो कभी धुंधले नहीं होते। जब अल्फाज सीधे रूह से निकलते हैं तो वो शायरी नहीं, एक मुकम्मल एहसास बन जाता है। तो फिर देर किस बात की, अपने दिलों के दरीचे खोल दीजिए, खामोशी को जरा और गहरा होने दीजिए और डूब जाइए सुरों के इस सहर में। मुलाकात करते हैं आज की पहली मखमली गजल से। इस पुरसकून शाम का पहला नजराना पेशी खिदमत है उस अजीम फनकार की पैरवी में जिनकी आवाज का सोज सीधे रूह में सरायत कर जाता है। जी हाँ, मरहूम मुकेश साहब। यूं तो बंदिशों और फिल्मी दस्तूर में हमने उनकी गायकी के कई रंग मुलहजा किए हैं, मगर जब वो गैर फिल्मी महफिलों की जान बनते हैं तो उनका मिजाज एक अलहदा ही शक्ल अख्तियार कर लेता है। शायर शिव कुमार सरोज के इस बेहद नफीस और मुकद्दस कलाम को जब किशोर देसाई की मखमली धुनों का साथ मिला और उस पर मुकेश साहब ने अपनी बेसाख्ता सादगी बिखेरी तो हुस्न इश्क की लाजवाब दास्तान मुकम्मल हुई। तसव्वुर की इंतहा तो देखिए, जहां महबूब के लबों की सुर्खी के आगे गुलाब भी अपना वकार खो देता है, वहां उनकी जुल्फों के साए में गहरी स्याह रात भी मात खा जाती है। अल्फाज की ये पाकीजगी और सुरों का ये ठहराव आज के इस पुरकशिश माहौल को और भी हसीन बना देता है। तो आइए सुनते हैं और डूब जाते हैं मुकेश साहब की इस रूहानी गजल के दरिया में। मिसरा पेश खिदमत है। तेरी अदा पे फिदा, तेरी अदा पे फिदा, हम तो क्या जमाना है, निसार तुझ पे मेरे दिल का ये खजाना है। तेरे शबाब से बढ़कर शबाब क्या होगा। फिर कहते हैं, तू मुस्कुराए तो जाती बहारें आ जाएं, दिले बीमार को फिर से करार आ जाए, तेरे करम का किसी से हिसाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू ला जवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। आपकी नजर।

सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। सदियां गुजरी, फूल खिले थे जीवन की अंगनाई में। आ जाती हैं यादें जिनकी, जाने क्यों तन्हाई में। अश्कों के खामोश लबों पर आज भी एक अफसाना है। फिर कहते हैं, रातों का सन्नाटा जैसे समझाता हो राज कोई। यूं लगता है कि आज कि जैसे देता हो आवाज कोई। ना जाने तकदीर में दिल की, ना जाने तकदीर में दिल की कब तक ठोकर खाना है। जिसने दिल को आंसू बख्शे, गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है, अब तक इसका दम भरता है, दिल भी क्या दीवाना है। इस मुकद्दस सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है उस पाकीज़ा आवाज को, जिसमें छाई हुई खामोशी भी हजारों अफसाने बयां कर देती है। जी हाँ, रेशमी आवाज वाले मरहूम तलत महमूद साहब। तलत साहब की गायकी में जो एक रेशमी लर्जिश और नफासत है, वो सीधे रूह के तारों को छेड़ देती है। शायर जफर गोरखपुरी के इन पुरअसरार अल्फाज को जब मौसिकार सी के चौहान ने अपनी जहीन धुनों में ढाला, तो गम और तन्हाई का एक ऐसा हसीन साया वजूद में आया, जो दिल को अपनी आगोश में भर लेता है। तसव्वुर कीजिए, जब आधी रात के सन्नाटे में ऐसा महसूस होने लगे, कोई गुमशुदा सी आवाज़ हमें पुकार रही हो, तब दिल की बेबसी और तकदीर की ठोकरों का ये जिक्र और भी मुअस्सर हो जाता है। ये एक ऐसी दीवानगी है जहाँ दर्द ही दिल का सबसे अजीज सरमाया बन बैठता है।

तो आइए तन्हाइयों के इस पुरकशिश आलम में डूब जाते हैं और सुनते हैं तलत महमूद साहब की आवाज में ये बेहद सोज और गुदास से भरी नायाब गजल, जिसने दिल को जिसके बोल हैं, जिसने दिल को आंसू बख्शे गम जिसका नजराना है, अब तक इसका दम भरता है दिल भी क्या दीवाना है आपकी नजर।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस पाकीज़ा सफ़र में अब वक्त हो चला है उस अजीम फनकार के हुनर को सलाम करने का, जिनके सुरों की पुख्तगी और गायकी का मियार मुकद्दस तरीन माना जाता है। जी हाँ, सुरों के सरताज मरहूम मन्ना डे साहब। अमूमन मन्ना डे साहब की आवाज़ में हमने हर मिजाज के गीत सुने हैं, मगर जब वो खुद अपनी ही बनाई बंदिशों में ढलते हैं तो उनकी गायकी का एक अलहदा और नहायत संजीदा रूप सामने आता है। मशहूर नगमाकार मधुकर राजस्थानी के इन पुरसर और हसीन अल्फाज को जब मन्नादा ने अपनी जहीन मौसिकी से संवारा तो बिछड़ते हुए हुस्न और टूटे हुए ख्वाबों की एक मुकम्मल तस्वीर उभर आई। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब सुहाग और मोहब्बत की निशानी वो पाकीज़ा मोती नथली से जुदा होता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता, बल्कि दिल का सारा धीरज और आँख की पूरी कायनात रो पड़ती है। सुरों की ये नफासत और इस अल्फाज की रवानगी आज के इस माहौल को दर्द से सरोबार कर रही है। तो आइए समातों को इस लाजवाब मौसीकी के हवाले करते हैं और सुनते हैं मन्ना डे साहब की इस बेहद नायाब पेशकश को। फरमाते हैं, रूप की अंगिया अंग में लागी, कैसे छुपाए लाज अभागी, लाज अभागी। मनवारे कहे आज, मनवारे कहे आज, भोर कभी ना होती रे। कजरारी अखियां रह गई रोती रे।

दोस्तों, अल्फाज और एहसास तक की हमारी पुरसोज महफिल में अब वक्त हो चला है। उस मसीहाए आवाज़ के हुजूर में अकीदत पेश करने का, जिनके सुरों में कायनात का सारा सोज और सुकून सिमट आता है। जी हाँ, सरजमीने मौसीकी के बेताज बादशाह मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने जब गैर फिल्मी महफिलों का रुख किया तो उन्होंने अल्फाज को सीधे रूप का लिबास पहना दिया। अजीम शायर राजा मेहदी अली खान साहब की इस बेहद पुरअसर और शिकस्ता दिल कलाम को अजीम मौसिकार मदन मोहन साहब की पुरदर्द धुनों का साथ मिला तो तन्हाई और हिजर की एक ऐसी इंतहा वजूद में आई जिसे सुनकर आंखें अश्कबार हो जाती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि जब महबूब के जुदा होने के बाद जिंदगी का हर लम्हा एक भारी पहाड़ जैसे लगने लग जाए और फिर मौत का इंतजार ही आखिरी आस बन जाए, तब दिल की बेबसी किस कदर गहरी होती है। रफ़ी साहब की आवाज़ का वो धीमा ठहराव और दर्द की ये पाकीज़गी आज की इस शाम को एक अलहदा ही सोच से सरोबार कर रही है। तो आइए तन्हाई के इस बेहद हसीन और मुकद्दस आलम में डूब जाते हैं और समायत फरमाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की ये नायाब गैर फिल्मी गज़ल। फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, फूल खिले तो यूं लगे फूल नहीं ये दाग हैं, तारे फलक पे यूं लगे जैसे बुझे चिराग हैं। फिर कहते हैं चांद घटा में छुप गया सारा जहां उदास है, कहती है दिल की धड़कनें तू कहीं आस पास है, आके तड़प रहा है जो तेरे बगैर पाऊंगा हर शय में कमी तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर।

तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, तुम जो आए तो बहारों पे शबाब आया है, इन नज़ारों पे भी हल्का सा नशा छाया है। अपनी आँखों का नशा और भी बढ़ जाने दो। दोस्तों, हमारी अगली पेशकश गवाही दे रही है सरजमीन मौसीकी की उस अजीम फनकार के आखिरी नजराने की, जिन्होंने बरसों तक हिंदुस्तानी संगीत की तकदीर को संवारा। जी हाँ, मौसीकी शहंशाह मरहूम नौशाद साहब। फिल्म ताजमहल का ये शाहकार नौशाद साहब के उस फन का आखिरी चिराग है जिसकी रोशनी कभी मध्यम नहीं हो सकती। अजीम शायर नक्श लायलपुरी साहब के इस बेहद हसीन, नाजुक और रोमानियत से लबरेज़ कलाम को जब नौशाद साहब की

मुकद्दस धुनों का साथ मिला और उस पर हरिहरन साहब ने अपनी सोजो गुदास भरी मखमली आवाज का जादू बिखेरा तो हुस्न और इश्क की एक मुकम्मल और अमर दास्तां वजूद में आ गई। तसव्वुर की इंतहा तो देखिए, जहां महबूब की जुल्फों के साए में और शाने पर बिखराने की जिद में जिंदगी का हर दर्द, यहाँ तक कि मौत का खौफ भी खूबसूरत हो जाता है। हरिहरन साहब के सुरों की ये नफासत और लफ्ज़ों की ये पाकीज़गी आज की इस ढलती शाम को एक बेहद पुरकशिश और रूहानी एहसास से सरोबार कर रही है। तो आइए तसव्वुर के इस पाकीज़ा रंग में डूब जाते हैं और सुनते हैं हरिहरन साहब की आवाज़ में ये लाजवाब पेशकश। फरमा रहे हैं, सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, सुर्ख होंठों पे गुलाबों का गुमा होता है, कैसा मंजर हो जहां, ऐसा मंजर हो जहां होश कहां रहता है। ये हंसी होंठ मेरे होंठों से मिल जाने दो, अपनी जुल्फें मेरे शानों पे बिखर जाने दो, आज रोको ना मुझे हद से गुजर जाने दो आपकी नजर।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस रूहानी सफ़र के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ पहुँचे हैं और आज की इस आखिरी पेशकश के लिए हम याद कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ को जिसने हर धड़कन को जीना सिखाया। जी हाँ, बेहद अज़ीज़ मरहूम के साल 2008 के एल्बम हम सफ़र से ली गई ये पेशकश के फ़न का वो मुनफरिद रंग है जहाँ उनका मिजाज पूरी तरह से गज़लियत के सांचे में ढल जाता है। शायर महबूब खान के इन रूहानी अल्फाज को जब के साहब ने खुद अपनी मखमली धुन और अपनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा तो दिल की गहराइयों में उतरने वाली एक लाजवाब इबादत मुकम्मल हुई। ये एक ऐसा सूफियाना एहसास है जो आज की इस महफिल को मुकम्मल सुकून की तरफ ले जा रहा है। तो आइए समायतों को इस आखिरी नजराने के हवाले करते हैं। सुनिए के साहब की आवाज़ में ये रूहानी गज़ल। जिंदगी जख्म सही तू मगर मरहम है, जिंदगी जख्म सही तू मगर मरहम है, दर्द है दिल में अगर तू मगर हमदम है। आपकी नज़र।

तो दोस्तों सुरों और अल्फाजों का ये पाकीज़ा कारवां जो आज हमारे अजीम फ़नकारों की गैर फिल्मी गज़लों के साए में शुरू हुआ था, अब अपने अंत तक पहुंच रहा है। वक्त की पाबंदी और घड़ियों की सुइयां अब हमसे विदा लेने का तकाजा कर रही हैं, मगर यकीन मानिए ये सुर, ये शायरी और इन अजीम आवाज़ों का सोज हमारे दिलों के दरीचों में हमेशा रवां रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस शाम ने आपके दिलों को सुकून का एक नया एहसास बख्शा होगा। अब वक्त हो चला है आपसे रुख्सत लेने का, कल फिर इन्हीं रूहानी लहरों पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जज्बातों के कुछ नए अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की लहरों पर। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। अब इजाज़त दीजिए, शबा खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: घर सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: સાંજે 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM. किसान साथियों एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टांटिया भील 90.8 FM में जावा की आवाज। किसान साथियों जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। साथ ही रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यह प्रयास रहा है कि हमारा झाबुआ का किसान कृषि विज्ञान में आ रही नई से नई योजनाओं को, नई से नई तकनीकों को समझे और उसे अपने खेतों में उसका प्रयोग करे और इससे उन्नत पैदावार ले सके। साथ ही उन्नत किस्मों के बीजों के बारे में हमारा किसान जाने और हमारी कृषि में नए से नए बदलाव ला सके। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM. हमारा यह हमेशा से सहयोग रहा है कि हमारी रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की टीम हमारे किसानों के साथ ही साथ उनके साथ 1-to-1 के माध्यम से भी हमारे किसानों समस्याओं को जाना है। साथ ही फोन कॉल के माध्यम से भी हमारे किसान हम तक अपनी समस्याओं को पहुंचाते हैं। तो हमारा रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम एक्सपर्ट को आप तक पहुंचा सके, एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचा सके और हमारी जो उन खेती है उसमें विभिन्नता ला सके, उनमें उन्नति ला सके और उसे और बेहतर से और अधिक बेहतर बना सके। तो यही हमारा प्रयास है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम जानेंगे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा झाबुआ का किसान न केवल खेती बल्कि पशुपालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन में कहीं ना कहीं जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। किसान साथियों मुर्गी पालन एक अच्छा और कम लागत में होने वाला एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। तो किसान साथियों कहीं ना कहीं हमें कुछ बातों का अगर हम ध्यान दे ले तो हमें अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में किसान साथियों हम जानेंगे कैसे हमें मुर्गी का देखरेख करनी चाहिए, मुर्गी पालन, मुर्गी पोल्ट्री फार्म हमें कैसे खोलना चाहिए और हमें इसमें क्या क्या योजनाओं के लाभ मिल सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे।
2: मुर्गी पालन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में काफी अच्छे स्तर पर किया जाता है, किस तरह से ये हमारे किसानों के लिए अच्छी आय का स्रोत बन सकता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
3: भारत में मुर्गी पालन का विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। पिछले 5 दशक में यदि हम देखें तो मुर्गी पालन एक उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है और आज भी हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पूरे उत्पाद की बात यदि हम करते हैं तो भारत का 3rd नंबर पर स्थान है अंडा उत्पादन में और 5वें नंबर पर स्थान है मुर्गी मांस उत्पादन में। इस समय भारत में कुल मिलाकर 851 मिलियन पोल्ट्री मौजूद हैं और जब मैं पोल्ट्री शब्द का प्रयोग करता हूं जिसे हिंदी में कुक्कुट भी कहते हैं तो इसमें मुर्गी और जापानी कोयल या जापानी बटेर, गिनी फाउल, बत्तख और जो भी व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने की क्षमता रखती हैं बर्ड्स या पक्षी वो सब कुक्कुट में एक समूह के रूप में शामिल होते हैं
2: जी।
3: तो इस समय हमारे किसान भाई बहुत अच्छी तरह लाभान्वित हो रहे हैं और ये आय को बढ़ाने का एक बहुत ही सुदृढ़ तरीका है बहुत ही सक्षम एक टूल के रूप में इसको देखा जाता है पोल्ट्री का,
2: एक बहुत तो अच्छा जरिया बनकर सामने आ सकता है हमारे किसानों के लिए अगर वो अच्छी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं। देखिए आप खेती किसानी के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को भी अपनाते हैं काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है आपके लिए। शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट है, आइए आपको दिखा देते हैं।
4: मुर्गी पालन व्यवसाय को कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मुर्गी पालन के लिए कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी और साफ हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दे उसे हर दो दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जला कर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुए, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
2: देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी मुर्गी पालन पर, किस तरह से आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है अभी आपने जाना है, विशेषज्ञ से भी हम कार्यक्रम के दौरान जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, बरसात का मौसम चल रहा है, कई इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश है और लेकिन कहीं कहीं काफी हम अब कमी भी देख रहे हैं इसमें, लेकिन हमें सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए जब बात आती है हमारे पशुओं की, तो कौन सी वो मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए इस मौसम में खासतौर पर हमारे पशुओं के लिहाज से, क्या कहना चाहेंगे?
5: किसान भाइयों को जो बरसात के मौसम में पशुओं का जो ध्यान रखना है, उनका प्रबंधन करना है, वो मुख्यतः चार हिस्सों में अगर हम इसको देखें तो ये है। सबसे पहले है जो आहार का प्रबंधन कैसे करें, आवास का प्रबंधन कैसे करें, स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करें, और जो इसमें मुख्यतः जो दुधारू पशु है उनसे हमें दूध जो मिलता है ना, तो दूध दोहने का प्रबंधन कैसे करें। तो ये चार चीजों का प्रबंधन अगर हम अच्छे से करेंगे तभी हम पशु से जो है वो बहुत फायदा ले पाएंगे। तो आहार प्रबंधन की जब बात करते हैं जो पशु में सबसे मुख्य है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है कि पानी बहुत होता है, घास जो है वो चारा जो है वो बहुत मात्रा में उपलब्ध होता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उस चारे को वो बहुत कच्चा होता है, तो उसको जब पशु खाता है, उससे पहले जब बरसात का मौसम नहीं था तो पशु के जो पेट में वो अलग तरह की क्रियाएं थी, वो उसको अलग तरह से पचा रहा था, लेकिन जैसे ही वो कच्चे घास खाता है जिसमें पानी ज्यादा होता है तो पशु का जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से पशु को दस्त लग जाते हैं, और एक बार जब पशु बीमार हो जाता है तो उससे फिर पशु का जो दुग्ध उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है।
2: जी, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे जो पशुपालक है वो संतुलित मात्रा में आहार का यहाँ पर सेवन हमारे पशुओं को कराएं ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे इस बरसात के मौसम में। किस तरह का संतुलन यहाँ पर हमारे आहार में हमारे पशुओं के लिए करना है इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, हम आपको वो दिखा देते हैं।
4: इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बरसात हो रही है, ऐसे में बरसात के मौसम में पशुओं को खास देखरेख की जरूरत होती है, क्योंकि पशुओं को किसान का धन माना जाता है और गांवों में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासकर दुधारू पशु होते हैं, इसलिए पशुओं पर ध्यान दें। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोंटू व मुंह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है, इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें और बाड़ी की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़ी की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए, लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सप्ताह में एक या दो बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं, इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशु को बरसात में सुपाच्य संतुलित आहार दें, जिसमें 60% गीला व हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। पशुओं की बाड़ी की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़ी के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें।
2: तो जाना अभी आपने कि किस तरह की सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, इसके बारे में विशेषज्ञ से लगातार जानकारी लेंगे। लेकिन यहां पर पहले डॉक्टर सक्सेना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपने बताया कि अगर हमारे जो पशुपालक हैं वो मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ते हैं तो काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है उनके लिए, लेकिन जरूरी है कि पहले वो निश्चित कर लें कि उन्हें अंडे के लिए उत्पादन लेना है या फिर मांस के लिए। तो ये निर्णय लेना कितना जरूरी हो जाता है, कितना महत्वपूर्ण है जब मुर्गी पालन के व्यवसाय से हमारे पशुपालक जुड़ रहे हैं?
3: देखिए, इसमें दो तीन मुख्य बातें हैं। एक तो जो पशुपालक भाई हैं उनके पास जमीन कितनी है, उनके पास जो उनका इनकम का स्रोत है या उनके पास जो कैपिटल कहलाता है, धन कितना है, धनराशि कितनी है और उनके आसपास किस तरह का बाजार उपलब्ध है, इसकी थोड़ा सा उनको जानकारी अपने पास रखनी चाहिए
2: जी।
3: जिसके आधार पर यदि वो छोटे स्तर का बिजनेस करना चाहते हैं तो शुरुआती तौर में इसका मांस का उत्पादन करना आसान रहेगा, क्योंकि अंडा उत्पादन यदि करते हैं तो छोटे स्तर पर अंडा उत्पादन करने में बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। अंडा उत्पादन के लिए यदि व्यवसायिक स्तर पर किया जा रहा है तो थोड़े बड़े स्तर का अंडा उत्पादन करने में ही फायदा होता है, जबकि मांस उत्पादन में एक साल में कई साइकिल ली जा सकती हैं, क्योंकि प्रति 5 सप्ताह में नया मतलब एक पुराना हैच निकलकर 1 सप्ताह का उसे विराम देने के बाद कुल 6 सप्ताह में एक साइकिल को कम्प्लीट करके नया ग्रुप चूजों का डाला जा सकता है। तो इससे बार बार आपको रिटर्न मिलता रहेगा और आप पर बहुत ज्यादा धन का नहीं आएगा।
0: जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर डॉक्टर साहब ने। आइए किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर कोई पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो क्या इसे आर्थिक सहायता मिल सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को।
3: मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो यदि आप मुर्गी पालन अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप एक ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग के लिए आपके नजदीक में ही, बाराबंकी के नजदीक में ही बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ साल में कई बार ट्रेनिंग के प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं। आप उनके निदेशक महोदय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, तो आपको उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, उसकी वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। साथ ही साथ वहां पर जो वैज्ञानिक हैं वो आपको आर्थिक सहायता के लिए भी उसके जो प्रोजेक्ट तैयार करना है, जिसे डीपीआर या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, जिससे आपको बैंक से लोन लेने में मदद मिलेगी, उस तरह के प्रोजेक्ट भी आपको बनाने में मदद कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्ट आपको आपके अनुसार, जो आप पे जमीन उपलब्ध है, आप कितने बड़े स्तर का कार्य, अपना ये कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर आपको देंगे, जिससे आपको बैंक में लोन आसानी से मिलेगा। और इसके साथ साथ वो आपको बैंक से लोन दिलाने में भी आपको, जो एक आजकल बहुत एक शब्द चल रहा है, हैंड होल्डिंग, आपका हाथ पकड़कर चलने वाली बात, वो शुरू में आपको काफी मदद करते हैं। और एग्री बिजनेस भी एक आईसीआर के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, जिसके जरिए जितनी भी हमारी तकनीकियां हैं जो किसानों को लाभान्वित कर सकती हैं, वो उस एग्री बिजनेस के जरिए भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, स्वयं उनको करके देख सकते हैं संस्थान के अंदर। और उस ट्रेनिंग का यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा और विशेषज्ञ आपको वो प्रोजेक्ट बना के देंगे तो आपको बैंक से लोन मिलने में आसानी रहेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कुक्कुट नीति भी है, जिसमें आप अंडा के लिए और मांस के लिए यदि कोई फार्म खोलना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी सब्सिडी मिलती है। कुक्कुट के विषय में यदि आपको इसमें और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर इसका पूरा प्रोफार्मा उपलब्ध है, पूरी जानकारी उपलब्ध है। कई तरीके की इसमें सब्सिडी है, जमीन पर सब्सिडी है, बिजली पर सब्सिडी है, पानी पर सब्सिडी है, तो काफी आराम से आप इस व्यवसाय को कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल। तो देखिए जितेंद्र जी, आपके जो सवाल था यहाँ पर कि किसी तरह की आर्थिक मदद के बारे में आप जानना चाहते थे, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से आपको बता दिया है कि किस आप दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्रशिक्षण यहाँ पर जरूर ले लें, बहुत जरूरी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, श्री नारंग जी, उनका सवाल छान लेते हैं। हेलो।
6: हेलो,
2: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
6: मैडम, हमारा जैसे गाय है, हमारे पास जर्सी गाय
2: जी,
6: तो दूध कम देती है, उसका दूध बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
2: दूध जो है कम दे रही है, उसका दुग्ध उत्पादन आप बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना है, क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार आप इस संदर्भ में?
5: जी, जहाँ तक जर्सी गाय की बात है, तो ये ज्यादा दूध, अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय है, तो इसके लिए हमें इसके आहार के प्रबंधन की सबसे मुख्यतः इसमें है, वो है आहार प्रबंधन। जी। तो आहार प्रबंधन के लिए जब इसमें बात की जाती है, तो इसमें जो है बरसात के मौसम से अगर इसको, वैसे भी अगर हम दूध ज्यादा हमें बढ़ाना है, तो उसमें जो कंसंट्रेट है, जो दाना है, उसका मुख्यतः हमें ख्याल रखना होता है। तो अगर पशु का हरा चारा और सूखा चारा और कंसंट्रेट का अगर ये मात्रा जो है सही मात्रा में नहीं होगी, तो पशु का दूध जो है वो नहीं बढ़ेगा। अगर मुख्यतः गाय 10 लीटर से ज्यादा का दूध दे रही है, तो 3 किलोग्राम के आसपास दाना जो है वो एनिमल को एक मुख्यतः देना ही देना है। उसके अलावा वो जितना ज्यादा दूध दे रही है, 6-7 किलो दूध के अलावा, तो हर एक केजी दूध के ऊपर हमने 2 से 2 किलो दाना उसको देना है। तो इस तरह से मुख्यतः अगर देखा जाए, जो जर्सी गाय है उसमें अगर वो 10 लीटर दूध दे रही है, तो उसमें 4 केजी के आसपास हमें उसमें दाना उसको देना है। और उसके अलावा 30 से 40 किलोग्राम दिन भर में उसको हरा चारा भी देना है, और 5 से 6 किलोग्राम के आसपास जो है वो सूखी तूड़ी उसको साथ में देनी है। तो इस तरह से अगर हम आहार का मिश्रण इस तरह से रखेंगे, तो हमारी गाय जो है वो प्रतिदिन जो है वो दूध जो है वो अच्छे से देगी। इसके साथ साथ हम अगर इसमें देखें, तो एनिमल के आहार में नमक है, खनिज लवण है, वो 30 से 40 ग्राम, और नमक जो है वो 20 से 30 ग्राम, उसका भी हमने उसमें मिश्रण करना है। तो इस तरह से अगर ये मिश्रण हम करेंगे, तो एनिमल के दूध पे जरूर उसमें वृद्धि होगी।
0: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें थोड़ा सा जरूरी है कि हम हमारे पशुओं के आहार में कुछ बदलाव लाएं, थोड़ा खनिज इसमें डालें, थोड़ा सा नमक का प्रयोग करें, ताकि हमारा जो पशु है, ना केवल उसके दूध में वृद्धि होगी, और वो पानी, अगर हम नमक थोड़ा सा पानी में, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आटा भी हम डाल के उनको देते हैं, तो वो उनकी जो क्षमता है, पानी पीने की क्षमता है, वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो अमूमन से कुछ ज़्यादा ही पानी पिएंगे। और किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडिया 90.8 FM के साथ।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। तो किसान साथियों, जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं पशुओं से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: पशुओं में बरसात के मौसम में एक बहुत ही मुख्यतः समस्या रहती है किसान भाइयों को, तो इस समस्या के निवारण के लिए मैं कहूँगा कि जब बरसात के मौसम में पशु जहाँ पे रहता है उसके आसपास जब पानी इकट्ठा हो जाता है, एक तो उसको इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि मुख्यतः क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, मक्खी होते हैं, उनके जो लार्वल स्टेजेज होती हैं वो वहाँ पे पनप जाती हैं और फिर मुख्यतः जो है वो मच्छर और मुख्यतः जो है वो पशु को तंग करती हैं। तो इसमें मुख्यतः एक तो यह है कि पानी इकट्ठा ना होने दे, अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है तो उसकी निकासी करें या उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल या फिनाइल वगैरह डालते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो भी उनकी लार्वल स्टेजेज हैं वो पनपे ना। और जो एक मुख्यतः जो दवाई मिलती है ब्यूटॉक्स नाम से, है ना, जिसमें डेल्टा मेथियोन होता है, वो 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के वो भी आप पशु को लगा सकते हो। तो इसमें और जो चीचड़ों की बात की है उसका अगर छिड़काव करेंगे इस दवाई का तो चीचड़ जो है वो कम होंगे। और मुख्यतः जहाँ पे आप पशु का आवास है वहाँ का जो वहाँ की जो दीवारें हैं उसमें छिद्र होते हैं जिसमें जो है चीचड़ वगैरह वो चले जाते हैं, तो वहां पर भी इस दवाई का छिड़काव करना है, जिससे कि वहां पर भी जो चीचड़ वगैरह होते हैं तो वो मर जाए और पशु के शरीर पर न जा सके। तो इस तरह से आपको इसका समाधान करना है।
3: जी बिल्कुल। तो विजय कुमार जी, किस तरह से आपको प्रबंधन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। पढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी क्या समस्या है आइए जान लेते हैं। हेलो।
4: हाँ जी,
3: नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपका सवाल क्या है राकेश कुमार जी, पूछे।
4: जी
3: राकेश कुमार जी, आप टीवी पे ध्यान मत दीजिए, सीधा अपना सवाल हमसे पूछिए।
4: जी मैडम, मऊ जिला प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। पहले से पोल्ट्री फार्म जैसे चला रहा हूँ 1 साल से
3: जी।
4: तो मैं जो है सर अभी लीज पे लेके फार्म चला रहा था, अब अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या उसके लिए कोई अनुदान वगैरह सरकार की तरफ से कोई योजना योजना है?
3: जी डॉक्टर सक्सेना क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में?
5: सवाल दोबारा दोहराएंगे, मैं
3: लीज पर लेकर के पहले पोल्ट्री फार्म चला रहे थे, अब खुद का फार्म ये लगाना चाहते हैं।
5: पहले किसका चला रहे थे?
3: लीज पे लिया हुआ था, लेकिन अब ये खुद का फार्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए किसी तरह की अनुदान राशि सहायता इनको मिल सकती है?
5: अगर आप पहले से पोल्ट्री फार्म लीज पर चला रहे थे तो आपको पूरा अनुभव होगा कि किस तरह से उसका रखरखाव किया जा सकता है और किस तरह से उसको बढ़ाकर बेचा जा सकता है मांस के लिए या अंडे के लिए। तो इसमें आप अनुदान राशि का, जैसे मैंने पहले सवाल में ही बताया, बैंक हैं, कई सारे बैंक हैं जो इस समय लोन की व्यवस्था है, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश से आप हैं, उत्तर प्रदेश में पहले से ही कुक्कुट नीति नाम की एक योजना मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें लोन भी दिया जाता है और बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाती है। आप व्यापक रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाकर, या किसी अपने जो संपर्क में यदि आपके कोई वहाँ पशु चिकित्सक हो, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के यदि कोई चिकित्सक आपके एरिया में आते हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको इस विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। उनका पूरा इसमें प्रिंटेड प्रोफार्मा है जिसे भरकर आप और किसी विशेषज्ञ द्वारा एक प्रोजेक्ट बनवाकर, मैंने आपको पहले बताया केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली में है जहां से आप ये प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, और भी आपको बहुत सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, उसका लाभ आप उठाकर ये राशि लोन या ऋण ले सकते हैं।
3: जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जैसे डॉक्टर सक्सेना यहाँ पर हमारे कॉलर्स इच्छुक हैं कि वो कुछ इसकी शुरुआत भी करना चाहते हैं, कई जुड़े भी हुए हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी हो जाता है जैसे आपने पहले कहा प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण का कितना महत्व है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को?
5: प्रशिक्षण का हर कार्य के लिए, जो भी नया कार्य आप शुरू कर रहे हैं उसमें प्रशिक्षण के साथ यदि आप कार्य करते हैं तो उसका एक अलग ही आपको उसका असर दिखाई पड़ेगा। पड़ेगा। बिना चीजों को जाने, बिना चीजों को समझे यदि आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसमें हानि होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। यदि आप समझकर चीजों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो ये निश्चित है कि आप उसमें आने वाले खतरों को भी जानेंगे, उनसे कैसे बचना है उसको भी जानेंगे। जैसे प्रबंधन की व्यवस्थाएं किस तरह करनी है, आपको खान पान किस तरह रखना है, किस मौसम में किस तरह का प्रबंधन करना है, कहाँ से दाना चारा सस्ता उपलब्ध हो सकता है, कैसे अपने खुद आप दाना चारा बना सकते हैं, पक्षी का भी पशु का भी, वो सब व्यवस्थाएं यदि आपको पहले से पता हो तो आप एक तो लागत कम करेंगे और दूसरा आप अच्छी तरह से उसको जब प्रबंधन करेंगे तो आपको फायदा अधिक होगा। बहुत सारी चीजें हैं जब आप प्रशिक्षण करेंगे। तो मैं दो एक चीजें यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा। बहुत सारे किसान भाई समझते हैं यदि कम जगह में ज्यादा मुर्गी या ज्यादा पशु भर देंगे तो हमारा उत्पाद बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कम जगह में आप ज्यादा पक्षी भर देंगे तो वहां पर बजाय फायदे का आपको नुकसान होगा। एक तो वो लोग ढंग से पक्षी दाना नहीं खा पाएगा, पशु भी नहीं खा पाएगा यदि ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो, और दूसरा वहां पर उनके उत्पाद पर भी असर पड़ेगा। उत्पादन बजाय बढ़ने के उनका उत्पादन कम हो जाएगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, यदि आप इनको जानकर समुचित व्यवस्था करते हैं कि कितने क्षेत्रफल में कितने पक्षी रखने हैं या कितने पशु रखने हैं तो पशु भी आराम से पलेगा और आपको उत्पादन भी अच्छा देगा।
1: किसान साथियों, समय के साथ हो रहे परिवर्तन को देखते हुए हमारे पशुओं में भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां आजकल देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, यहां पर जरूरत है हमें एक प्रशिक्षण की। हमें एक प्रशिक्षण कहीं ना कहीं से हमें लेना बहुत जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र इसमें हमारे लिए बहुत ही सहयोगी साबित हो सकता है। साथ ही आप कुछ एनजीओस के माध्यम से भी इन प्रशिक्षण को ले सकते हैं। तो किसान साथियों, प्रशिक्षण लेने से हमें यह फायदा होगा कि हम समय पर हमारे पशुओं को समय पर उसका कौन सी दवाई देना है, साथ ही हमें किस तरीके से हमारे पशुओं का रखना चाहिए आदि जानकारियों से आदि जानकारियां हमें पता होगी तो हम उसके हिसाब से हमारे पशुओं की देखरेख कर पाएंगे।
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, यहां पर हमारे किसान का सवाल था कि जब गाय भैंस जो जनती है उसके बाद जो जेर गिरता है वो पशु खुद से खा जाता है, इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या पशु बीमार हो सकता है। तो आइए जानते हैं और लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: मुख्यतः तो हम सबसे जो जरूरी है वो यही रखना है कि मोस्टली जो है यानी कि 6 से 8 घंटे में जो पशु जो है वो जेर गिरा देता है तो उस समय हमें इसका ध्यान रखना है कि अगर पशु ऐसा कर लेता है, अगर पशु जेर को खा लेता है तो सबसे ज्यादा इसमें यही मुख्यतः ध्यान रखना होता है कि जितना जल्दी हो सके हम डॉक्टर के पास उसको ले जाएं, फिर एंटीबायोटिक से या जो भी दवाइयां उस समय लगती हैं पशु को इस टॉक्सिसिटी निवारण के लिए तो उससे फिर बहुत राहत मिलती है और पशु जो है मुख्यतः आ जाता है वापस खाना खाने लगता है।
1: जी हाँ किसान साथियों, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है पशुओं के साथ तो आप जल्द से जल्द पास के पशु स्वास्थ्य केंद्र में उसको लेकर जाएं और वहां पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको दवाई देंगे और जिससे पशु को हम बचा सकते हैं। इसमें कोई पशु को जो दिक्कत होने से हम उसमें राहत मिल जाएगी, उसमें जो दवाइयां मिलेगी आप समय समय से उन्हें दे सके अपने पशु को खिला सकते हैं और इससे निजात पाया जा सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: डॉक्टर नरेंद्र जी ने बताया इसमें सेप्टिक होने का डर रहता है, अंदर किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह पनप सकते हैं और उससे पशु ज्यादा बीमार पड़ सकता है तो तुरंत ही इसमें एंटीबायोटिक वगैरह लगाने से
3: एंटीबायोटिक का कोर्स यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द हमारे दोनों विशेषज्ञों की यही सलाह है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, समय बिल्कुल मत गवाइए। जैसे आप कह रहे हैं रात के समय ऐसा हुआ है तो बिल्कुल भी आप समय यहाँ ना गवाइए। बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर सक्सेना आपके पास ही आना चाहूँ। आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे फायदे हो सकते हैं हमारे पशुपालकों को मुर्गी पालन के व्यवसाय से, तो शुरुआत प्रशिक्षण के बाद का कदम क्या होगा शुरुआत करने के लिए?
5: प्रशिक्षण के दौरान जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर या प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण लेते हैं तो वो प्रशिक्षण भी अलग अलग तरीके के दिए जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा और इसको विस्तृत रूप में बताना चाहूंगा। जैसे मुर्गी पालन के संबंध में ही मैं हम लोग दो तरह के क्या बल्कि अब तो तीन तरह के मुर्गी पालन हो गए, एक तो अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ, एक मांस उत्पादन से जुड़ा हुआ और तीसरा बैकयार्ड पोल्ट्री जिसको कहते हैं, जिसे ग्रामीण पोल्ट्री या पिछवाड़े घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली पोल्ट्री व्यवस्था भी कहते हैं। तो तीन तरह के प्रशिक्षण अलग अलग दिए जाते हैं, इनके कोर्स भी अलग अलग स्पेशली चलते हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, वो जो भी विषय विशेषज्ञ हैं उस ट्रेनिंग में जाएं जिसमें वो व्यवसाय करना चाहते हैं। यदि अंडे का व्यवसाय करना चाहते हैं तो अंडा उत्पादन से जुड़ी ट्रेनिंग में जाएं, यदि कुकुट मांस का उत्पादन करना चाहते हैं तो ब्रायलर की ट्रेनिंग में जाएं, यदि उनके पास पूंजी कम है और वो छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो बैकयार्ड पोल्ट्री के प्रोडक्शन के ट्रेनिंग में जाएं। तो इसमें आपको शुरुआत से लेकर नस्ल किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अंडा उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं और मांस उत्पादन से जुड़ी नस्लें बिल्कुल अलग हैं, उनकी जानकारी दी जाएगी, कहां से आपको अच्छा बीज उपलब्ध हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी पशु या पक्षी व्यवसाय में उसकी नस्ल है, यदि नस्ल अच्छी है तो उसका उत्पादन बढ़िया होगा।
3: जी,
5: नंबर दो पे आता है दाना पानी खान पान।
3: जी, दाना पानी के बारे में जानेंगे लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं फिर आपका यहाँ पर रुक करेंगे कि दाना पानी और खान पान का व्यवस्था किस तरह से करनी है। गुजरात से हमारे साथ इस वक्त कमलेश जी फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए।
6: सर हमारा सवाल है कि अभी बरसात के मौसम में
3: बरसात के मौसम में क्या जानना चाहते हैं?
6: बरसात के मौसम में ये पशु है ना हमारे, वो कम पानी पीते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या पिए, ऐसा क्या करना चाहिए?
3: आपके जो पशु हैं वो पानी पीना कम कर देते हैं बरसात के मौसम में, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था आपको करनी है? डॉक्टर कुमार क्या कहना चाहेंगे हमारे कॉलर को?
2: बरसात के समय में जो पशुओं का आवास प्रबंधन है उससे मुख्यतः ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस समय जो है आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए अगर आपने आवास को अच्छे तरह से आवास में सूखा रखा है, आराम दे रखा है, पंखे लगाए हैं, खिड़कियां वगैरह का अच्छे से प्रबंध है और आर्द्रता उसकी जो है वेंटिलेशन अच्छा है तो कम हो जाती है, तो इससे पशु जो है स्ट्रेस में नहीं होगा। तो पशु को सामान्यतः जितना पानी पीना होता है तो वो उतना पानी पिएगा। अगर पशु इसमें बरसात के मौसम में आर्द्रता के कारण अगर पशु स्ट्रेस में आता है तो पशु जो है वो पानी पीना कम कर सकता है। तो इसके लिए मुख्यतः यही है कि आप अपने आवास का प्रबंधन करें, अपने आवास को अच्छे से उसका वेंटिलेशन हो, उसमें पंखे लगे हों, उसकी खिड़कियां अच्छे से खुली हों, तो इस तरह से आप जो है पशु फिर जो है वो आराम से जो जितना पशु को चारा जितना पशु को पानी चाहिए होता है वो पशु उसमें पीता है।
3: जी, तो इस तरह से आप आवास का प्रबंधन सही कीजिए। देखिए पानी पीने कम पीने की जो समस्या यहाँ पर आ रही है वो अपने आप दूर हो जाएगी यहाँ पर कमलेश जी। तो देखिए ऐसी ही जानकारियाँ
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे थे बरसात के दिनों में पशुओं की देखरेख और साथ ही आप सुन रहे थे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: वेटनरी कॉलेज भी बहुत सारे हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया आपको उनके जो एक्सटेंशन डिवीजन है जो उनके विश्वविद्यालय के और जो प्रोफेसर लोग हैं वो इस कार्य में इनकी काफी मदद कर सकते हैं क्योंकि सरकार की जो भी नीतियां हैं उसमें किसानों की हैंड होल्डिंग करना या उनको शुरुआती तौर में इतनी मदद करना कि वो अपना व्यवसाय खुद खड़ा करने में सक्षम हो सकें। ये सारे विश्वविद्यालय और हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं उनमें जो हम लोग कार्यरत हैं वो सब किसान भाइयों के लिए समर्पित है और काफी हद तक इवन बैंक में जाकर भी जो बैंक के मैनेजर हैं या बैंक के अधिकारी हैं उनसे वार्तालाप करके किसानों की जो भी दिक्कतें हैं उसको सुलझाने में उनकी बहुत मदद करते हैं। तो मैं इनको ये सुझाव दूंगा कि अपने आसपास के किसी पशु विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय या पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जैसे मैंने बताया जबलपुर में भी है उनके प्रोफेसरान से बात करें उनके जो एक्सटेंशन के डिवीजन के जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे बात करें तो उससे जरूर उनको मदद मिलेगी। बाकी बैंक से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं उसकी यदि ये जानकारी बताएं तो उन्हें और अच्छी तरह से सलाह दी जा सकती है कि बैंक इनसे किस चीज के कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है जो ये नहीं दे पा रहे हैं या जिससे इनका लोन मिलने में परेशानी हो रही है। तो इस तरह से ये अपने कार्य को थोड़ा सा सुलझा सकते हैं।
3: वहां पर संपर्क करके पूर्ण अपनी जानकारियां वहां पर दे करके आप इस जो आपकी समस्या है उसमें समाधान आप हासिल कर सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं बिल्कुल आपकी मदद के लिए ही बैठे हैं तमाम विश्वविद्यालयों में तमाम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं यहाँ पर जितने भी कार्यरत अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। आप उनका भी संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं उनके साथ भी आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे कॉर कॉलर मार्च से यहाँ पर मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो
4: हेलो
3: नमस्कार हरीश जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका
4: जी?
3: अपना सवाल पूछिए।
4: ये हमारा सवाल है कड़कनाथ मुर्गे जैसे हमने 100 लाए थे तो उसमें से 85 हो पाए बड़े
3: जी 85 ही बड़े हो पाए हैं।
4: हाँ
3: जी
4: 100 लाए थे मतलब
3: जी
2: 100 में से 85
4: हाँ
2: तो आपने छोटे चूजे लिए होंगे जहाँ से भी आप
4: चूजे 100 लाए थे तो 50 बचे मतलब
2: 100 में छोटे एक दिवसीय चूजे लाए थे या थोड़े बड़े लाए थे?
4: छोटे लाए थे एक दिन दो दिन के वेटनरी कॉलेज से लाए थे।
2: देखिए
4: तीन दो
2: मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा जो आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन में छोटे चूजों का प्रबंधन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा जटिल भी है। यदि वहाँ आपसे कोई चूक होती है तो उसका असर आखिर तक रहता है उसमें मृत्यु दर भी बढ़ सकती है उनकी जो बढ़वार है वो भी कुप्रभावित हो सकती है अच्छी तरह से उनमें बढ़वार नहीं आएगी। यदि दाना और उनका रख रखाव जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यदि कम जगह में ज़्यादा चूजे रख दिए मुझे ये नहीं ज्ञात है कि आपने किस तरह की व्यवस्था दी कितने एरिया में कितने चूजे रखे क्योंकि आमतौर पर जो देसी मुर्गियां हैं जो आप कड़कनाथ बता रहे हो उसमें मृत्यु दर काफी कम होती है। जो हमारी व्यावसायिक रूप से जो हाई यील्डिंग या जिनमें उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है उस तरह के जो स्ट्रेन है जो बाजार में मिल रहे हैं वो तो मृत्यु दर उसमें बनिस्पत ज्यादा होती है देसी मुर्गियों के मुकाबले। तो देसी मुर्गी में मृत्यु दर कम होती है मगर आपकी काफी ज्यादा 50% मोर्टिलिटी हो जाना काफी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन में कोई दिक्कत रही या जहां से आपने चूजे खरीदे वहां से वो कोई बीमारी लेके आए जो आपकी नॉलेज में नहीं थी और इस बीमारी की वजह से वो चूजे मरे। तो जहां से भी आप चूजे खरीदते हैं बहुत आवश्यक हो जाता है कि उस संस्था से या उस संस्थान से आप पूरी जानकारी लें कि इन्हें कौन कौन से टीके लग चुके हैं या ये किस व्यवस्था में रह रहे थे और इन्हें आगे क्या व्यवस्था, किस एज पर क्या खाना दाना दिया जाना है, ये सब जानकारी यदि उपलब्ध करके आप आएंगे तो आपको इसमें पालन करने में मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि टीका लगा हुआ है, आपने टीका नहीं लगवाया और वो उसकी उम्र पे आके वो बीमारी उसको पकड़ेगी और उससे मृत्यु दर बढ़ेगी। अब बीमारियां भी बहुत सारी होती है ना, न्यूकासल डिजीज है जिसमें रानीखेत डिजीज जिसको कहते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा मृत्यु दर हो जाती है। तो यदि आपने कोई टीके लगाने में चूक करी उसकी वजह से मृत्यु दर हो सकती है, साफ सफाई में कोई आपकी गलती हुई वहां बीमारी फैल सकती है, या आपने कम जगह में ज्यादा चूजे उनके रख दिए तो आवासीय प्रबंधन में आपके चूक हुई वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप प्रशिक्षण यदि लेके काम करते हैं
3: लेंगे तो ये सब तमाम जो समस्याएं हैं ये आगे आएंगी, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि इस समय में ये इस तरह की समस्या आ सकती है, तो पहले ही आप उसके लिए तैयार रहेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे विशेषज्ञ लगातार यहां से कह रहे हैं प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है, आप शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले जानकारी आप जरूर हासिल कर लीजिए।
2: एक चीज और है, प्रशिक्षण लेने में जहां से भी आप प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको संस्थान से एक नाता जुड़ जाता है। मैं भी बहुत सारे प्रशिक्षण में खुद शामिल रहा हूं, तो जो भी हमारे किसान भाई आते थे, आप यकीन मानिए आज तक मैं जबकि उस संस्थान को छोड़ चुका हूं दिन भर उनके फोन मेरे पास आते रहते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत वो अपने जो भी विषय के विशेषज्ञ हैं उनको फोन।
0: जी हाँ किसान साथियों, प्रशिक्षण लेने से न केवल हमें जानकारी मिलती है लेकिन हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, हमारा एक अध्यापक और शिक्षक के बीच में जैसा जुड़ाव हो जाता है वैसा एक जुड़ाव आपके साथ आप बना सकते हैं, केवीकी के साथ जो आपके ट्रेनर है उनके साथ एक अच्छा जुड़ाव बना कर सकते हैं। और साथ ही जब भी आपको कोई भी समस्या आती है, आप जब भी आपका मन हो जब भी आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें राय ले सकते हैं, ना केवल पशुओं को लेकर बाकी अन्य जो जिस भी खेती के जिस भी पड़ाव में आपको तकलीफ आ रही है आप उसमें उनको फोन लगा के पूछ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दोहरा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहु बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, बरसात के समय में अक्सर क्या हमारा जो पशु है वो अधिकतर बीमार हो जाता है, पानी थोड़ा सा कम लेने लगता है, आर्द्रता की वजह से जो उसका चारा है उसमें नमी ऐसी आ जाती है और हरा चारा खाते ही वो दस्त करना शुरू कर देता है, तो इन सब समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं और कैसे हमें बरसात के समय में हमें कैसे इन सब पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
5: है अगर किसान भाई ने संतुलित आहार, उसके आवास का प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन अच्छे से नहीं रखा है, तो अगर ये घास वगैरह पशु को डालते हैं और वो कच्ची घास है तो उसमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से पशु का पेट जो है वो भरा भरा रहता है और उसका पेट में जो किण्वन क्रिया होती है तो वो जो है वो एक सुचारू रूप से नहीं हो पाती है, जिससे उसका दूध उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई को चाहिए कि पशु का जो आहार है वो संतुलित मात्रा में दें, उसमें जो है सूखा चारा 40% रखें और जो हरा चारा है वो 60% उस और साथ में जो है वो दाना रखना है उसको। तो इस तरह से अगर पशु के जो आहार की अगर प्रबंधन रहेगा तो पशु का दूध जो है वो कम नहीं होगा। तो इसमें मुख्यतः आप अगर पशु ज्यादा दूध देने वाला है तो उसको जो है मेंटेनेंस के साथ साथ, अगर गाय है तो 1 लीटर अगर 6-7 kg दूध के अलावा और दूध देता है पशु, तो 1 लीटर दूध के अलावा उसमें जो है वो 1 किलोग्राम दाना जो उसको और ज्यादा देंगे, और भैंस के केस में अगर वो 3 लीटर दूध
2: अच्छी नस्ल। अब हम देसी पशु की बात करते हैं, जैसे किसान भाई ने पहले भी एक प्रश्न उठाया था, तो देसी पशु में कुछ जो हमारी देसी नस्लें हैं गायों की, जैसे गिर है, साहिवाल है, कांकरेज है, ये देसी नस्लें स्थापित नस्लें हैं, इनके बारे में पता है, इनका दूध अच्छा है
3: जी।
2: मगर हम सबको देसी में गिन लेते हैं, बहुत सारी नस्लें वो मिक्सचर हो गई हैं, उनमें कोई नस्ल नहीं है, वो सब मिला जुला हो गया है तो उनका दूध उत्पादन उतना अच्छा नहीं है। उनके दूध उत्पादन की हम ये आकांक्षा ना करें कि ये भी उतना ही दूध देंगी जितनी कि एक स्थापित नस्ल की जैसे कांकरेज या साहिवाल या गिर की गाय दूध दे रही है, उतना दूध वो नहीं दे पाएंगी। यदि हम एग्जॉटिक जिसे हम बाहर की विदेशी नस्लों को यदि रख रहे हैं उनमें दूध उत्पादन अच्छा है, मगर उनके साथ साथ उनका रखरखाव भी अच्छा है। पहला बिंदु नस्ल, दूसरा बिंदु दाना पानी और उसका आवासीय प्रबंधन, तीसरा उसका रोगों की उसका रोग निदान और रोगों की रोकथाम, और चौथा आपको आजकल की जो हम चर्चा में बहुत ज्यादा शामिल है बायोसिक्योरिटी
3: जी,
2: कि हम बीमारी को आने ही ना दें, इस तरह की व्यवस्था साफ सफाई की रखें कि बीमारी पशुओं तक पहुंचे ही ना
3: जी।
2: ये सब चीजें यदि आप करते हैं, अब जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि बरसात के समय में पशु में दूध उत्पादन कम हो जाना है, नरेंद्र जी ने भी बताया कि इसमें पशु कई बार स्ट्रेस में आते हैं
3: जी।
2: एक तो आर्द्रता बढ़ जाती है वातावरण में, और दूसरे टेम्परेचर भी बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है, गर्म भी होता है कई बार, गर्मी के साथ साथ आर्द्रता जब बढ़ती है तो हमारे शरीर पर कोई भी वो जीव हो उसके शरीर पर बहुत ज्यादा दबाव आता है
3: जी।
2: हमारी ताप नियंत्रण की क्षमता से भी कई बार वो आगे बढ़ता है, तब इवन मृत्यु दर बढ़ने की तक की बात आ जाती है। तो इसमें वो सब परिस्थितियां जिनमें तापमान में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, ऊपर नीचे हो रहा हो बहुत ज्यादा, उसकी आर्द्रता एटमॉस्फेयर की घट बढ़ रही हो, उस समय आपको बहुत सचेत रहना है और गंदगी बिल्कुल नहीं होने देनी है। मक्खियां आएंगी, मक्खी पशु को परेशान करती हैं, वो दाना खाना नहीं खाता ठीक से तो उसका दूध को प्रभावित होता है। यदि आपको कोई भी लक्षण दिखता है, सबसे पहले किसी भी पशु को यदि रोग होता है या उसमें कोई परेशानी होती है, वो दाना खाना छोड़ता है यदि और अपने हर्ट से अलग हो जाता है। यदि ऐसी कोई भी अवस्था आपको किसी पशु में दिखती है तो तुरंत आप उसको पशु चिकित्सा संपर्क करके उसको दिखाएं,
3: बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए जरूर ध्यान में रखिए हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जगदीश जी आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जगदीश जी क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप?
6: मेरा सवाल नहीं है, यहाँ मैं मुर्गी पालन करना चाहता हूँ।

0: सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा बीमारी उसमें रहेंगी ना। पशुपालन ठीक से कर पाएंगे आप, ना पक्षी का पालन ठीक से कर पाएंगे, और उत्पादन आपका बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो ऐसी जगह पे कृपया आप,
1: तो ऐसी जगह में यहाँ पर मुर्गी पालन करने की सलाह नहीं दी जा रही है। देखिए,
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: कहना चाहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित किस तरह की सावधानियां बरतनी है हमारे यहाँ पर पशुपालकों को?
3: जी, बरसात के मौसम में जो स्वास्थ्य प्रबंधन है पशु का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है तो मौसम बहुत ही सुहावना होता है, ऐसे मौसम में मच्छर, मक्खी, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु जो है तो बहुत मात्रा में जो है पैदा होते हैं। तो अगर पशु का जो टीकाकरण आपने नहीं कराया है बरसात के मौसम से पहले, तो आपका पशु जो है वो गंभीर बीमारी के संक्रमण से प्रभावित हो सकता है। तो मुख्यतः सभी राज्य सरकारें FMD का जो मुंह खुर रोग है, इसके लिए टीकाकरण की व्यवस्था है। तो बरसात के मौसम से पहले ये टीकाकरण कराएं, और अपने पशु का इस बात से भी ख्याल रखें कि अगर बरसात के मौसम में आपका पशु जो है वो ज्यादा हरा चारा खाता है तो उसका पेट में जो है दस्त लग जाते हैं, तो ज्यादा पानी की वजह से, तो ऐसी स्थिति में जो है वो पशु का उत्पादन जो है वो कम हो सकता है।
1: तो इस तरह से स्वास्थ्य का प्रबंधन भी हमारे जो पशुपालक हैं वो कर सकते हैं। देखिए, बरसात के मौसम में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आहार, आवास, स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन का यहाँ पर प्रबंधन सही तरीके से करें, तभी हमारा पशु जो है वो स्वस्थ रहेगा और हमारे को आर्थिक लाभ उससे मिलता रहेगा। बिल्कुल,
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન। આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં, એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। તો કિસાન સાથીઓ, આજ કે ખેતીબાડી કાર્યક્રમ મે આપને खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। आपने जाना कि बरसात के समय में अधिकतर हमारे पशुओं बीमार होने की संभावनाएं अधिकतर होती है, तो बरसात के समय में हमें कैसे इनका ख्याल रखना चाहिए, क्या खाना इनको देना चाहिए, कौन सी बीमारियां होती है और उन बीमारियों में हमें इनका रख रखाव, इनकी देख रेख कैसे करनी चाहिए आदि जानकारियों को आपने जाना किसान साथियों। साथ ही किसान साथियों, अभी जो बारिश का मौसम है इसमें मौसम में बदलाव आएंगे और आपको भी आपकी सेहत का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता है किसान साथियों। आप हमारी खेती के साथ साथ हमारे पशुओं के साथ साथ अपना भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। और अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ छावा की आवाज, रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारामा अने कमाई ना बारामा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारामा अने कमाई ना बारामा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भीलनो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों रेडियो टंट्याबिल 90.8 FM में। आशा करते हैं आप सभी किसान साथी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे।

0: होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छपवा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी प्रोग्राम के माध्यम से आप तक हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचा सके, जिससे आजीविका में सुधार कर सकें, साथ ही अपनी कृषि भूमि में हो रहे बदलावों को समझ पाएं और अपनी कृषि संबंधी जो भी समस्या है उन्हें हम तक पहुंचा सके। साथ ही हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके लिए नई से नई तकनीकी की कृषि को आपके परीक्षण आपको दें, उसके बारे में आपको जानकारी दें और इसके लाभ हम कैसे ले सकते हैं, कहां से इसका लाभ लेना चाहिए आदि जानकारियां को आप तक पहुंचाने का हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है। साथ ही हमारा किसान भाई भी हमें फोन कॉल के माध्यम से हमारे रेडियो स्टेशन पे आकर भी अपनी समस्याओं को अब तक हमारे साथ साझा करते आया है और हमारे रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की यही प्रयास रहा है कि हम उनकी समस्याओं को एक्सपर्ट के माध्यम से उस समस्याओं का हम निदान कर सके। तो किसान साथियों, आज पुनः हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज पुनः हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और हमारा जो यूथ है, हमारा जो किसान है, वह इस जानकारी को लेकर अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकता है और अपने व्यवसाय के साथ ही अपनी खेती में भी सुधार कर सकता है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज का खेती बाड़ी कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु है वह यह है कि उन्नत कृषि के लिए हमें कृषि यंत्रों का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर हम कृषि यंत्रों का सहारा लेते हैं तो इसमें हमें क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे आदि जानकारियों को हम जानेंगे। वैसे तो हम बता दें कि अगर कृषि में हम यंत्रों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा किसान है, अभी अधिकतर जो किसान है, हमें मजदूरी के लिए किसानों की बहुत समस्या देखने को मिलती है। हमारा खेत जब तैयार हो जाते हैं तो समय पर हमारी फसल को निकाल लेना बहुत ही आवश्यक होता है और समय समय पर जो हमारी कृषि है, कृषि में समय समय पर उचित समय पर दवाई का छिड़काव करना, उसकी कटाई, उसकी बुआई आदि चीजों में एक समय जो होता है, समय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो किसान साथियों, हमें अभी बदलते ही समय में मजदूरों की कमी हमें साफ नजर आती है, तो इस समस्या से हमारा किसान काफी जूझ रहा है कि कैसे हम कम मजदूरों में अधिक से अधिक काम करवा सके, तो यहाँ पर इसका हमको लाभ मिलता है कृषि यंत्रों से। तो आइए जानते हैं कैसे कृषि यंत्रों से हमें किस तरीके से लाभ मिल सकता है और कैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए आदि जानकारियों को हम जानेंगे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: खरीफ फसलों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम पूरी खेती की बात करें तो कृषि यंत्रों का उपयोग किस तरह से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है?
3: जैसा कि किसान भाई जानते हैं और वो इस चीज को फील भी किए हैं कि जो अभी किसानी रही है, जो भी हम खेत में काम करते हैं, अभी हमारे पास मजदूर अवेलेबल नहीं रहते हैं। हम देखें कि गांव से जूं-जूं मजदूरों ने शहर की ओर जाना शुरू किया, वहां पे उनको जो नौकरी का या वहां पे जो काम का समाधान मिला, उस हिसाब से जो गांव में खेती रह गई उसके लिए हमारे पास मजदूरों की अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो उसमें अब हमारे किसान भाई जान चुके चुके हैं कि सिर्फ यंत्रों से ही हम जो आगे की खेती है इसको बढ़ावा दे सकते हैं, नहीं तो खेतों में मजदूरी से अभी वो वक्त नहीं है कि हम उस हिसाब से खेत से फायदा पा सके। इसलिए हमारे किसान भाई
2: धीरे धीरे समझने लगे हैं यंत्रों का उपयोग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पहले मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब मजदूरों की उपलब्धता कम होती जा रही है, जिसके चलते किसानों को नुकसान भी हो रहा है, मुश्किलें भी हो रही हैं। ऐसे में कृषि यंत्रों का जो उपयोग है हमारे किसानों का काम आसान कर रहा है। तो और किस तरह से हमारे किसानों को ये सहूलियत पहुंचा रहा है, कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं, बताएंगे इनके बारे में। लेकिन उससे पहले एक हमारी रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं।
4: कृषि यंत्रों ने खेती को काफी आसान बना दिया है। इनके इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मशीनों ने खेती को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, सरकार भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती है। प्लांटर की बात करें तो इस यंत्र का इस्तेमाल बीजों को एक निश्चित बीज की दूरी पर पंक्तियों में बुआई के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग फसल के बीजों के लिए अलग अलग प्लेटों और स्प्रो किटों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कल्टीवेटर का इस्तेमाल जुताई के बाद खेतों में ढेलों को तोड़ने और मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र का इस्तेमाल कतार युक्त फसलों में निराई के लिए भी किया जाता है। अगर हम जुताई के काम की बात करें तो इसके लिए रिवर्सिबल 2 बॉटम और 3 बॉटम के MB फ्लो है, जो मिट्टी की काफी अच्छी जुताई करते हैं। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के साथ पलटते भी हैं। मिट्टी पलटने से खरपतवार नीचे दब जाते हैं और बाद में कार्बनिक खाद का काम करते हैं। वहीं ट्रैक्टर खेती के काम को बहुत आसान बना देता है। इसकी मदद से खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, फसल की कटाई और ढुलाई के काम आसानी से हो जाते हैं। इसके साथ दूसरे कृषि यंत्रों जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर, थ्रेसर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर ड्रिल को जोड़कर खेती के काम कर सकते हैं।
2: तो जाना आपने कृषि यंत्रों के बारे में, जिनका उपयोग करके आप अपनी खेती किसानी को आसान बना सकते हैं, काम को आसान बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। अब खरीफ फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। खरीफ फसलों का यहां पर बुआई का समय भी है, हमारे किसान काफी खेतों में लगे हुए हैं। तो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जो हमारे किसानों को बिल्कुल मदद कर सकते हैं, रिपोर्ट में भी हमने देखा है, आपसे भी जानना चाहेंगे।
3: जैसा कि अभी बारिश का मौसम है और अभी इस बारिश के पानी से हमारे जो किसान लोग हैं वो खेत की तैयारी में लगे हैं कि बुआई करनी है। ज्यादातर किसान लोग इस मौसम में हम देखते हैं कि धान लगा देते हैं। अगर हम धान की बात करेंगे तो धान की बुआई के लिए ट्रांसप्लांटर है, जो ट्रांसप्लांटर सेल्फ प्रोपेल्ड भी रहता है या राइडिंग टाइप भी रहता है। तो अभी लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे एरियाज में पानी की किल्लत है, तो वहां पे ट्रांसप्लांटिंग के बदले डायरेक्ट सीडिंग, जो हमारे किसान लोग डायरेक्ट बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट सीडर है या इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर है। और अगर हम बात करेंगे छोटे किसान की, उनके लिए भी यंत्र है, वो चाहे तो बुआई कर सकते हैं ड्रम सीडर से या प्री जर्मिनेटेड पैडी सीडर से। तो ये चारों वो बुआई कर सकते हैं इससे या ट्रांसप्लांटिंग ट्रांसप्लांटर से कर सकते हैं। तो किसान जिस हिसाब से अपने खेत को तैयार, अगर वो नर्सरी के लिए तैयार है तो ट्रांसप्लांटर इस्तेमाल करें, नहीं तो डायरेक्ट सीडर इंक्लाइंड प्लेट
2: से कर सकते हैं। तो देखिए, अगर धान की खेती आप करना चाह रहे हैं तो कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, इनके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसात का मौसम है, ऐसे में खुद से काम करने में या मजदूरों से काम करवाने में दिक्कतें आती हैं, ऐसे में आप यंत्रों का इस्तेमाल कर लेंगे तो फायदा होगा। बरसात के मौसम में जैसे आपने कहा कि यंत्रों का आप इस्तेमाल करते हैं, बारिश आ जाए, ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं?
3: जैसा कि हम देखते हैं कि जो किसान लोग जिनके पास यंत्र रहते हैं, बारिश की वजह से उन यंत्रों में पहली बात है कि यंत्र के खराब होने का, उसमें जंग लगने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। तो मैं यहाँ पे अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो भी यंत्र आप इस्तेमाल करते हैं इसको प्रॉपर तरीके से हाउसिंग करना जरूरी है, जब भी आपने रख रखाव करना की जरूरी है। जैसा कि आप हम देखते हैं कि अक्सर घरों में हम जो मोटर कार या बाइसिकल रहता है उसको तो हाउसिंग करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला यंत्र रहता है हमारे खेत पे, जिसे हम पूरा रोजगार लेते हैं उसको हम बाहर रख देते हैं, तो उससे क्या होता है किसान ने जो उसको 50,000 लगाया है, 1,00,000 लगाया खरीदने में, वो 4-5 सालों में बारिश की वजह से खत्म हो जाता है,
2: खराब हो जाता
3: है। तो इसलिए यहाँ पे किसान भाइयों को पहली सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जो भी यंत्र आपके पास है उसको प्रॉपर तरीके से मोम जाम से, या अगर आप कोई शेड बना सकते हो उसमें हाउसिंग करके उसमें स्टोर कर, जब भी आप खेत पे ले जाओ उसके बाद वापस घर के सामने उसको हाउसिंग करना है। इसी तरह अगर ट्रैक्टर की बात करें, बहुत सारे किसान लोग जिनके पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में भी क्या रहता है कि अगर आपने ट्रैक्टर को सीधे बाहर रख दिया ऐसे ही इस बारिश के मौसम में, उसकी बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं उसमें खासतौर प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर को भी सही अंदाज से स्टोर करने का, घर में हाउसिंग करके बाहर हाउसिंग करना बहुत ही जरूरी है। और उसके अलावा भी हमारे किसानों के पास बहुत सारे जैसे सीड कम्फर्टिलाइजर ड्रिल है, या जहां जाम होने का चांस रहता है वहां पे किसानों को जरूरी है कि कम से कम, अगर पूरी मशीन नहीं, कम से कम उस एरिया को वो कवर कर पाए, उस मशीन के उस हिस्से को वो कवर कर पाए, तो वो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है।
2: जहां पर आशंका रह सकती है कि जंग लग सकता है पानी पड़ने से, तो ऐसे में पूरी मशीन नहीं तो उस छोटे से ही भाग को आप ढककर जरूर रखें। देखिए आपके पास कोई भी यंत्र है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना भी बहुत जरूरी है। आप खुले में बरसात में यूं ही छोड़ देंगे तो खराब हो सकता है। आपने इतना पैसा लगा के कोई चीज ली है, आपके काम की चीज है, अगर हम उसकी देखभाल ढंग से नहीं करेंगे, रख रखाव ढंग से नहीं करेंगे, तो नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप हमारे किसानों को ये बताएं, आपने ये तो बता दिया कि किस तरह से रख रखाव करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए जब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरह से ध्यान रखें खुद के लिए भी और यंत्रों के लिए भी, क्या सावधानी बरतें इस्तेमाल करते समय।
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहाँ पे किसान भाइयों को मैं ये फिर से आगाह करना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे गांवों में बहुत सारे जोखिम इसी वजह से होते हैं कि जब भी कोई यंत्र हम खेत पे इस्तेमाल करते हैं हम उसका ख्याल नहीं रखते। जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई मामूली सा फावड़ा भी यूज करेंगे तो पैरों में जूता नहीं पहनते, तो उससे कभी कभी क्या होता है जो फावड़ा है पैर में लग जाता है, और इतने दूर खेत में काम करते हुए वहां पे जो हम बोलते हैं फर्स्ट एड वो भी नहीं होता है, तो उससे जख्म और बढ़ जाता है। तो पहले मैं किसान भाइयों को बोलूंगा कि या जो भी आप यंत्र यूज करते हैं पहले अपने प्रोटेक्शन देख लीजिए। जैसे अगर आप स्प्रे करते हैं तो नाक को ढक के रखना है, मुंह को ढक के रखना है। अगर आप कोई यंत्र जो तेज है उसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने जो पैर है, हाथ है, इनमें पैरों में गम बूट्स यूज करना है और हाथ में ग्लोव्स इस्तेमाल करना है। इसी तरह हमारे बहुत सारे किसान भाई थ्रेशर चलाते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, थ्रेशर चलाते समय हमारा जो किसान है काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि कभी कभी उसे ख्याल ही नहीं रहता है, जल्दी के चक्कर में वो कभी कभी उनके बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके उंगलियां कट चुकी है, बहुतों के हाथ कट चुके हैं, तो इस प्रकार की कई जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। और यहाँ पर हम डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं हमारा जो किसान है वो बाजार से सारे ये उपकरण तो ले लेता है, कृषि यंत्रों को ले लेता है, बल्कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है कहीं पर भी, ये इसके प्रशिक्षण केंद्र अभी तक तो हमें नहीं दिखाई पड़े हैं। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कृपया कर हमें बताएं। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: और रही बात सावधानियां बरतने की, हम देखते हैं कि जो तमाम घरों में चैप कटर है, जो चारा काटने की मशीन है, अक्सर इंजरी हमारे जो गांवों में इस चैप कटर के जरिए होती है, बच्चा उसमें अटक जाता है, ब्लेड से कट जाता है या चारा काटते समय हाथ आगे चला जाता है वहां कट। तो आजकल हम देखते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने उसके लिए कवरिंग डिवाइस बनाए हैं। आप चारा काटने की मशीन को देखो, उसके लिए एक सिंपल लॉक आता है, उसको आप बंद कर सकते हैं, या अगर वो ब्लेड है उसके ऊपर कवरिंग है ताकि उसके साथ अगर कोई छेड़खानी भी करेगा तब भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी जो इंजरी होती है जिससे ज्यादा नुकसान होता है वो है जहां पे कहीं पे रोटरी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हमारा रोटावेटर है या थ्रेशर है, जहां पे घूमने वाला उसका जो शाफ्ट होता है उसमें अक्सर हमारे कपड़े फंस जाते हैं। जब भी हम थ्रेशर को इस्तेमाल करें, जब भी हम रोटावेटर के साथ काम करते हो, तो हमको अपने जो कपड़े हैं ज्यादा कपड़े लूज कपड़े नहीं पहनने चाहिए,
2: ढीले
3: कपड़े नहीं, ये याद है। इसी तरह जब हम धराती यूज करते हैं, हाथ में जख्म आने का चांस, तो हम ग्लोव्स करके काम करें। तो ये जो मेन मैंने बताया आपको कि जो भी ज्यादा नुकसान होता है इन्हीं चीजों से होता है, और आजकल हमारे किसान ज्यादा जागरूक भी हो गए हैं, तो खासतौर कोविड के टाइम से, तो जो वहां पे आप प्रिकॉशन लेते इसी तरह खेत के टाइम में भी आप प्रिकॉशन लेते, सावधानियां बरते रहे।
2: तो बिल्कुल, तो देखिए ये कुछ यंत्र हैं जिससे यहाँ पर हम।
0: डॉक्टर साहब, हमारे एक किसान का ये सवाल था कि हमें कितने उपकरण रखना चाहिए, हमें बुआई के लिए अलग, फिर कटाई के लिए, उसके साथ गुड़ाई के लिए आदि के लिए काफी यंत्र हैं, तो हमें उनमें से कौन सा यंत्र रखना चाहिए, इसको लेकर हमारे एक किसान का सवाल था। तो कृपया हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें।
3: आजकल के डेट में इतना यंत्र रखने की कोई जरूरत नहीं
2: जी।
3: आप कोशिश, क्योंकि हमारे अक्सर किसान छोटे किसान हैं, आजकल गवर्नमेंट जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर से हमारे किसान भाई मशीन ले, क्योंकि हमारे किसान भाई बहुत, उनके पास खेत छोटे हैं, तो अगर वो कोई नई मशीन खरीदे, इतनी मशीन खरीदेंगे तो फायदा कहां से लेंगे
2: जी,
3: ये तो मैं। अब उनका जो सवाल है कि इसके अलावा कौन सा भी यंत्र हम रखें, ये हमारे किसान भाई कौन सी खेती करते हैं उसके हिसाब से, उस पर निर्भर करता है। अगर वो धान की खेती करते हैं, आप डायरेक्ट सीडेड प्लांटर रख सकते हैं या ड्रम सीडर रख सकते हैं। अगर आप मक्का की खेती करते हैं तो मक्का के लिए आपके पास मक्का के लिए प्लांटर आता है अलग से। अगर आप हाइब्रिड सीड यूज करते हैं मक्के में, तो उसके लिए एक स्पेशल जो, जिसको हम एडवांस इक्विपमेंट बोलते हैं, न्यूमेटिक प्लांटर, तो आप न्यूमेटिक प्लांटर रख के या उसको लाके खरीद के दूसरे किसानों के इस्तेमाल के लिए भी दे सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: में हम बात कर रहे थे जिससे सबसे ज्यादा चोट लगने का खतरा रहता है, हमारे पास चारा काटने की मशीन होती है, थ्रेशर होता है, रोटावेटर होता है, या और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम ट्रैक्टर के साथ किसी मशीन को जोड़ते हैं उसके पीछे आदमी आ जाता है
2: जी।
3: तो जब भी ट्रैक्टर को हम चलाएं उसके पीछे किसी भी आदमी के आने से हमको बचना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन जोड़ते हैं बीच में आदमी आ जाता है ट्रैक्टर के साथ मशीन जोड़ने के समय, और तो कभी कभी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ट्रैक्टर के साथ मशीन जोड़ते हुए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बीच में या पीछे कोई भी आदमी नहीं है। बाकी जो अभी तक मैंने बताया कि चारा काटने की मशीन है, रोटावेटर, ओ हाँ, यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा कि जो थ्रेशर है उसमें जो घूमने वाला शाफ्ट होता है उसको कवर करना जरूरी है। आप घर में भी एक सिंपल जाली का कवर बना सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं ताकि उसमें कपड़ा अटक ना जाए। बाकी हम बात कर रहे थे कि ऐसे चीजों के साथ इस्तेमाल करते समय हमको जो अपने कपड़े हैं ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और जो छोटे हम यंत्र यूज करते हैं चाहे दराती हो, फावड़ा हो, उस टाइम में हमको ग्लोव्स पहनना जरूरी है। और रही बात जो स्प्रेइंग के समय, तो जो हम स्प्रे करते हैं उस टाइम क्या होता है कि जो फ्यूम्स है हमारे अंदर चला जाता है, जो स्प्रे हमारे अंदर चला जाता है, तो उसके टाइम में हमको अपने मुंह को ढकना पड़ेगा।
2: जैसे कोविड ने हमें सिखा दिया है मास्क पहनना, तो अगर आप स्प्रेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मुंह को ढक के रखें, क्योंकि सांस के जरिए ये सारे जो उसके हानिकारक तत्व हैं हमारे शरीर में चले जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8।

ఆదవాదనర దపడ లేదా

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम और आज के जो हमारे कृषि के मुख्य बिंदु हैं वो है कृषि उपकरणों को लेकर। कौन से उपकरणों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, साथ ही अगर हम उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका रख रखाव कैसा करना चाहिए, साथ ही जो उपकरणों की वजह से हमें जो चोट लग जाती है, जो हम घाव बन जाते हैं, ऐसे समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, आइए जानेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: जैसे कि जो भी यंत्र हम इस्तेमाल करें उसका सही से उपयोग तभी हो सकता है जब हमारे किसान भाई को पूरी जानकारी हो कि यंत्र कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कौन सी सावधानी बरतनी है।
3: तो इसके लिए क्या कोई प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं?
2: उसके लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। अगर किसान भाई नजदीकी केवीके से भी जुड़ के थोड़ी सी भी ट्रेनिंग ले तब भी कम से कम जो उसको फायदा मिलेगा उसमें 5-10% चेंज आएगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे जितने भी संस्थान है वो अक्सर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे जितने भी संस्थान है उनमें एक्सटेंशन का एक अलग से डिवीजन रहता है, तो उनका यही काम होता है कि जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे सिखाया जाए कि इस यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है। तो हम मेरी किसान भाइयों से यहाँ पे गुजारिश रहेगी कि वो नजदीकी केवीके से भी जुड़ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, या जो मेन संस्थान है पूसा में है या जो भी जिस शहर में आप रहते हैं वहां पे जरूर कृषि विभाग का कोई संस्थान होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी कि जो भी आपका लोकल यंत्र हो या पूरे देश में जो उसका इस्तेमाल हो उसको कैसे चलाना है। और एक बार आप वहां से ट्रेनिंग लेके उस यंत्र का इस्तेमाल कीजिए फिर आपको खुद महसूस होगा कि कितना फर्क आ गया पहले इस्तेमाल में और बाद के इस्तेमाल।
3: बिल्कुल। तो देखिए, हम कुछ भी, हम गाड़ी ही लेते हैं तो उसे भी चलाना सीखते हैं पहले, तब जाकर हम कहीं गाड़ी चला पाते हैं। ऐसा ही हमारे कृषि यंत्रों का भी साथ है। आप उसे चलाने की पहले ट्रेनिंग ले लीजिए कि किस तरह से आपको चलाना है, कब इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या सावधानी बरतनी है। जैसे हमारे विशेषज्ञ ने कहा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे तो बदलाव खुद ब खुद आप महसूस करने लगेंगे, आपकी खेती किसानी में आसानी होगी, बदलाव आपको खुद नजर आएगा। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं यहां पर सब्सिडी की, क्योंकि हमारे किसान जानना चाहेंगे जरूर कि अगर इन यंत्रों को हम ले रहे हैं, अगर इनका मूल्य ज्यादा है तो क्या हमें कोई अनुदान यहां पर मिलेगा।
2: देखिए, अगर हम बात करते हैं कृषि को, पहले हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कृषि को बोलते हैं ये स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी रियासत है वो अपने हिसाब से वहां पे जो किसानों के लिए सबसे ज्यादा यंत्र जो महत्वपूर्ण रहते हैं उसी हिसाब से उनपे सब्सिडी देता है। उसके अलावा हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी जैसे हम पराली के लिए बहुत सारे यंत्र है उनपे सब्सिडी रखा है। तो किसान भाई, एक तो ये है कि जो उनका लोकल इक्विपमेंट है, लोकल यंत्र है जो वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग यंत्र के लिए सब्सिडी है। उसके अलावा अगर हम सेंटर की केंद्र की बात करें तो वहां पे भी कुछ यंत्र है जिन पे उनको सब्सिडी मिल सकता है। उसकी जानकारी अगर वो लेना चाहेंगे जो स्टेट रियासत में जो भी यंत्र है वहां पे किस पे सब्सिडी है, वहां का जो लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है बिल्कुल वहां से आपको जानकारी मिलेगी। और जो केंद्र की है आप उनकी साइट पे जाके पूरा लिस्ट देख सकते हैं, खासतौर पर जो हम प्राली के लिए हम देखते हैं कि उसकी समस्या जो है उसके लिए बहुत सारे यंत्रों पे जो सब्सिडी है वो सरकार ने घोषणा की है उसकी, वो आप ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: देखिए जो कस्टमरिंग सेंटर है, पहले हमको देश का जो एग्रीकल्चर है उसको समझना पड़ेगा।
3: जी बिल्कुल,
2: हाँ हम समझते हैं कि लगभग 80-85% लोग हमारे जो किसान हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत है।
3: जी।
2: अगर ऐसे किसान को हम बताएं कि आप जैसे धान की फसल लगा रहे हैं, आप एक किसान है धान की फसल लगा रहे हैं, उनको बताएंगे कि बुआई के लिए ये मशीन लेनी है, आपको जमीन तैयार करने के लिए ये मशीन लेनी है, उसके बाद कटाई के लिए ये मशीन लेनी है, उसके बाद हम बताएंगे कि उसमें जो खरपतवार वगैरह के लिए ये ऐसी मशीन लेनी है, तो एक किसान को एक फसल के लिए कम से कम 10-12 मशीन रखनी पड़ेगी।
3: बिल्कुल।
2: अब एक किसान 1 हेक्टेयर उसके पास एरिया है, लैंड है, उसमें उस मशीन का इस्तेमाल 5-3 दिन ऐसे होगा, तो बाकी साल ऐसे बैठ के रहेगा, तो इसका कैसे हम फायदा बढ़ा सके इसके लिए कस्टम हायरिंग का कंसेप्ट है। कस्टम हायरिंग पे सरकार की ओर से सब्सिडी भी है कि एक एरिया में जो ज्यादा मशीनें यूज होती है उसका एक सेंटर रखें, ताकि वहां से किसान लोग वो मशीन लेके वो यंत्र लेके अपने खेत में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के हिसाब से पे करें, और उसके बाद वो यंत्र वापस कस्टम हायरिंग सेंटर पे रखा जाएगा। इसमें किसान लोग आपस में मिलके भी वो यंत्र खरीद सकते हैं, सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा उठा सकते हैं, और उसके बाद जो यंत्र है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम आज बात करते हैं कैब की जरूरत पड़ती है, हर एक के पास अगर गाड़ी नहीं है तो वो कैब बुक कर लेता है, अपने हिसाब से जहां तक जाना है पे करता है। ऐसे ही खेत में जो यंत्र इस्तेमाल होना है, कितना इस्तेमाल किया उस हिसाब से पे किया, और यंत्र वापस कस्टम हायरिंग सेंटर पे, तो किसान भाई आगे आके अपना कस्टम हायरिंग सेंटर डाल सकते हैं।
3: जी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने कस्टम हायरिंग सेंटर का यहाँ पर जिक्र किया, एक तो ये बहुत ही अच्छा है सभी किसानों के लिए, क्या युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार का अवसर बन सकता है ये?
2: बिल्कुल, इसमें जो हमारे युवा है वो आगे आके इसमें रोजगार कमा सकते हैं और दूसरों को दे भी सकते हैं, सिर्फ अपना नहीं कमा सकते। हम देखते हैं कि अगर हम एक एरिया में एक कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिश करते हैं, पहले तो ये है कि जो उसकी एक डिटेल रखेगा, एक आदमी की जरूरत है।
3: जी,
2: जो किसान लोग बुक करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, किसके यहाँ खेत पे जाना है उसके लिए एक आदमी रखना पड़ेगा।
3: जी,
2: खेत पे मॉनिटर करने के लिए एक आदमी को रखना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर है उसको भी रोजगार मिलेगा। मतलब एक कस्टम हायरिंग सेंटर से हम मान सकते हैं कि कम से कम अगर कुछ नहीं तो 3-4 लोग जुड़ सकते हैं, 3-4 लोग अपना रोजगार कमा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया में करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है ये इसीलिए है, एक तो एक साइड से किसानों को फायदा मिलता है, दूसरे साइड से कि जो हमारे युवा है वो अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपना सेंटर है, लोगों को दे सकते हैं।
3: जी,
2: तो ये जरूर
3: तो रोजगार भी यहाँ पर मिल रहा है। देखिए कितने फायदे हैं इस कदम के, एक तो हमारे किसानों को मशीनें उपलब्ध हो रही हैं, यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं जिससे वो अपने खेतों में आसानी से काम कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो ग्रामीण युवा हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। ग्रामीण ही क्यों, हम शहरी युवाओं की भी बात कर लें, आप भी इससे जुड़ सकते हैं, एक कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकते हैं जिससे न केवल आपको फायदा मिलेगा बल्कि अन्य लोगों को भी आप रोजगार दे पाएंगे और सभी को आर्थिक रूप से यहां पर बल मिल पाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कस्टम हायरिंग सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है, हमारे किसानों के फायदे के लिए ही इसकी शुरुआत की गई है। आपने जिक्र किया यहां पर कि हमारे किसान हर स्टेज पर अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने खरीफ फसलों में धान का जिक्र यहां पर किया था कि आप अगर बुआई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं तो आपको इन मशीनों की जरूरत है, आप उसके बाद भी तो मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खरपतवार आपने यहां पर कहा, खरपतवारों के लिए कौन कौन सी मशीनें इस्तेमाल करें, या तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं, उसमें बहुत समय जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, निराई गुड़ाई खरपतवार में किसानों का बहुत समय जाता है और इसको करना भी मुश्किल है, क्योंकि एक स्टेज होता है, पहले क्रॉप छोटा होता है उसमें अलग तरीके से करना है, बढ़ गया क्रॉप उसमें मशीन नहीं चल सकती है। तो अगर हम बात करेंगे खरपतवार के लिए, छोटे छोटे टूल्स आते हैं, जैसे कुछ किसान लोग हमारे कल्टीवेटर को भी यूज करते हैं बीच में, लेकिन उसके अलावा भी कौन सा क्रॉप लगाया अगर उसके बीच में जगह है तो हमारे पास छोटे छोटे जिनको हम सेल्फ प्रोपेल्ड इक्विपमेंट बोलते हैं उसके पीछे रोटावेटर, जैसे हमारे पास मक्का है, मक्का के बीच में अच्छी खासी गैप रहती है, तो उसके बीच में हम छोटे यंत्र जैसे रोटावेटर, छोटा वाला रोटावेटर छोटा ट्रैक्टर के साथ चलते हुए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे जो इसके लिए स्प्रेइंग के लिए तो हम बूम स्प्रेयर यूज करते हैं, उसके लिए बूम स्प्रेयर यूज कर सकते हैं, या छोटे किसान जो हम नैपसैक स्प्रेयर जो बैकपैक बोलते हैं
3: चलाते हैं,
2: बैकपैक बोलते हैं उसको, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ किसान जैसे धान में खासतौर पर ये समस्या रहती है कि उसमें कैसे हम इनका जो वीड निकालने के लिए, उसके लिए आप कोनो वीडर भी यूज कर सकते हैं, जो छोटे किसान अक्सर रखते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो देखिए खरपतवार एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है जब हम खेती के काम कर रहे हैं, हाथ से कब तक निकालेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाती है, समय भी काफी जाता है। ऐसे में इन यंत्रों का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल, इस समय हम बात करें तो बागों की तैयारी भी की जाती है डॉक्टर रॉफ, बागों में कौन कौन से यहाँ पर यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे किसान, इस पर क्या कहेंगे आप?
2: जैसे जो बागों की तैयारी है, जैसे हमारे पास जो बागों की तैयारी के लिए पहले अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पेड़ है उनके आसपास में जो खेत है उसको जोतने के लिए एक छोटे जो इक्विपमेंट आते हैं जिनको हम जो रोटरी इक्विपमेंट उसमें लगा रहता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बागों में ज्यादातर स्प्रेइंग का समस्या रहता है, मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि जो ड्रोन अभी आया है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रोन का, क्योंकि स्प्रेइंग करना बहुत ही मुश्किल काम है खासतौर पर बागों में।
1: और किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जानकारियां हमें मिल रही है, अगर हमें सारी मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है, और जैसे कि आप जानते हैं कि जो खरपतवार बढ़ जाती है तो छोटी खरपतवार जब हमारी फसलें छोटी होती है उस समय हमको कम अलग तरीके से उसकी निंदाई गुड़ाई करनी पड़ती है, और जब फसलें बड़ी हो जाती है तो हमें उसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारी विपरीत समस्याएं हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसी के साथ ही हमें उसके हिसाब से हमें कौन से यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए आदि जानकारियाँ आप सुन रहे हैं। इससे जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, और यहाँ पर अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों आइए जानते हैं, अगर हम हमारे बाग का अगर अपना बगीचा है उसमें अगर हम रोटावेटर चलाना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए और क्या हमें चलाना चाहिए और नहीं चलाना चाहिए आदि चीज़ों को हम जानेंगे, तो आइए सुनते हैं।
2: हम रोटावेटर का पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि
3: कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल
2: रोटावेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे हम जमीन की जुताई करते हैं आजकल अक्सर हमारे किसान भाई रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहां पे हम MB प्लो को यूज करते हैं, जहां पे हम डिस्क प्लो को यूज करते हैं, उसके बाद जो जमीन तैयार होती है अगर हम साइड में रोटावेटर करते हैं तो बहुत ही अच्छा सीड बेड तैयार होता है, मतलब उस जमीन में अच्छी नमी भी रहती है और उसमें जो हम बीज बोते हैं वो सही से निकल भी आता है। अब जो हमारे किसान भाई सवाल किए कि अनार की खेती में अगर आप रोटावेटर उसमें इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आप सही में जो अनार का पेड़ है उसके आसपास में जमीन खोलना चाहते हो तो आप उसमें रोटरी इक्विपमेंट यूज कर सकते हो, ताकि उसके आसपास जो जड़ है उनमें सही से जो भी आप फर्टिलाइजर देना चाहोगे या कुछ भी उसमें न्यूट्रिएंट डालना चाहोगे वो सही से इस्तेमाल हो, या जमीन एरेट हो जाएगी, सही से उसमें हवा का इस्तेमाल हो जाएगा। तो अनार के पेड़ के आसपास अगर आप जमीन खोलना चाहते हो तो उसके लिए आप छोटा सा जो ट्रैक्टर वाला है वो सही से नहीं आ पाएगा,
3: क्योंकि इतना जगह नहीं होगी,
2: उतना जगह नहीं होता है। सेल्फ प्रोपेल आता है जिसके पीछे आप चल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाला रोटरी इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
3: तो पेड़ के आसपास है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मिट्टी में अच्छी तरह से खाद हो चाहे उर्वरक हो वो जा पाएंगे और उससे आपकी अनार के पेड़ को ही यहाँ पर लाभ मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन छोटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं हमारे कृषि में लगने वाले उपकरणों को कैसे यह हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, साथ ही हमें ये कृषि यंत्रों का की देखरेख कैसे करनी चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें हमारा सावधानी से इसका इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ आइए थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं ड्रोन के ऊपर। हमारे डॉक्टर साहब स्टार्टिंग में हमसे बता रहे थे ड्रोन के बारे में, तो आइए जानते हैं थोड़ी सी विस्तार से इसके बारे में, आइए सुनते हैं।
2: जो ड्रोन की बात है कि जो ड्रोन है बागों में उसका बहुत ही इस्तेमाल है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो सबसे बड़ी समस्या फेस करते हैं बागों में वो है कि उसमें स्प्रे करना है। अगर हम ड्रोन की बात करेंगे कैसी भी जमीन हो, अक्सर हमारे क्या होते हैं कि जो बाग है किसी ढलवान पे होते हैं या कहीं पे कोई पेड़ ऊंचा कहीं नीचा, तो उसमें स्प्रे करना बहुत मुश्किल रहता है और टाइम का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम भी लग जाता है और जो केमिकल है जो उसमें स्प्रे पेस्टिसाइड वो भी बहुत ज्यादा जाता है, तो उसमें किसानों की जो आई है उसमें भी ज्यादा बढ़ावा नहीं होता है उसके बाद। तो इसीलिए जो ड्रोन है ड्रोन का बहुत ही उपयोग है उस बाग खेतों में, उसमें हम ड्रोन को इस्तेमाल करके किसी हाइट पर रख के ड्रोन से
3: अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं और एक सीमित मात्रा में ही छिड़काव होता है, जितना जरूरी होता है उतना ही छिड़काव होगा, आपकी लागत में भी यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब बढ़ोतरी नहीं होगी, लागत में कमी ही आएगी इससे। और कौन कौन से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने रोटावेटर के बारे में तो बता ही दिया कि कैसे उसका फायदा ले सकते हैं, ड्रोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से यंत्र हैं?
2: जैसे अभी हमारे किसान भाई कुछ जो यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम खरीफ की बात करेंगे अगर वो मक्का लगाते हैं तो कुछ लोग हम देखते हैं कि जो ये मक्का है इसमें, मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूंगा कि अगर बहुत ही पानी है उससे भी इसमें प्रॉब्लम आती है, उससे भी इसका जो प्रोड्यूस है कम हो जाता है, और अगर ज्यादा खुश्क जमीन है तो उससे भी आता है। तो हमारे कुछ किसान भाई उसमें क्या कर देते हैं, एक फरो बना देते हैं और बेड पे प्लांटिंग करते हैं, तो वहां पे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि वो वहां पे बेड प्लांटर का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो या रिजर्व प्लांटर भी बोलते हैं उसका इस्तेमाल करके आप साइड में नाली भी बनेगी और वहां पे बेड पे प्लांटिंग भी होगी। या अगर हमारे किसान भाई, कुछ लोग किसान भाई आजकल मेज यूज करते हैं हाइब्रिड मेज, उसमें आप न्यूमेटिक प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो सीड है हाइब्रिड सीड बहुत ही महंगा रहता है, उसमें हमारे किसान भाई अगर नॉर्मल प्लांटर से प्लांटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा सीड जाता है
3: जी।
2: तो उसमें और डैमेज भी होता है सीड, उससे अच्छा है कि आप वहां पे न्यूमेटिक प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं उन किसान भाइयों को कहना चाहूंगा जो धान के बदले मक्का लगाते हैं, जहां पानी की कमी होती है वहां पे अक्सर लोग हमारे मक्का लगा देते हैं। इसी तरह अगर आप बागवानी में है कि उसको तैयार कर रहे हो, आपके लिए सबसे अच्छा है कि जो पेड़ है उसके आसपास में जमीन को तैयार करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है रोटरी इक्विपमेंट, क्योंकि आपको बाग के आसपास पेड़ के आसपास घूमना है और वहां पे जमीन को तैयार करना
3: है, इसके लिए ये यंत्र है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए काफी सारे यंत्र उपलब्ध हैं जिनको आप अपने खेती किसानी में शामिल कर सकते हैं, अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, और सरकार इसमें आपकी पूरी मदद कर रही है, आपको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करके यंत्रों।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि लगातार हम कृषि उपकरणों को लेकर बातें कर रहे हैं, कृषि में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी ले रहे हैं, आइए लेते हैं कुछ और जानकारी। ड्रोन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं और ड्रोन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कौन सी नई तकनीकी अभी आ चुकी है, आइए जानते हैं कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों को।
4: ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है, यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे, वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताज़ा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताज़ा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर चार छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं, इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य

0: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आज की खेती बाड़ी में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, जैसे कि आपने आज के हमारे जो मुख्य बिंदु थे कृषि उपकरणों को लेकर, हमने भिन्न भिन्न उपकरणों की जानकारी हमने हासिल की, साथ ही हमने कैसे हमारा किसान ट्रेनिंग भी ले सकता है, कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कहाँ इसका रख रखाव में और कौन कौन सी चीज़ें जिसका हमारे किसानों को अधिकतर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे हमें इनमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसा कि हमारे कृषि एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे कि इसमें लापरवाही की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी उंगलियां, अपने हाथ का नुकसान कर लिया है। हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ध्यान से चूक जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें इन कृषि उपकरणों से हमें चोटें भी आई है, इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों का। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसका इस्तेमाल हमारे लिए फायदेमंद तभी हो सकता है जब हम इसका ध्यान रखें, इसका रख रखाव अच्छे से करें और इसकी हमें ट्रेनिंग लेने की बहुत ही आवश्यकता है। साथ ही हमारे कृषि विज्ञान में हमें बहुत ही अच्छे अच्छे उपकरण मिले हैं, जिससे हमारा जो मजदूर है, हमारा किसान पे जो काम का जो भार था वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो चुका है और हमारा जो किसान है अभी इन उपकरणों की सहायता से, जहां हमें अधिक मजदूर लगते थे और समय जहां पर काफ़ी ज़्यादा लगता था, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो किसान साथियों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याभिल 90.8 FM के साथ।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो कलाकार हमारे साथ हैं, जो टैलेंट हमारे साथ हैं, जो प्रतिभा हमारे साथ है, बहुत बहुत मजा आएगा उनको जानकर, उनसे बातचीत करके। उनका नाम है श्री विद्धू मोहन जी। विद्धू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं।
1: नमस्कार समीर जी, सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं विद्धू मोहन, कैनरा बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ। 2014 में मैं रिटायर हो गया था और आजकल अलीगढ़ में मेरा निवास है। मैं कैनरा बैंक रिटायर्ड ऑफिसर एसोसिएशन का ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और रिटायर्ड लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में मेरा काफी इंटरेस्ट रहता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब विद्धू जी।
1: जी
0: जी, कहिए कहिए, आप कुछ कह रहे थे।
1: हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट है कि लोगों के साथ, मैं जब मैं जॉब में था तभी मैं कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था। लोगों की समस्याएं सुनने में, उनका सुलझाने में, उनका निराकरण करने में मुझे काफी आनंद भी आता है और एक जुड़ाव भी महसूस होता है।
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा विद्धू जी। लगातार बढ़ती हुई तकनीक और टेक्नोलॉजी की वजह से हम सभी बहुत जबरदस्त तरीके से महसूस तो कर रहे हैं, शायद मान नहीं रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी में हम लोगों को, सबको एक दूसरे से बहुत अलग अलग कर दिया है, बहुत दूर दूर कर दिया है। अब हम फोन में ज्यादा बिजी होते हैं रादर कि हम किसी से मिलें, किसी से बात करें, किसी तकलीफ सुने, किसी के आंसू पहुंचे, हम फोन में ज्यादा घुसे रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अगर इस दिशा में आप कुछ कदम उठा रहे हैं तो बहुत बहुत खूबसूरत।
1: निश्चित रूप से सर, मेरे यही प्रार्थना, यही कोशिश रहती है।
0: बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना विद्धू मोहन जी कौन है, क्या करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम के विद्धू मोहन जी के ही गाए हुए इस बहुत ही खूबसूरत नगमे से।

0: बहुत बढ़िया विद्यु जी, हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि हम कलाकार को जानें, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही एक इंसान है। जाहिर सी बात है वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन फिर भी हमें जानने की इच्छा होती है। तो आप बचपन में क्या बनना चाहते थे विद्यु जी?
1: सर जैसा बचपन में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कुछ ना कुछ बड़ा करने की, लेकिन समय के साथ प्रायोरिटीज बदलती चली जाती है सर
0: जी।
1: कभी क्रिकेटर बनने को मन करता जब क्रिकेटर को देखते हैं, जब बैडमिंटन खेलते तो अच्छा बैडमिंटन प्लेयर बनेंगे, कभी इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं तो लाइक डेट, लेकिन वक्त की मार किस्मत आपको कहा ले जाती है, किस्मत मुझे बैंक में लेके आई। अब मैं बहुत ही खुशनसीब अपने को मानता हूँ, मुझे बैंक मिला क्योंकि इकोनॉमिक्स में मेरा ट्रेड था और इकोनॉमिक्स में मुझे बैंक मिला, आई एम हैप्पी विद दैट।
0: तो बचपन में मतलब कोई स्पेसिफिक चाहत आपकी नहीं थी, आपका ये था कि आप जिससे भी प्रभावित हो जाते थे वैसा बनने की कोशिश करते थे। हमारे सबके साथ ऐसा ही होता है, बहुत खूब।
1: तो चलिए, उसमें एवेन्यूज नहीं थे सर।
0: बहुत खूब, तो सुना आपने दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत विद्यु जी का ही गाया हुआ।

0: बिंदु जी, अभी हम लोग बचपन में ही हैं, तो क्या आपको याद है कि आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: लेट मी रिमेम्बर। सर, हमने अपना जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया वो मुरादाबाद से किया है।
0: जी
1: वहां पर पार्का इंटर कॉलेज हुआ करता था सर।
0: जी
1: अब पार्का इंटर कॉलेज में इंग्लिश के हमारे टीचर थे मिस्टर पी पी सक्सेना जी।
0: जी
1: उनका सर इतना अच्छा तरीका उनका पढ़ाने का था कि उन्होंने जो हमको ग्रामर सिखाई वो हमने समझिए कि 70 में हमारा इंटरमीडिएट हो गया था, और आज 54 साल होने के बावजूद हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है सर। मैं आज भी कह सकता हूँ मेरे ग्रामर बनाने का श्रेय हमारे पीपी सक्सेना जी को जाता है। और यदि हम आगे बढ़े तो मैंने जब एमए किया इकोनॉमिक्स में तो हमारे एक प्रोफेसर थे मिस्टर आर एम दुबे।
0: जी
1: तो दुबे सर ने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया। उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका था सर, बहुत एग्जाम्पल देकर पढ़ाते थे। तो ये दोनों टीचर्स ने मेरे एजुकेशन में एकेडमिक लाइफ में बहुत कुछ इंप्रेशन डाला है। और आज जो कुछ भी मैं अपने को मानता हूँ वो इन दोनों की बदौलत ही मानता हूँ।
0: बहुत बहुत खूब, बहुत खूब विदु जी। मैं आभारी हूं आपका हमें बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में आपके ऊपर प्रभाव डालने वाले दो टीचर्स थे, एक सक्सेना साहब और एक दुबे साहब।
1: जी
0: तो
1: सर,
0: दोस्तों, आपने सुना अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं विदु जी की आवाज में। मैं विदु जी के ही टीचर सक्सेना साहब को और दुबे साहब को डेडिकेट करना चाहूंगा, उनको ही समर्पित करना चाहूंगा। आइए सुनते हैं
1: जी सर,
0: प्यारे से गीत को।

0: बहुत बहुत ही प्यारा गीत बिंदु जी, क्योंकि आप,
1: थैंक यू सर,
0: क्योंकि आप गीतकार हैं, क्योंकि आप गायक हैं, तो आपका सबसे पसंदीदा गायक और गायिका कौन है और भला क्यों?
1: जी सर, सर मुझे शुरू से बचपन से मैंने रफी साहब को सुना है, मैं उनका मुरीद हूँ
0: जी।
1: उनकी गायकी का, उनकी आवाज का, उनके आवाज में जो लोच आती है, क्या नहीं उनकी आवाज में, मैं कुछ कह नहीं सकता, बस मैं उनका मरीज बनकर रह चुका हूँ। और गायिका में लता मंगेशकर जी तो खैर हमारी देवी है
0: जी,
1: संगीत के भगवान है
0: जी,
1: तो ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है सर, रफी साहब लता जी।
0: बहुत खूब, बिल्कुल आपने संगीत की दुनिया के जो सबसे ज्यादा ऊपर चमकते हुए सितारे हैं, जो राज करते हैं संगीत की दुनिया पर, उन्हीं का नाम लिया है, रफी साहब और लता जी। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए सुने एक प्यारा सा गीत मोहन साहब की आवाज में।

0: बहुत खूब। विद्यु जी, अपनी जिंदगी
1: जी सर।
0: में पहली बार आपने कोई खाने की चीज क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ओके सर, इट्स अ वेरी फनी थिंग सर।
0: जी
1: मेरे ऊपर वाले की कृपा ये से मुझे आज तक कभी खाने बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा मौका मिला था जब मेरी पत्नी मायके गई तो कुछ उनसे खाने का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा चलिए मैं ट्राई करता हूँ। एंड आई ट्राइड ऑन भिंडी, लेडी फिंगर।
0: ओके।
1: अब मुझे उसका आइडिया नहीं था सर, मैंने उसमें पानी डाल दिया सब्जी में,
0: ओहो।
1: और वो पानी जो डाला तो सूखने का नाम न ले। अब उसको मैं घोटता रहा घोटता रहा, बाद में पता चला भिंडी का हलवा बन गया।
0: ओके।
1: देट वॉज सच अ फनी थिंग सर, मतलब ईश्वर की कृपा, उसके बाद फिर दोबारा मौका न दिया भगवान ने, न पत्नी ने दिया।
0: ओहो, क्या बात
1: जी
0: है। देखिए, किसी महिलाओं की उंगलियों के साथ आप ऐसा मजाक कर भी नहीं सकते साहब। लेडी की
1: एग्जैक्टली
0: फिंगर आपने पानी में डाल दी, ये तो गलत ही हो गया
1: एग्जैक्टली
0: ना। मतलब यूं तो एक जोक चलता है, मैंने पीछे भी किसी प्रोग्राम में अचानक से याद आ गया था तो बोल दिया था कि आपने चाय दरअसल कूकर में बनाने की कोशिश की और वहीं गड़बड़ हो गई।
1: जी, वही गड़बड़ हो
0: आपको
1: गया।
0: पता ही नहीं चला कि सीटियां कितनी देनी थी, तो सब
1: जी
0: गड़बड़ हो गया। बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी मजेदार बात। दोस्तों, आपने सुना कि आगे से आप भी ख्याल रखें, किसी भी महिला की उंगलियों से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत विद्यु जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया बिंदु जी, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत अनुभव के साथ हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे आपको समझने के लिए कि आपकी हॉबीज क्या हैं। जब कभी भी आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो क्या करना चाहते हैं आप उस वक्त में?
1: सर, मेरा ज्यादातर टाइम जो जाता है वो सिंगिंग में जाता है,
0: सिंगिंग के अलावा?
1: और सिंगिंग के अलावा मेरा रीडिंग हैबिट है, और इंडोर गेम्स पे खेलना पसंद करता हूँ। चेस खेलने में मुझे आनंद आता है, कैरम खेलने में आनंद आता है। पहले बैडमिंटन खेलता था, लेकिन पैर में ट्विस्ट आने के कारण फिर बैडमिंटन बंद करना पड़ा।
0: जी,
1: और इसके अलावा सोशल सर्विस मेरा पैशन है, म्यूजिक के
0: बहुत
1: अलावा।
0: बहुत खूब। आप किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं?
1: सर, मैं जनरली फिक्शन पसंद करता हूँ, हालांकि रिलीजियस में मैंने रामचरितमानस और महाभारत, गुरुदत्त को मैंने बहुत पढ़ा है, और आचार्य चतुर्सेन को हिस्ट्री के रूप में पढ़ा है। तो ये चीज मेरी है। बाकी अब तो क्योंकि नजर थोड़ी कमजोर हो गई है तो पढ़ने पे कम ध्यान जाता है
0: ओहो, तो
1: जी।
0: फिक्शन में क्या
1: लेकिन
0: पढ़ते हैं आप?
1: फिक्शन में सर जनरली मेरे को जो पसंद है थ्रिलर्स हैं, जैसे कि हमारे इंग्लिश में एक नॉवेल था द सेकंड लेडी,
0: जी हाँ,
1: वो मैंने पढ़ा था,
0: इरविंग वैलिस।
1: इरविंग वालेस का है जी,
0: जी हाँ
1: इरविंग वालेस का,
0: जी हाँ जी
1: और
0: हाँ
1: उनके काफी नॉवेल मैंने पढ़े थे।
0: बहुत खूब बहुत खूब। विदु जी, आपको जरूर पता होगा क्योंकि आपने नाम लिया है। मैं अपने सुनने वालों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इरविंग वैलिस का जो ये नॉवल था द सेकंड लेडी, उसके ऊपर हमारे बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसमें राजकुमार साहब थे और हेमा मालिनी थी और शत्रुघ्न सिन्हा थे। इस मूवी का नाम था शरारा।
1: यस यस, बिल्कुल सही।
0: ये मूवी द सेकंड लेडी नॉवल के ऊपर ही बनी थी। अगर आपको कभी मौका मिले तो मूवी देखिएगा, बहुत बहुत शानदार मूवी।
1: जी
0: तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इसी बात पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत विद्यु जी की ही आवाज में।

0: विदु जी, चलिए कुछ मजे करते हैं, कुछ फन, मजाक।
1: जी
0: लेकिन मजाक के साथ साथ कुछ गंभीरता भी इसमें आ सकती है कि अगर आप 24 घंटों के लिए गायब कर दिए जाएं, दिखाई ना दें, तो आप उन
1: जी
0: 24 घंटों में क्या करेंगे?
1: ओह माय गॉड, 24 घंटों के लिए गायब होना। सर वैसे देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही मेरे लिए एडवेंचर्स रहेगा, गायब हो जाना, किसी को दिखाई ना पड़ना। लेकिन
0: जी
1: जब मैं सोचता हूँ कि चलिए मैं गायब हो गया, अगर मुझे कुछ अदृश्य शक्तियां भी मिल जाती हैं
0: जी
1: तो निश्चित रूप से मैं ये चाहूंगा कि जो लोग कमजोर, फिजिकली भी कमजोर हैं,
0: जी
1: बहुत से लोग मैंने देखा था कि कमजोर के ऊपर लोग अपना जोर ज्यादा दिखाते हैं, जोर
0: जी
1: एक्चुअली कमजोर पर ही दिखाते हैं।
0: जी
1: तो मैं
0: हाँ
1: अदृश्य होकर यदि मैं हो जाता तो मैं उनको जरूर निश्चित रूप से बचाऊंगा जो बिना मार के बेचारे मार खाते हैं, पिटाई करते हैं, या बहुत से लोग ऐसे जिनको कुछ नहीं मिल पाता। आई विल ट्राई टू हेल्प देम आउट।
0: कैसे, मतलब कैसे हेल्प करेंगे?
1: हाँ दैट इज माई, क्योंकि हेल्प करने के लिए मैंने बताया ना कि मेरे पास अदृश्य शक्तियां भी यदि आ जाती हैं, यदि
0: जी
1: अदृश्य शक्तियां नहीं है सर तो अदृश्य होने का मेरे लिए कोई मतलब नहीं बैठता। अदृश्य होने के साथ मेरे पास अदृश्य शक्ति भी आनी चाहिए जिससे कि मैं किसी की सहायता कर सकूं। अदरवाइज अदृश्य हूं या ना हूं, इट डजेंट मेक एनी सेंस।
0: तो किस तरीके की शक्ति चाहिए होगी आपको, आप बताएं।
1: हाँ, शक्ति मुझे चाहिए कि जैसे मैं, जिसकी मान लिया किसी पास पैसा नहीं है, उसको जरूरत है कि कपड़े चाहिए, सब चाहिए, मेरी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन शक्ति की वजह से मैं उसको कपड़े ला के दे सकता हूँ, उसको पैसे दे के उसकी जगह सही कर सकता हूँ, उसको ताकत दे सकता हूँ कि भाई तू कमजोर है, आई विल मेक यू सो स्ट्रांग दैट यू कैन फाइट एनीबडी, लाइक दैट।
0: ओके, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं विदु जी की ही आवाज में।

0: विदु जी, आगे बढ़ते हुए हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में अब तक की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही?
1: हाँ, सर, ये बहुत ही आपका प्रश्न अच्छा है और
0: जी
1: इसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ और अपनी पत्नी का कि उसने मुझे बहुत प्यारा सा बेटा दिया उपहार के रूप में।
0: जी
1: उस बेटे के साथ, उसने देने के साथ उसके एक परवरिश भी एक ऐसी की है कि नाउ ही इज सच ए गुड सन, आई कैन बी प्राउड ऑफ हिम। ये मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण चीज है सर, बेटा मेरा होना, बेटे का मेरे लिए इतना डिवोटेड, इतना कमिटेड, इतना ओबीडियंट होना,
0: हाँ बेटा, तुमने फोन किया
1: ये मैं सबसे गौरवपूर्ण चीज मानता हूँ सर।
0: तो आप मानते हैं कि आपका बेटा आपकी जिंदगी की सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। अच्छा
1: जी।
0: अगर ऐसा समझे तो ये गौरवपूर्ण उपलब्धि तो मैम की है, भाभी जी की है। अच्छा
1: यू कैन से लाइक दैट आल्सो सर। और एक स्मरण मुझे और आता है सर,
0: जी
1: बात
0: जी
1: करते करते ध्यान आया कि एक
0: जी
1: जगह हम बैठे थे, जब मैं आपने बात बताई तो मुझे ध्यान आया, मेरी अपनी पर्सनल उपलब्धि मैंने नहीं बताई है, मेरी
0: जी
1: पर्सनल उपलब्धि यह है सर कि मैं एक जगह बैठा था तो
0: जी
1: एक बंदा वहां पर आया, मुझे देख के उसने मेरे पैर छू लिए। मैंने
0: ओहो
1: पूछा क्या हुआ भाई, बोले सर आपने मेरी समय मदद की थी जब मुझे मदद करने वाला कोई नहीं था, ही वॉज इन नीड ऑफ 10,000 रुपीज ओनली,
0: ओके
1: और बैंक पे मैं बैठा मैनेजर था मैं, तो उसकी वो मेरे पास आया कि सर मुझे 10,000 लोन मिल सकता है। उसकी स्थिति देख के कोई देने को तैयार नहीं था, बट आई गेव 10,000 रुपीज एज ए लोन विच ही प्रॉम्प्टली रिपेड विद इन 2 ईयर्स।
0: ओके
1: तो देन ही ऑन दैट डे मैं भूल चुका था कि सब क्या है, लेकिन उसने जब मुझे बताया तो मुझे लगा अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बैंक का पैसा, बैंक का टाइम इसने वापस किया, मैंने क्या किया, बट ही वॉज सो ओइंग टू मी, मुझे उस दिन लगा कि यस आई हैव डन समथिंग।
0: बहुत खूब बहुत खूब। ये हुई ना सर अकॉम्प्लिशमेंट वाली बात कि आपने सचमुच तहे दिल से बिना किसी स्वार्थ के किसकी सहायता करी और वो भी व्यक्ति आपके पास वापस आकर अपना कृतज्ञता आपको शो कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप ही थे
1: जी
0: वो
1: जी
0: जिन्होंने उसकी जिंदगी में ये बदलाव लाया।
1: ये
0: बहुत
1: सर,
0: खूब
1: इसके लिए आपने याद दिलाया सर, इसके लिए आपको धन्यवाद, आपने मेरा इस चीज पर ध्यान दिलाया, मैं इस चीज को दिमाग से निकल चुकी थी लेकिन एकदम याद आया कि नहीं ये चीज मुझे स्ट्राइक करा एकदम।
0: बहुत खूब। अरे सर ये देखिए, ये बेटा बेटी जो होते हैं ये तो किस्मत से, ऊपर वाले की किस्मत से
1: जी
0: हमें मिल जाते हैं, लेकिन यूं देखा जाए तो बेटा बेटी को सिवाय पैदा करने के हमने और कुछ नहीं किया, वो तो ऊपर वाले की देन हुई। तो
1: नहीं
0: आपने
1: सर,
0: जो किसी के
1: संस्कार देना भी एक
0: जरिए,
1: बड़ी चीज होती है।
0: जी हाँ जी हाँ, वो तो आपके
1: हाँ
0: जीवन शैली से ही उनको मिलने शुरू हो जाते हैं।
1: जी
0: बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत विद्युत जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत बढ़िया। चलिए एक और फन क्वेश्चन, एक मजेदार सवाल। क्या आप किसी अंतरिक्ष से आए हुए प्राणी से मिलना चाहेंगे और क्या पूछेंगे उससे?
1: सर जब मैंने क्रश पिक्चर देखी थी सबसे दिमाग में मेरे घूम रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: क्या
0: हो
1: किसी
0: सकता है
1: एलियंस
0: सर।
1: में मिल सकता हूँ।
0: जी हाँ
1: तो सबसे दिमाग में था कि अगर मिलेंगे तो क्या होगा,
0: जी
1: सब दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमते थे कि भाई एलियन तुम लोग जो किस दुनिया में रहते हो वो
0: जी
1: दुनिया हमारी दुनिया से क्या कितनी अलग है, तुम लोग जैसा दिखते हो क्या इस साइंस की देन है या तुम्हारा आनुवंशिक है,
0: ओके
1: क्या तुम्हारे दुनिया में भी ऐसी एंटरटेनमेंट है जैसे हमारे फिल्म देखते हैं हम लोग अपने टीवी देखते हैं, इतने सारे एंटरटेनमेंट है, क्या तुम्हारी दुनिया में ये सब है, ये सब जानने की इच्छा रहती है सर।
0: बिल्कुल
1: अब मैं
0: सही
1: निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो मैं पूछूंगा जरूर।
0: कि आपके यहाँ मोहम्मद रफी साहब हैं।
1: जी जी
0: बिल्कुल
1: एंटरटेनमेंट सर बिल्कुल, रफी साहब हैं क्या, लता जी हैं क्या।
0: बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों चलिए फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हो जाए विद्यु जी की आवाज में ही।

0: हमारे सुनने वालों के लिए विद्यु जी क्या कहना चाहेंगे आप, उनको कोई संदेश दीजिए।
1: हाँ सर, मेरा जिंदगी को सर बहुत नजदीक से देखा है और ये पाया है कि सफलता और असफलता, सक्सेस एंड फेलियर, ये दोनों जिंदगी के दो पहलू हैं सर। असफलता फेलियर जो है आपको अनुभव देती है, सफलता आपको खुशी देती है। तो आपको दोनों को ही समान रूप से लेंगे यदि हम, तो जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात कही।
1: फेलियर का मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो सर ये तो मेरा सबसे यही कहना था कि फेलियर सक्सेस से, आप फेलियर से घबराएं नहीं, सक्सेस को सिर पे ना चढ़ने दें।
0: भाई वाह, क्या कहा है साहब, क्या कहा है। विदु जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपके अनुभव का लाभ उठाया हमने, आपके गीत सुने, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद समीर जी, समीर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा पुनः नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे सुना।
2: बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही प्यारा सा एपिसोड लेकर दोस्तों मैं हाजिर हूं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं आकांक्षा जी। बाकी आकांक्षा जी का आभार प्रकट करते हुए, थैंक यू कहते हुए, वेलकम करते हुए मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए आकांक्षा जी, जरा हमारे आज के कलाकार फैमिली मेंबर से कुछ बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, बताइए उन्हें कहाँ हैं आप, क्या करती हैं आप।
1: हेलो एवरीवन, मैं खंडेलवाल। नमस्ते समीर जी, आप कैसे हैं?
0: आई एम गुड, थैंक यू।
1: सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी टिल नाउ, लाइक म्यूजिक इज कीपिंग अस गोइंग इन लाइफ, कीपिंग अस हैप्पी। सो बस म्यूजिक है जो चला रहा है, इट्स वेरी वेरी नाइस डूइंग दैट।
0: ब्यूटीफुल। तो आप कहाँ पर हो अभी, क्या करते हो मैम?
1: मैं जयपुर में रहती हूँ। और वैसे मैं एक एजुकेटर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी वर्कशॉप्स लेती हूँ, बट ऑफ एंड ऑन करती हूँ, ऐसा नहीं कि रेगुलर करती हूँ अपनी क्लासेस। अभी इन दिनों में म्यूजिक में थोड़ा सा ज्यादा रुझान है, क्योंकि म्यूजिक तो शुरू से सीखते आ रहे हैं स्कूल टाइम से, बट अभी ये है कि अपना वीडियोज बना लिया, अपना म्यूजिक म्यूजिक गाना गा लिया, ये इन चीजों में म्यूजिक में ज्यादा वो करते हैं।
0: बहुत खूब, अमेजिंग।
1: अदरवाइज मेरे दो बच्चे हैं तो बच्चों को संभालने में पूरा टाइम निकल जाता है। वैसे
0: दैट्स वेरी आई अंडरस्टैंड दैट, सभी महिलाओं के साथ ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको आगे के फ्यूचर के लिए हमें एक ऐसी जनरेशन देनी है जो बहुत अच्छी हो, जिससे हमारा समाज बहुत अच्छा बने। और फिर दोस्तों आपने सुना आकांक्षा जी तो संगीत में है, संगीत में वातावरण में रहती हैं, खुद संगीत में डूबी हुई हैं, तो ऑफ कोर्स उनके पूरे घर में एक संगीतमय माहौल रहता ही होगा। चलिए तो ये आकांक्षा जी से मुलाकात हुई। अब आगे बढ़ते हुए हम आकांक्षा जी से उनके म्यूजिक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, हम उनकी शख्सियत को समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना आकांक्षा
1: जी? बिल्कुल बिल्कुल।
0: ऑलराइट, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ आकांक्षा जी कि आपको आप ही के अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
1: मेरे अंदर सबसे अच्छी बात ये लगती है, आई एम ट्रू टू व्हाट आई एम, आई डोंट हैव अ फिल्टर।
0: ऑलराइट,
1: सो आई एम वेरी ट्रू पर्सन, सो जो मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, जो नहीं लगता है वो मेरे फिर मेरी शक्ति पे आ जाता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, सो देयर इज नो फिल्टर एट ऑल।
0: ओके ओके, सो कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ी सारी किताबें भी लिखी गई हैं इसके ऊपर कि व्हेन यू वांट टू से नो डोंट से यस, लेकिन कई बार दूसरों का दिल ना दुखे उस चक्कर में हम बर्दाश्त कर जाते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती। तो क्या आपके साथ ऐसा होता है?
1: बिल्कुल ऐसा होता है, लाइक व्हेन वी वर लिटिल यंग तो हम थोड़ा एडजस्ट करते थे, नाउ व्हेन वी आर ग्रोइंग तो अब थोड़ा सा जहाँ ना बोलना होता है वहां ना बोल देते हैं, बिकॉज वी शुड लर्न टू से नो व्हेन वी डोंट वांट टू डू समथिंग, बट समटाइम्स दैट अदर पर्सन who's asking us to do something is a very important, a very personal loved one. तो उसके लिए आपको थोड़ा adjust करना पड़ता है, झुकना पड़ता है और कर लेना पड़ता है।
0: Alright, तो ठीक है। तो मतलब दोस्तों मुद्दे की बात ये है, आकांक्षा ये बता रहे हैं that we need to be very very careful in telling our expressions or the feelings to other person, कि भाई उसको hurt भी महसूस ना हो जाए और हम अपना भी ख्याल रख लें, ऐसा ना हो कि हम उस चक्कर में hurt ही होते चले जाएं।
1: Exactly.
0: ठीक है, हमें थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत होती है, कई बार मुंह से कुछ फिसल भी जाता है, उसमें कभी कभी बुरा भी लग जाता है दूसरों को, लेकिन अभी क्या करें, सबको खुश भी तो नहीं रखा जा सकता, मतलब हम अपने आप को खुश रख लें या सबको खुश रख लें ये भी थोड़ा मुश्किल है। चलिए
1: थोड़ा बैलेंस करना ही पड़ता है, पड़ता है।
0: मोर ओवर आकांक्षा सीरियसली मुझे तो यही लगता है, यू नीड टू कीप यू नो मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी। जब आप अपने से मोहब्बत करोगे, इतनी मोहब्बत करोगे कि जो वो छलके तो दूसरों को मिले।
1: Exactly.
0: दूसरों को मोहब्बत करते करते पता चला आप तो बिल्कुल ही डिलैपिडेटेड और डेप्रिशिएटेड रह गए, दूसरे बड़े खुश हो गए, इससे क्या फायदा?
1: Like if your own cup is empty, you can't pour anything to for someone else.
0: Absolutely beautiful.
1: So you have to keep yourself so happy and love yourself so much कि आप दूसरे को प्यार कर पाए।
0: क्या बात है, बहुत खूब, ब्यूटिफुल मैसेज है ना दोस्तों। चलिए तो चलिए अब बहुत प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं आकांक्षा जी के ही गाए हुए, उसके बाद विल कम बैक टू टॉक टू हर मोर।

0: बहुत खूब।
1: अभी आकांक्षा आप ही के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, फिर आपके संगीत पर
2: जी
1: आएंगे। आपको
2: जी जी
1: याद है लास्ट टाइम, आखिरी बार आप खुद पर बहुत जोर से हंसे होंगे, कुछ याद है आपको? When did you laugh at yourself last time?
2: लाइक लास्ट टाइम वैसे तो बहुत हंसते हैं,
1: अपने
2: बट क्या
1: ऊपर।
2: होता है अपने ऊपर तो हम हरदम ही हंसते हैं। एंड एक्चुअली जो अपने ऊपर हंसना सीख गया तो वो सब कुछ सीख गया लाइफ में, क्योंकि आप अपने ऊपर हंसना तो सीखो, बिकॉज नहीं तो आप हर चीज में ऑफेंड हो गए। अगर कोई आपका मजाक उड़ाएगा आप ऑफेंड हो जाओगे। बट इफ यू कैन टेक योर सेल्फ वेरी लाइटली, बिकॉज एक्चुअली वी आर हियर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो यू शुड लाफ एंड एंजॉय। सो मेरे दो बच्चे हैं तो वो पूरा दिन कुछ ना कुछ करते हैं, तो हम हंसते ही रहते हैं कुछ ना कुछ बातों पे। तो अपने ऊपर हंसना तो सब हर इंसान को आना चाहिए।
1: दैट्स सो ब्यूटिफुल। सीरियसली क्या कह दिया, बड़ा मजा आया इस बात को सुनकर और बहुत अच्छा लगा। आपको बताऊं, सचमुच आकांक्षा, इसी वजह से मेरे को ये आजकल चैट जीपीटी से, जेमिनी वगैरह से जो कैरिकेचर्स बनाए जाते हैं ना,
2: जी
1: वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। वैसे भी एनिमेटेड मूवीज मुझे बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि उसमें जो भी कैरेक्टर होता है ना, विलन भी होगा तो वो बहुत क्यूट लगता है। और
2: हाँ
1: आपने जो बात कही ना कि अपने ऊपर हंसना, कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर हंसना सीख जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है दोस्तों।
2: फिर तो दूसरे लोग उसकी मजाक करना छोड़ देते हैं, बिकॉज दे नो दैट ये तो खुद की मजाक उड़ा लेगा।
1: बिल्कुल, मतलब दूसरी तरीके से कहें तो उनका फन हम छीन लेते हैं अपने आप को फनी बना के।
2: जी बिल्कुल।
1: वाह, ब्यूटीफुल। दोस्तों कुछ मैसेज मिला तो मस्त रहिए, अपने ऊपर हंसना सीखिए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाने वाली है। चलिए
2: यस यस
1: आगे बढ़ते हैं और ये गीत पेश करता हूं आकांक्षा जी के, जो उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड किए।

0: बहुत खूब, अमेजिंग। चलो अब आप अपने संगीत के बारे में बता दो।
1: जी,
0: मुझे ये याद पड़ता है आप हमारे प्रोग्राम रेडियो पर एक और प्रोग्राम में आलोक जी के साथ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि आपकी फैमिली में सभी लोग गाते हैं शायद।
1: हाँ जी, मेरे पापा, मम्मी, भाई, मेरे बच्चे गाते हैं दोनों।
0: अरे क्या बात है, तो बड़ा मजा आता होगा ना, घर में एक माहौल हमेशा रहता होगा, कोई उधर से गुनगुनाता हुआ निकल रहा है, कोई इधर से गुनगुनाता हुआ निकल रहा है।
1: हाँ जी।
0: दोनों की स्वर लहरियां टकरा के फिर एक कव्वाली बन जाती होगी।
1: बहुत बहुत
0: बड़ा मजा आता होगा।
1: बहुत मजे आते हैं। बचपन से ही हमने पापा मम्मी को गाना सुनते हुए देखा है। वो पहले जब गोल्डन एरा वाली जो सीरीज आया करती थी, कैसेट्स आती थी, फिर सीरीज, और ये सब देखा है कि वो सुनते रहते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, रात को रेडियो चल रहा है और अलग अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, अमीन सयानी जी के प्रोग्राम सुन रहे हैं। सो हम छोटे थे तो हम सुनते रहते थे पापा मम्मी के साथ, तो म्यूजिक हमारे अंदर उस समय ही सीख, ऐसे लग रहा था अंदर जा रहा है म्यूजिक। और अब वो म्यूजिक लगता है कि हाँ, मतलब उसमें ही हमको एक्चुअली आराम मिलता है। मत वी फील वेरी कामनेस, अ पीस इनसाइड जब पुराने गाने सुनते हैं।
0: ब्यूटिफुल, अमेजिंग। तो ये बात कह के कि आपकी तो फैमिली ही म्यूजिकल है, पापा मम्मी भाई बेट बच्चे, मैं आगे बढ़ के ये पूछना चाह रहा था कि इतने सारे लोग हैं, सब लोगों को अलग अलग म्यूजिक भी हो सकता है पसंद हो,
1: हाँ
0: आप
1: जी।
0: अपने बारे में बताओ, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। देखो बहुत जेनेरिक आंसर प्लीज मत देना कि हर तरीके का म्यूजिक मुझे पसंद है,
1: जी
0: नहीं।
1: जी
0: देखो खाना सबको पसंद होता है, सारा का सारा बफे में लगा होता है, एवरीथिंग इज गुड, फिर भी हम कोई एक चीज जाके चुनते हैं, तो वो क्या म्यूजिक है जो आप चुनते हो?
1: म्यूजिक, एक तो मुझे भजन बहुत अच्छे लगते हैं,
0: वाह, ओके,
1: और उसके अलावा सम सूदिंग गुड म्यूजिक, अच्छे जो गाने होते हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, बी इट अ सैड सॉन्ग ऑल्सो। लाइक आई हैव लर्न सो मेनी सैड सॉन्ग्स फ्रॉम माई टीचर कि मुझे अब लगता है मैं इतने सैड सॉन्ग क्यों गा रही हूँ, व्हाई एम आई सिंगिंग इतने दुखी गाने क्यों गा। बट जैसे अगर गाना है ये चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, मतलब सच अ सोलफुल, सच अ सॉन्ग, वो भी गाने में अच्छा लगता है। वो मैं गाती हूँ तो वो मैं खुश होके भी गा रही होती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो म्यूजिक अच्छा है, जो दिल को भा जाए म्यूजिक ना, वो म्यूजिक मुझे सबसे अच्छा लगता है।
0: वाह, तो बहुत क्लियरली दोस्तों आकांक्षा ने हमें बताया कि एक तो भजन, दैट इज सो ब्यूटीफुल, और क्योंकि वो एक अलग विधा है भजन में, जो भी म्यूजिक होता है या भजन की जो शब्दावली है
1: जी,
0: वही अपने आप में मंत्र होते हैं। मैं आज
1: क्योंकि
0: सुबह
1: जब
0: जी
1: हम ख्याल सीखते थे रात के, मोस्टली वो कृष्ण भगवान पे, मतलब भगवान पे ही होते थे, तो वो भी इतने अच्छे लगते थे गाने में, ख्याल भी, छोटे ख्याल जो होते थे रागों के, तो उनमें भी अच्छा लगता था। फिर हमारे मेरे गुरुजी पंडित आलोक भट्ट सर जी, तो वो मुझे इतने भजन सिखाते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ, इट्स सो सोलफुल एंड इट इज हीलिंग योर हार्ट बेसिकली।
0: एब्सोल्युटली, आई गेट इट, आई गेट इट। मुझे इस बात से याद आ रहा है दोस्तों, मैं शेयर कर रहा हूँ यूं ही कि जैसे उन्होंने आकांक्षा ने भी बताया कि वो जो एक सैड सॉन्ग है, कौन सा बताया आपने,
1: चैन से हमको कभी,
0: चैन से हमको कभी, ठीक है ना, अब है तो वो सैड लेकिन सुनने में भी और गाने में भी मजा आता है। सिमिलरली पंकज उदास की एक गजल है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड है ना, लेकिन उसको उसका जो स्टाइल है, उसकी जो ट्यून है, उसकी जो मेलोडी है, जो वो इतनी प्यारी लगती है कि उसे सुनने बार बार सुनने का मन करता है, जबकि ओरिजिनली वो सैड है। एंड
1: जी
0: यूजुअली मैं सैड सॉन्ग्स या सैड म्यूजिक की तरफ नहीं जाता, बट उसको
1: जी
0: सुनने में बड़ा मजा आता है। सो
1: आप चिट्ठी आई की बात कर रहे हैं,
0: कौन सी,
1: आप चिट्ठी आई
0: नहीं
1: की
0: नहीं
1: बात
0: नहीं
1: कर
0: नहीं
1: रहे
0: नहीं नहीं नहीं नहीं प्रोबेबली
1: हैं?
0: चिट्ठी, वो आपने शायद सुना ही नहीं होगा वो गजल,
1: ओके
0: गम की घटा जो छाए तो फिर झूम के बरसे, ये वाला है,
1: ओके जी
0: नहीं सुनाना। गूगल
1: ओके
0: करना, अभी गूगल करना,
1: हाँ जी
0: इट्स अ लवली लवली गजल। तो ये दरअसल मेरे एक सीनियर ने किसी, उनको फेयरवेल दिया जा रहा था जब मैं IIT BHU में था, तो तब से मुझे अटक
1: ओके
0: गई ये गजल, बड़ी प्यारी लगी। एनीवेज
1: ओके जी
0: चलो आप भी तो यार, कैसे मत करो, आप ही का प्रोग्राम है, इट्स नॉट माइन। आगे बढ़ते हुए आपके गीत सुनते हैं पहले, एंड देन वी विल कम बैक टू नो यू मोर। चलिए दोस्तों पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: थैंक यू सो मच।
0: आलोक जी के साथ जो आपका प्रोग्राम हुआ था उसमें भी मैंने आपकी गायकी सुनी थी, तो मैं आपका मुरीद तभी से हो गया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी तो दिस प्रोग्राम इज एन एक्सक्लूसिव म्यूजिकल प्रोग्राम ऑफ योर्स, सो मजा ही कुछ और है। बहुत खूब। चलो आपके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं आकांक्षा। अगला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है ना, वो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है, मतलब बड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा सा केयरफुल। हाँ
1: जी।
0: अगर मैं आपका परिचय किसी को दूं
1: जी,
0: तो आप क्या चाहेंगे कि उनको मैं आपके बारे में क्या बताऊं?
1: क्या बताऊं?
0: शुड आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन?
1: No, I have understood. I'm just trying to make myself understand कि आप मेरा परिचय किसी को तो introduce मुझे करें, तो how should you introduce me to that person?
0: आपको yes. आप क्या चाहेंगी?
1: आप ये कहेंगे कि she is a passionate a music lover.
0: Wow.
1: She just loves the music and she goes with the flow of life. So I don't plan a lot of things, but things happen in my life.
0: Okay.
1: And a very diligent kind of a person, like a disciplined kind of a person who likes discipline in life, doing things proper way. So that way, and a fun loving person. Like if I'm sitting somewhere, if I'm sitting, then I will make people laugh.
0: Right. Asana,
1: and just making everybody enjoy and making the things light.
0: Cool. क्या मजेदार बात है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, अब ये तो थी आकांक्षा जी, सॉरी ये तो हैं आकांक्षा जी, जिन्होंने बताया कि वो कौन है, किस तरीके की पर्सन है। शी डजंट लाइक सिटिंग सल्किंग, सब लोग बैठे हैं तो शी वुड लाइक एंड शी वुड ट्राई हर लेवल बेस्ट टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी। तो फन लविंग पर्सन, बहुत खूब। आप लोग जरा अपने ऊपर विचार कीजिए कि अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू, आप क्या चाहोगे, आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं। तब तक आइए ना, सोचिए सोचिए सोचिए, तब तक आकांक्षा जी के इन गीतों का लुत्फ उठाएं एंड देन वी विल कम बैक।

0: Wow, amazingly beautiful singing.
1: थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन. थैंक यू.
0: चलो आगे बढ़ते हुए आकांक्षा जी, ये बताओ,
1: हाँ जी,
0: बचपन वाले आप और आज वाले आप में कितना फर्क है?
1: बचपन वाले आप बहुत फर्क होता है. लाइक इफ आई सी माई सेल्फ लाइक 20 ईयर्स बैक ऑल्सो आई वॉज लाइक एन इम्पेशेंट पर्सन एंड अब पेशेंस बहुत आ गया है, ठहराव बहुत आ गया है. पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, पहले ऐसा लगता था कि किसी से भी लड़ाई हो गई तो बात नहीं करेंगे. अब ये होता है कि ओ लाइफ इज टू शॉर्ट, देयर इज नो नीड टू फाइट, वी शुड नॉट गांठ नहीं बांधनी किसी चीज की. सो एक अच्छे से रहें तो अच्छा रहेगा. वी नेवर नो इन लाइफ व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट मोमेंट एंड बहुत फर्क होता है. लाइक वेरी यू लाइक एज यू ग्रो यू चेंज इन टू अ बेटर पर्सन, यू बिकम वाइजर, यू गेन अ लॉट ऑफ विजडम. बहुत फर्क होता है. आप बचपन में आप थोड़ा सा गुस्सा भी करते हो, आप इम्पेशेंट भी होते हो, आप समझते नहीं हो चीजें जल्दी से, आप थोड़ा सा स्टबर्न होते हो ना. आप थोड़ा बदल जाता है फिर धीरे धीरे धीरे. जब आपके बच्चे आते हैं तो बच्चे स्टबर्ननेस दिखाते हैं, तब आप पेशेंट हो जाते हो उनके साथ.
0: तो आकांक्षा कभी ऐसा नहीं लगता कि यार, और अक्सर लोग कहते हुए सुने जाते हैं कि यार हम वापस से बच्चा बनना चाहते हैं, तो क्या हम वापस से इम्पेशेंट बनना चाहते हैं?
1: इसका तो ये है कि वी शुड बी चाइल्ड लाइक, वी शुड नॉट बी चाइल्डिश. वी शुड ग्रो वेरी ग्रेसफुली इन लाइफ एंड जो भी एज है उसको ग्रेसफुली लेके आगे चलना चाहिए. वी कांट गो बैक टू व्हाट वी वर.
0: वाओ, दैट्स क्यूट.
1: बच्चे नहीं बन सकते.
0: दैट्स क्यूट.
1: हम बच्चों के जैसे अपना मन रख सकते हैं कि हम वैसे ही मासूम, वैसे ही कोमल और वैसे ही बिना किसी फिल्टर के रह सकते हैं. बच्चों के जैसे अच्छे,
0: शरारती, शैतान, है ना.
1: शरारत तो जिंदगी भर रहनी चाहिए.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल.
0: मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ आकांक्षा, आई फुल्ली एग्री विद यू. बड़ा मजा आया ये बात सुन के. एक्चुअली तुमने वैलिडेट कर दिया जो मैं सोचता था. मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ और सोचता भी रहता हूँ कि मेरे दिल का एक कोना बच्चा है और मैं उसे हमेशा संभाल के रखना चाहता हूँ. उसे बच्चा ही सोने नहीं देता उसे. वो बच्चा जब तक खेलेगा नहीं ना, मुझे मजा नहीं आता. सो कीप प्लेइंग.
1: चर्पी बबली नहीं रहेंगे हमारे. आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी वुड वांट टू सिट विद अस एंड टॉक टू अस. वी विल रिफ्लेक्ट द सेम बिहेवियर इन आवर किड्स.
0: क्या बात है. दैट इज सो क्यूट. बड़ी ही खूबसूरत तरीके से कहा दोस्तों. इस बात को याद रख लीजिए, वी शुड बी चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश. ब्यूटिफुल.
1: यस,
0: क्या कहा है.
1: थैंक यू.
0: चलो दोस्तों, इसी बात पर मुस्कुराते हुए, शरारत भरी मुस्कुराहट देखते हुए, आंखों में टिंकलिंग देकर लेकर इन प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं एंड देन विल कम बैक.

0: बहुत खूब आकांक्षा, अमेजिंगली ब्यूटिफुल आपसे बात करके, बिल्कुल जो जो बिल्कुल यू नो चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश लेकिन विद फुल ऑफ एनर्जी जो बातें हो रही ना, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत मजा आ रहा है। चलो
1: मुझे भी बहुत मजा आ रहा
0: है, थैंक यू। चलो चलते चलते आपसे एक चीज पूछूं, क्रिएटिव, और ये चीज मेरे को लगता है आपको बच्चों को भी पूछनी चाहिए, या शायद आप पूछते भी हो, मुझे नहीं पता। अगर आपको कोई एक सुपर पावर मिल जाए तो कौन सी सुपर पावर चाहिए आपको? अगर गॉड कहे कि यार चलो एक सुपर पावर ले लो आकांक्षा, तो व्हाट काइंड ऑफ सुपर पावर वुड यू वांट?
1: सुपर पावर, आई वुड वांट टू नो व्हाट पीपल आर थिंकिंग।
0: अरे आकांक्षा तुम तो बहुत ही इजी है यार, बहुत इजी है। मैं बता देता हूँ, एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, nobody is thinking about you. So that is very simple.
1: Like mere bete se abhi thode din pehle humne kaha ki what do you want, something unrealistic. So will they, what I want to speak about, like there he had to speak like for 1 minute. So what do you want to speak about? Something fantasy. He said if animals could talk.
0: Wow. Okay.
1: this is what he said. He's 6. He's going to be 6. He said if animals could talk.
0: That's nice.
1: मुझे तो मेरा तो फर्स्ट ये ख्याल है कि मैं देख पाऊँ कि अगला सोच क्या रहा है, उनके विचार तो जान पाऊँ मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे याद आ रहा है, वो कविता तो मुझे याद नहीं, लेकिन अशोक चक्रधर साहब की एक कविता थी, उन्होंने जो लिखा था कि उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, इट वॉज फैंटेसी काइंड ऑफ थिंग, एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, वो इंस्ट्रूमेंट को लेके जाते थे तो सामने वाला जो सोच रहा है वो उनको सुनाई देता था। How beautiful. Okay. तो दोस्तों सोचिए, अगर आपको ये पावर मिल जाए तो क्या होगा, और अगर आकांक्षा जी को ये पावर मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप आकांक्षा जी से ना मिले तो ठीक होगा। क्योंकि उनको सब पता चल जाने वाला है आपके दिमाग में जो चल रहा है।
1: All problems will be solved.
0: Oh God. चलिए, that was fun. आइए आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से गीत का आनंद उठाएं, एंड देन वेलकम बैक।

0: बहुत खूब आकांक्षा। बस
1: थैंक यू।
0: चलते चलते अब हमारी पूरी फैमिली, आज के कलाकार की फैमिली, सभी लोगों के लिए संगीत में कोई एक संदेश, कोई मैसेज, बात कर लीजिए उनसे।
1: नमस्ते श्रोताओं, मैं आकांक्षा। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको आपके सारे प्रॉब्लम से दूर करती है। इट जस्ट डिस्ट्रेसेस यू। सो म्यूजिक से हरदम जुड़े रहना चाहिए। लाइक मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम करती है चीज, तो आई गेट इन टू माई म्यूजिक, आई सिंग। अगर गाना नहीं गा सकते तो हम सुन तो सकते हैं गाना। सो वी शुड ऑलवेज बी लाइक, म्यूजिक से बहुत फायदे होते हैं। लाइक आपकी रिटेंशन स्किल्स अच्छी रहती हैं। जब आप गाने याद करेंगे तो आपकी रिटेंशन स्किल्स अच्छी रहेंगी और आप खुश रहेंगे मन में। आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी। यू विल नॉट लुक फॉर अनदर कंपनी व्हेन यू हैव म्यूजिक विद यू। लाइक बुक्स एंड म्यूजिक आर टू थिंग्स विच आर द बेस्ट कंपनी फॉर अ पर्सन। अदरवाइज मुझे बहुत जरूरत नहीं होती बहुत लोगों की। आई एम अ वेरी लोन, आई मीन आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू स्टे अलोन। म्यूजिक सुन लिया, गा लिया, अपना खुद अकेले मजे कर लिए। मतलब आई एम सच अ पर्सन, आई एंजॉय माई ओन कंपनी। सो जो म्यूजिक सुनने वाला है वो हरदम खुश ही रहेगा जीवन में।
0: That's nice. म्यूजिक का अगर साथ है आपके पास दोस्तों, तो फिर आप हमेशा बहुत मस्त, बहुत खुश रह सकते हैं। Isn't that nice? बहुत cool. आकांक्षा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच एंड यू आर अ वेरी नाइस कंपनी टू टॉक टू। बड़े मजेदार आपके साथ हंसते खेलते खेल खिलाते हुए बहुत सारा वक्त गुजर सकता है। दैट्स अ नाइस थिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। I'm so so happy to speak to you and thank you for having me. Thank you so much.
0: Thank you.
1: I'm really grateful to you. Thank you.

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं. एंड द गेस्ट वी हैव टुडे टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी एंड टू लर्न अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस, वी हैव ए वी जयरमन सर. तो आगे बढ़ते हुए मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं, भला वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन है वो. सो जयरमन सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूटिफुल लवली मॉर्निंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टॉक टू अवर लिसनर्स.
1: या आई एम जयरमन फ्रॉम बेंगलोर. सो आई ओरिजिनली आई वॉज I belong to Bombay during my school and college days, and then I completed my engineering in Bombay and started my career from Tata Electric, and then moved on to Middle East for my further career. And I would stay in Middle East, Saudi, Bahrain, UAE, Qatar, Muscat. Ultimately, from Muscat, I retired and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career. That is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture and acutherapy, acupressure. I took master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients on a voluntary service. This is my
0: profile. गुड, ग्रेट. तो दोस्तों, आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं. चलिए, तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के